FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज शनिवार है, सक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 और 40 सेकेंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी समाचार सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। समाचार के तुरंत बाद हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम।

0: हाँ
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी

निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदन वार। आज का चिंतन, आचार्य चाणक्य का कथन है, गते शोको न कर्तव्यो, भविष्यम नैव चिंतयेत, वर्तमानेन कालेन प्रवर्तन्ते विचक्षणाः। अर्थात बीती हुई बातों का शोक नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति तो वर्तमान काल के अनुसार कार्य करते हैं। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर में सुबह 6:35 से सुनेगा श्री रामचरितमानस गान भाग 211। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से सुनिएगा संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सीने संगीत में तबले का दौर, भाग सुनेगा आज छठा। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनी, प्रस्तुति मनीषा जैन की। सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 से हम हैं राही प्यार के।

त्रिवेणी सुबह 8:15 से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रलोक सुनेगा सुबह 8:30 से, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा गीतकार राजेंद्र कृष्ण पर। सुबह 10 से आपको सुनवाएंगे पिटारा के अंतर्गत गीतों भरी कहानी। इसके अंतर्गत सुनिएगा लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 रात्रि 11 से चित्रपट संगीत। सुबह 11:30 और रात्रि 11:30 से मैटनी शो। दिन में 12 हिंदी समाचार, 12:05 से सुनेगा यादों की महफिल, दोपहर 1 सुरीला सफर और दोपहर 2 त्रिवेणी। सदाबहार नगमे, इस कार्यक्रम का वक्त होता है दोपहर 2:30 से।

दोपहर 3 बजे से आपको सुनवाएंगे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। नाट्य तरंग सुनिएगा दोपहर 3:30 से। नाटक पोस्टमैन का पहला भाग के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद P.S. कृष्णस्वामी, निर्देशक महेंद्र मोदी। शाम 4 बजे पिटारा के अंदर बॉम्बे टॉकी सुनिएगा। इसके अंदर कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस से अमरकांत दुबे की बातचीत का पहला भाग सुनवाएंगे आपको। छाया गीत का पुनर्प्रसारण शाम 5 बजे से। तराने नए पुराने शाम 5:30 से। झरोखा शाम 6:30 से। 6:35 से संध्या रंजन। विशेष जयमाला सुनिएगा शाम 7 बजे से। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं समाज सेविका साहित्यकार सुधा मूर्ति, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। इसकी रिकॉर्डिंग आपको सुनवाएंगे। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा जिज्ञासा। रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा नाटक गुलाब की पंखुड़िया भाग 1, लेखन सुरेंद्र कांत का, निर्देशन मुमताज शकीब। चित्रलोक रात 8:15 से आपके लिए रात 9 बजे से। छायागी सुनेगा रात 10 बजे से आलेख एवं स्वर जयप्रकाश मीणा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। और ढलती जाए रात 10:30 से।

श्री राम के आश्रम में प्रवेश करते ही भरत का दुख और दाह ऐसे मिट गया जैसे योगी को परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। श्री राम सीता और लक्ष्मण को देख सखा निषाद सहित भरत और शत्रुघ्न प्रेम के आनंदातिरेक में हर्ष विषाद सुख दुख सब कुछ भूल गए। स्नेह के सागर में डूबते उतराते भरत हे नाथ रक्षा कीजिए कहते हुए दंड की भांति श्री राम के चरणों में आ गिरे।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे खास मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। इस श्रृंखला की छठी कड़ी आज हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, ख्याल गायन में तबले पर जो संगति की जाती है और जो तालों का उपयोग होता है, खासतौर से तीन ताल और एक ताल,
2: हाँ जी,
1: तो शुरुआती दौर में संगीतकारों की ये ताल बड़े पसंदीदा रहे हैं।
2: जी हाँ,
1: इसके बारे में आप कहेंगे।
2: हाँ, जैसे मैंने कहा कि शास्त्रीय संगीत में जो संगत के लिए जो ताल चुने गए हैं,
1: जी,
2: जैसे ख्याल गायन में तीन ताल में ख्याल होते हैं, एक ताल में ख्याल होते हैं,
1: जी जी,
2: कुछ झपताल के भी ख्याल है, तो ये ताल जो है, इन तालों का प्रयोग फिल्मी गीतों में भी हुआ है। तो ये जो ताल है, ये ताल जैसे अभी ख्याल की संगत के लिए एक ताल हम लोग जो बजाते हैं,
1: जी,
2: तो एक ताल में जो है उसमें विलंबित एक ताल,
1: जी,
2: तो विलंबित का मतलब ये है कि दो मात्रा के बीच वाला फासला बड़ा किया है, उसको और भी बड़ा किया तो वो अति विलंबित हुआ। दो मात्रा के बीच वाला

कम होता गया तो वो मध्यलय, और भी कम हुआ तो वो द्रुतलय। ये जो है ये फासला मतलब एक गणित है, और उसी गणित के तौर पर वो ठेका उसका बनता है। अभी एक ताल का उदाहरण ले रहे हैं हम लोग, तो एक ताल तो है धिन धिन धगेत्र कतूना कत्ता धगेत्र कधीना धिन धिन। अब ये ख्याल में विलंबित इसको बजाते हैं, तो मैं अति विलंबित में तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन विलंबित किस तरह से बजाते

0: मतलब ये जो है धिन धिन, ये
1: जी
0: इतना जो अवग्रह है दो मात्रा के बीच में,
1: जी
0: तो उससे वो ताल विलंबित हुआ। विलंबित होने का फायदा ये है कि ख्याल गायन में गायक जो है उसको बड़ा फासला मिल गया गाने के लिए,
1: जी
0: तो अपनी प्रस्तुति वो बड़े आराम से फिर दे सकता है। अगर इसमें जो है ना सम और काल का ये चक्र है, ताल मतलब तो सम काल का चक्र है,
1: जी जी
0: तो सम की तो अपनी अपनी अहमियत है। सम पर आने के लिए ही सारी जो प्रस्तुति होती है वो उसके लिए ही तड़पती रहती है, ये मुझे सम पर आना है।
1: जी जी
0: तो सम पर अगर आना है तो उसके लिए हमें गाने के लिए फासला मिल गया और उसके बाद में हम सम पे आए, तो श्रोताओं को तभी आनंद मिलता है जब वो सम पे सब लोग आकर मिलते हैं एक
1: जी
0: साथ। तो ये जो है ये एक ताल वाला गणित है। तो ऐसे ही सारे ताल है, जप ताल है, रूपक है, तीन ताल है। इसमें विलंबित में ख्याल गायन होता है और मध्य लय में जो है उसमें फिर छोटे ख्याल होते हैं,
1: जी
0: और मध्य लय में ही हमारे फिल्मी गीत जो है वो उसमें उनका आविष्कार हुआ है। तो ये मतलब अलग इसलिए है क्योंकि 12 मात्रा के ताल में गीत को ढालना और उसकी खूबसूरती रखना,
1: जी
0: तो ये एक तरह से चैलेंज होता है। और वो चैलेंज जो है वो संगीतकारों की उनकी प्रतिभा है कि उन्होंने उसको बाखूबी लोगों में प्रस्तुत किया है।
1: जी तो एक ताल की खूबसूरती जिस गीत में
0: जी
1: देखने को मिलती है,
0: जी वो
1: वो कौन सा गाना आपको याद आ रहा है?
0: केतकी की गुलाब जूही,
1: चंपक बन
0: पंडित
1: झूले,
0: जी
1: बसंत
0: पंडित
1: बहार फिल्म का गाना है
0: भीमसेन जोशी जी, पंडित जी उनकी।
1: और मन्ना दा का स्वर भी इस गीत में है, और शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ ये गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर आगे बात करेंगे।

0: एक ताल में निबद्ध बसंत बहार फिल्म का गीत आपने सुना श्रोताओं, पंडित भीमसेन जोशी और मन्ना डे के स्वरों में, संगीतकार शंकर जयकिशन। रविंद्र जी, प्रतिभाशाली संगीतकारों ने जैसे एक ताल का बहुत ही सुंदरता से प्रयोग किया है फिल्मी गीतों में,
1: जी
0: उसी प्रकार झपताल का भी प्रयोग हुआ है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: आपकी राय क्या है?
1: दस मात्रा का झपताल जो है
0: जी,
1: मतलब दस मात्रा में किसी गीत को ढालना, तो ये अपने आप में एक चुनौती होती है। और वो चुनौती इसलिए है क्योंकि ताल जो है उसमें सम है, काल है
0: जी,
1: मतलब झपताल जो है धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी
0: जी।
1: अभी ये जो है ये इतना बड़ा आवर्तन है दस मात्रा का, उसमें पहले धी पर सम है
0: जी,
1: फिर काल है, उसके बाद में फिर सम है, तो ये जो सम काल का गणित होता है इसको रखते हुए वो गीत बनाना, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, वो मशहूर गीत।
0: हाँ,
1: इसलिए भी इस चीज को मानते हैं। इतना प्रतिभा संपन्न हमारा ये संगीतकारों का दौर रहा है फिल्मों
0: जी,
1: में
0: जी, जी,
1: कि उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत बनाए, और जो भी बने हैं सब लाजवाब है।
0: बेशक झपताल में निबद्ध कोई गीत अपने श्रोताओं को सुनवाए।
1: वैसे तो कई सारे गीत है
0: जी,
1: आवाज देके हमें तुम बुलाओ
0: प्रोफेसर फिल्म का गीत है
1: जी,
0: जो राग शिवरंजनी में आधारित है
1: जी।
0: तो श्रोताओं सुनते हैं शंकर जयकिशन का स्वरबद्ध किया हुआ ये गीत, स्वर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का।

0: शास्त्रीय संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला की छठी कड़ी अभी आपने सुनी। इस श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनी

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज सुप्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी का जन्मदिवस है, इसलिए भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण जी के लिखे कुछ चुनिंदा गीत। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं राजेंद्र कृष्ण के लिखे और चित्रगुप्त के संगीतबद्ध किए गाने के साथ। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ें हैं। फिल्म का नाम भाभी

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।

0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में आजाद फिल्म का गाना। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में पहली झलक फिल्म का गाना। राजेंद्र कृष्ण है गीतकार और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुआवजा करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
3: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
3: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।

0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। और आज के इस कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नया आदमी इस फिल्म से आशा भोसले और साथियों की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत विश्वनाथ एम मूर्ति का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में नया आदमी फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे विश्वनाथ एम मूर्ति। इस गाने के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आगे दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे और इसे हम अपने आकाशवाणी सासाराम से रिले कर रहे थे। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:30 हुए हैं, तो अब आप आकाशवाणी सासाराम से सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

एक प्यारे एहसास के साथ, एक नए आत्मविश्वास के साथ आप सभी श्रोताओं के दिन की शुरुआत हो एक मीठी मुस्कान के साथ। इसी मंगल कामना के साथ स्वीकार कीजिए रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत आप सभी श्रोताओं का। श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं, सत्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं, झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सच्चाई है उसी में ईश्वर का निवास है। संत कबीर। अब आइए डालते हैं नज़र 6 जून के इतिहास पर। जी हाँ, झांकते हैं 6 जून के इतिहास के आईने में और लेते हैं संक्षिप्त जानकारी इस दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर।

श्रोताओं, 6 जून को 1674 में रायगढ़ के किले में छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति के रूप में भव्य राज्याभिषेक किया गया था। 6 जून को 1946 में बास्केटबॉल की सबसे बड़ी अमेरिकी लीग NBA की स्थापना की गई थी। 1984 में आज ही के दिन यानी कि 6 जून को स्वर्ण मंदिर अमृतसर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की कार्रवाई को आज ही ख़त्म किया गया था। 6 जून को 1997 में बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं थाईलैंड ने बिस्टेक नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन किया। अब आइए एक नज़र डालते हैं भारत के वैसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व पर जिनका आज के दिन जन्म हुआ। भारत के मशहूर हिंदी फिल्मों के अभिनेता और राजनेता सुनील दत्त का जन्म आज ही के दिन यानी कि 6 जून को 1930 में हुआ। 6 जून 1939 को भारत के प्रसिद्ध एथलीट गुरुबचन सिंह रंधावा का भी जन्म हुआ। 6 जून 1955 को हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार वेद प्रकाश शर्मा का जन्म हुआ। और आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार राजेंद्र कृष्ण का जन्म भी 6 जून को 1919 में हुआ। और अब थोड़ी सी जानकारी 6 जून को दिवंगत हुए भारत के अनमोल शख्सियत के बारे में। तो आपको बताएं कि दर्शन शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान रामचंद्र दत्तात्रेय रानाडे का निधन 1957 में आज ही के दिन हो गया। हिंदी और बांग्ला सिनेमा के जाने माने पटकथा लेखक और निर्देशक बासु चटर्जी का निधन आज ही के दिन यानी कि 6 जून को 2020 में हुआ। तो श्रोताओं, अभी हमने एक सरसरी सी निगाह डाली 6 जून के इतिहास पर, और अब आइए पहले सेगमेंट में सुनते हैं एक भक्ति रचना ईशिता मित्रा और नीरज जोशी का लिखा हुआ। संगीत ईशिता मित्रा का है और गायक कलाकार हैं ईशिता मित्रा के साथ अनूप जलोटा। तो लीजिए सुनिए एल्बम जय जय दुर्गा माँ, इस एल्बम से ये टाइटल एल्बम भक्ति सॉन्ग।

जय जय दुर्गे माँ। इस एल्बम का ये टाइटल एल्बम भक्ति सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। और अब इसी के साथ आइए जानकारी लेते हैं कुछ सामाजिक, सांस्कृतिक और स्थानीय गतिविधियों के बारे में। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रोहतास वन प्रमंडल द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों एवं वन प्रक्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण एवं जल संरक्षण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक उन्मूलन, क्विज प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रतियोगिता एवं जागरूकता रैलियों के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। और आपको बता दें कि इस अवसर पर पदाधिकारियों ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन एवं प्रकृति के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं और लोगों को अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने की भी अपील की गई। साथ ही कहा गया कि वृक्ष केवल प्रकृति की धरोहर ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य की आधारशिला हैं। पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के लिए सभी नागरिकों की सहभागिता की भी अपील की गई। कल रोहतास जिला में सभी प्रखंडों में जगह जगह पौधारोपण उत्साहपूर्वक लोगों द्वारा भी किया गया। इस अवसर पर हरित एवं स्वच्छ वातावरण के निर्माण का सभी लोगों ने सामूहिक संकल्प भी लिया। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर कल रोहतास जिला के उप विकास आयुक्त और मनरेगा पदाधिकारियों ने सासाराम प्रखंड के विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस बात पर बल दिया गया कि वृक्ष मानव जीवन एवं प्रकृति के संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। उप विकास आयुक्त रोहतास ने लोगों से भावी पीढ़ी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने और देखभाल करने के लिए अपील किया। उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा कल शुक्रवार को पटना में बिहार में औद्योगिक विकास, शासन और व्यापार सुगमता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI का लाभ उठाने विषय पर AI क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में राज्य भर के उद्योग विभाग के पदाधिकारी एवं विशेषज्ञ शामिल हुए।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल कैमूर में एक पेड़ माँ के नाम, जी हाँ, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अवसर पर माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा किया गया वृक्षारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल कैमूर जिले में पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रभारी मंत्री कैमूर थे और उन्होंने उपस्थित प्रशासनिक पदाधिकारियों और आम नागरिकों को संबोधित करते हुए पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में वृक्षों की महत्ता

पर विशेष बल दिया। माननीय प्रभारी मंत्री कैमूर का संदेश रहा, धरती को हरा भरा बनाना और आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण देना ही सभी का नैतिक दायित्व होना चाहिए। एक पेड़ माँ के नाम अभियान न केवल प्रकृति के प्रति बल्कि हमारे कर्तव्य को भी दर्शाता है। यह हमारी जननी यानी माँ के प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक अनूठा माध्यम है। प्रभारी मंत्री ने अपील किया कि प्रत्येक नागरिक इस मॉनसून सीजन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और केवल पौधा लगाने तक ही अपने दायित्व को सीमित न रखें, बल्कि पौधा के बड़े होकर वृक्ष बनने तक उसकी पूरी देखभाल और संरक्षण भी करें। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने प्रकृति को बचाने, प्रदूषण कम करने और जल जीवन हरियाली के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का सामूहिक संकल्प लिया। माननीय प्रभारी मंत्री कैमूर की अध्यक्षता में संभावित बाढ़, सुखाड़ एवं भीषण गर्मी से निपटने हेतु कैमूर जिला प्रशासन की तैयारी की कल हुई समीक्षा बैठक। कैमूर जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैमूर जिले के सभी कार्यालयों में जनसंवाद कार्यक्रमों का कल आयोजन किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन कैमूर द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास के संकल्प को साकार करने हेतु सीवो पंचायत स्थित महादलित टोला में कल विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रोहतास जिला के डेहरी शहर में कल शुक्रवार को अनुमंडल प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी कार्रवाई की। जी हां श्रोताओं, और इसी के साथ अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन काफ़ी निगरानी के मूड में है और इसको लेकर आप सभी से हमारी भी अपील है कि इस पर ध्यान दें। रोहतास जिला के सूर्यपुरा के CAHC का कल CS सासाराम ने किया निरीक्षण। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के आलोक में आगामी 15 जून से रोहतास जिले के विभिन्न बालू घाटों पर सोन नदी से बालू के खनन और उठाव पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा। यह प्रतिबंध आगामी 15 जून से शुरू होकर आगामी 15 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। तो श्रोताओं, ये थी स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां और अब लीजिए सुनिए एक गीत। शोर फिल्म से हमने इस गीत को चुना है। मन्ना डे महेंद्र कपूर और श्याम की आवाज़ें हैं। इस गीत को लिखा इंद्रजीत सिंह तुलसी ने है और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दैनिक जागरण के अखबार आ चुके हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हिंदुस्तान अखबार में छपी हुई खबर को। हिंदुस्तान अखबार ने अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है कि जस्टिस मीनाक्षी रॉय पटना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। जी हां, जस्टिस मीनाक्षी मदन रॉय ने कल शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने उन्हें बिहार लोक भवन में शपथ दिलवाई। विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव और उपचुनाव के लिए भाजपा और जदयू ने चार चार उम्मीदवारों की घोषणा कल शुक्रवार को कर दी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि दो वर्षों में 50 लाख घरों तक सोलर बिजली पहुंचेगी। तो ये हिंदुस्तान अखबार की खबरें थीं और अब रुख करते हैं प्रभात खबर की तरफ। प्रभात खबर ने अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है, बंगाल त्रिपुरा बिहार में जनसांख्यिकीय बदलाव बर्दाश्त नहीं, अमित शाह। दैनिक जागरण लिखता है कि बिजली कंपनी की ऑनलाइन सेवाएं आज 12 घंटे रहेंगी बंद। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा नेटवर्क मेंटेनेंस की वजह से आज 6 जून को शाम 5 बजे से 7 जून सुबह 5 बजे तक बिजली उपभोक्ताओं से संबंधित सभी ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। बिल भुगतान, स्मार्ट प्रीपेड रिचार्ज व अन्य कार्य इस दरमियान नहीं होंगे। और अब चलते चलते एक और अखबार, जी हां, दैनिक भास्कर से हम आपको कुछ आर्थिक खबरें बता देते हैं। तो आर्थिक खबर में ये है कि पुतिन ने दिया ऑफर, भारत संग सूखे ही 57 बनाएंगे। जी हां, रूस के राष्ट्रपति हैं पुतिन और इनका कहना है कि भारत के साथ मिलकर ट्रेड 100 अरब डॉलर ले जाएंगे। खेल समाचार की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट आज शनिवार सुबह 9:30 से खेला जाएगा और दोनों टीमों के बीच सिर्फ ये दूसरा टेस्ट है। साल 2018 में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी। और चलते चलते हम याद करते हैं मशहूर गीतकार राजेंद्र कृष्ण को। जी हां, राजेंद्र कृष्ण जिनकी आज जयंती है, इनका जन्म हुआ था 6 जून को 1919 में। और आपको बता दें कि राजेंद्र कृष्ण हिंदी सिनेमा के एक महान और बहुमुखी गीतकार और पटकथा लेखक थे। इन्होंने 700 से भी अधिक हिंदी फिल्मों के लिए सदाबहार गीत लिखे और हर तरह के माहौल जैसे कि देशभक्ति, भक्ति और चुलबुले हास्य भरे गीत इन्होंने लिखे जिसमें इनकी महारत हासिल थी। वैसे तो इन्होंने ढेर सारी फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ जो गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है जॉनी मेरा नाम इस फिल्म से। ये चुलबुला सा गीत गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने। राजेंद्र कृष्ण जी हाँ, जिनकी आज जयंती है, उन्हीं का लिखा हुआ ये गीत, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। तो राजेंद्र कृष्ण जी की जयंती पर हम इन्हें नमन करते हैं और सुनते हैं इनका लिखा हुआ ये गीत।

और श्रोताओं, इसी के साथ अब चलिए एक नज़र डालते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। तो हमारे पास हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक भास्कर और

जी हाँ श्रोताओं, हम भी आपसे वादा निभाते हैं और वादा ये करते हैं कि हर सुबह 7:30 पर प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास लेकर इसी तरह हम आपसे रूबरू होंगे। और फिलहाल बता देते हैं मौसम का हाल। तो आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और अब दीजिए इजाज़त रागिनी को इस कार्यक्रम से। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

0: श्रोताओं आइए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात के लिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 942,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में

0: निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
1: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले एफपीआई को अधिक लचीलापन मिलेगा क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आपटे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपने अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
7: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
8: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमरीका

0: प्रवासी भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमरीका से 3,567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इसराइल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इसराइल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देश बंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमरीका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है।

0: भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की पांचवी पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए मिशन मजनू। इस फिल्म से एक देशभक्ति गीत सोनू निगम की आवाज़ में। गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और संगीतकार हैं रोचक कोहली।

हम माटी को माँ कहते हैं। जी हाँ, अभी आपने ये देशभक्ति गीत सुना सोनू निगम की आवाज़ में मिशन मजनू फिल्म से। मनोज मुंतशिर के बोल थे, रोचक कोहली का संगीत था। और अब इसी के साथ हमारा आज का देशभक्ति संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:20 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे पसंद आपकी कार्यक्रम में पत्रों पर आधारित श्रोताओं के फरमाइशी फिल्मी गीत।

पसंद आपकी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सभी सुनने वालों को रागिनी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पसंद आपके कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं बीबी हूं तो ऐसी इस फिल्म के गीत से। फिल्म के गीत के लिए हमें खत लिखा है सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, जगुताई, साक्षी ताई, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, स्वामी देशमुख, प्रणाली देशमुख और सानवी देशमुख ने बोरी खुर्द जाफराबाद से। और इसी के साथ ये खत आया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा की तरफ से। छत्तीसगढ़ भाजपा दतरंगी से हमें पत्र लिखा है द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में समीर का लिखा हुआ ये गीत, जिसकी धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने है और फिल्म है बीबी हो तो ऐसी।

अभी आपने सुना ये बेहद ही खूबसूरत गीत, जी हाँ बीबी हो तो ऐसी, इस फिल्म में अनुराधा पौडवाल की सुरीली आवाज़ में। और अब इसी के साथ कस्मे वादे इस फिल्म का गीत सुनने के लिए हमें ये ख़त लिखा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंजी शर्मा, सौरभ, साइना और निवान ने। और कस्मे वादे का टाइटल सॉन्ग ये सुनना चाहते हैं तो सुनवाएंगे आप सभी को। और कुछ और श्रोताओं के नाम भी हम इसी गीत में शामिल कर रहे हैं। तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, प्रीति सुरेश, अजीज भाई अंजाना, अब्दुल बाबा अंजाना। और इसी गीत में हम शामिल करते हैं नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार के हमारे श्रोताओं को, अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, रुबीना वसीम, अरहान, हमजा, तैमूर, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, शाहीन नाज, नूरी नाज, बच्चू, चीना और मुजम्मिल। कोकिलवारा और आई जिला मुजफ्फरपुर से हैं फैसल सैख, नुजहत जहानाज, कांति निकेतन राजनगर से हैं, कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर, 2 लाख?
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, जंगल लव फिल्म से। समीर के बोल थे, आनंद मिलिंद का संगीत था। और इस गीत को सुनना चाहा सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरवा से कारी रायकारी, मीनाकारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिंकी, रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा। ढोली सकरा से आप हैं जयंत कुमार बैरागी। और ये पत्र हमें लिखकर भेजा सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा और अदीबा ने। बिहारी कॉलोनी से परवीन, सरफुद्दीन, कुमारी वली, कुमारी डब्लू। जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा, अकरम आसमा, उल्लाह। और इसी के साथ अब सुनवाते हैं कार्यक्रम में बंदिश फिल्म का गीत, जिसकी फरमाइश आई है गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, साक्षी और फलना झा की तरफ से। नया नगर सुपौल से आप हैं श्वेता रंजन, पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार और गजेंद्र कुमार निराला। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निखत प्रवीण, सदफ आरजू, साहिल अरमान, शमा प्रवीण, सादिया तस्नीम और अलीसा। इमली आदम खानी सासाराम से आरिज खान, ब्यूटी और अप्पू। छत्तीसगढ़ भाजपा दत्तरेंगी

इसे द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर, दीपक और झाविंद्र। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं बंदिश फिल्म का गीत, किशोर कुमार आशा भोसले की युगल आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

रंग भरे मौसम से रंग चुरा के। जी हाँ, थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है और आप सभी ने जो ये गीत भेजा है वो सचमुच बहुत ही बेहतरीन फरमाइश थी आप सभी की। और अब चलते चलते पतंग फिल्म का गीत सुनवाते हैं आपको लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, जिसकी फरमाइश की है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहाँ ने आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। थाना मोड़ गढ़नुखा रोहतास से आप हैं मुन्ना भाई मंसूरी, नजमुन निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शाहबाज। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, चित्रगुप्त का संगीत है।

और अब पसंद आपके कार्यक्रम से रागिनी को दीजिए अनुमति। नमस्कार, हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने सासाराम केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: कहाँ चलती है इधर तो
2: इधर आइए इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए डिजिटल एकीकृत पोर्टल शुरू किया। राजस्व विभाग ही

0: कार्रवाई की। और मधुबनी, दरभंगा, अररिया और सुपौल जिले में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार 7.8% की दर से बढ़ रही है। दमन में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था की इस गति पर हर भारतीय को गर्व का अनुभव हो रहा है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।

0: तो 8% की दर से बढ़ रही है। दमन में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अर्थव्यवस्था की इस गति पर हर भारतीय को गर्व का अनुभव हो रहा है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: श्री मोदी ने कहा कि आर्थिक संकट के दौर में भी भारत मजबूती से खड़ा है। इसका श्रेय देश की 140 करोड़ नागरिकों की सामूहिक प्रयास को जाता है। उन्होंने भरोसा दिया कि देश सुधार, प्रदर्शन और बदलाव के रास्ते पर संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहेगा।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल को ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला बताया है। श्री कुशवाहा ने कहा कि इन 12 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम तय किए हैं। उन्होंने विपक्ष पर देश की उपलब्धियों को नजरअंदाज करने का आरोप भी लगाया। इधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्षों का शासनकाल देश में विश्वास, विकास और जन कल्याण का समय रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा 12 साल बेमिसाल अभियान चलाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1.5 लाख से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रदेश में ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं की अब ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने केंद्रीकृत ग्रामीण योजना अनुश्रवण और क्रियाशीलता पर्यवेक्षण प्रणाली CGRM पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस एकीकृत व्यवस्था से लोगों को राज्य की योजनाओं की पूरी जानकारी एक स्थान पर मिलेगी। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत पोर्टल पर दर्ज करा सकेगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने भ्रष्टाचार, अनियमितता, कर्तव्यहीनता और विभागीय निर्देशों की अवहेलना के मामले में राजस्व सह कानून को अधिकारी सोनी कुमारी को बर्खास्त कर दिया है, जबकि 8 अन्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र गठित करने और विभागीय कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 32 राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। नीट परीक्षा को लेकर बिहार सरकार पूरी तरह सख्त है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को केंद्रों पर जाने के लिए सरकारी बसों में किराया नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून को 35 जिलों के 331 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षकों को परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा

0: प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में जनसांख्यिकीय बदलाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा में मौजूदा खामियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें सीमा पार से नकली नोट, मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगानी होगी। गृहमंत्री ने कहा कि देश में घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से बाहर भेजा जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जेईई एडवांस्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के डेटा लीक और निजता उल्लंघन के संबंध में कई भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत खबरें सामने आई हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने स्पष्टीकरण जारी किया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित जानकारी भ्रामक है और गलत सूचना फैलाने का प्रयास है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जेईई एडवांस्ड परीक्षा के दौरान कोई भी संवेदनशील जानकारी लीक नहीं हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभवाणी,
2: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है। उत्तरी भागों में बारिश हो रही है और कई स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हमारे दरभंगा, अररिया, मधुबनी और सुपौल संवाददाता ने जानकारी दी है कि आज सुबह हल्की बारिश हुई है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इधर राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की गई है और इससे गर्मी से राहत मिल सकती है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान तापमान में परिवर्तन की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है।
4: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के कुछ स्थानों पर, जबकि शेष भाग के 1 या 2 स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है, तथा राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में गर्मी की स्थिति बनी हुई है। लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों

0: पर लू की स्थिति भी बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 41.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र को देश भर में वज्रपात और तूफान पर अध्ययन करने के लिए अधिसूचित किया गया है। केंद्र के निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि पटना केंद्र को वज्रपात, आंधी तूफान और मौसम प्रणालियों के अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार और पूर्वी भारत उन क्षेत्रों में शामिल है जहां प्री मानसून और आंधी तथा वज्रपात की घटनाएं बार बार होती हैं। भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला सेतु पर कल से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी ने बताया कि अभी केवल एक लेन पर अधिकतम 10 टन भार वाले वाहनों को ही परिचालन की अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि बेली ब्रिज पर वाहनों के परिचालन का ट्रायल रन पूरी तरह सफल रहा है।
1: 7 जून के करीब 11 बजे से स्कूल को हम लोग शुरू करेंगे। पुल का एक लेन यानी लगभग 5 मीटर चौड़ा लेन हमारा चालू होगा, जिसमें कि छोटी गाड़ियों का परिचालन को हम लोग शुरू करेंगे और परिचालन में लगभग 10 टन तक की जो गाड़ियां होंगी, उन गाड़ियों 10 टन तक जो परिवहन होगा उसको हम लोग अलाउ करेंगे।
0: राज्य में 12 घंटे बिजली कंपनियों की ऑनलाइन सेवाएं बंद रहेंगी। आज शाम 5 बजे से कल सुबह 5 बजे तक ये बंदी लागू रहेगी। नेटवर्क मेंटेनेंस के कारण NBPDCL और SBPDCL के अनुसार ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी। कंपनी ने लोगों से जरूरी बिल भुगतान और रिचार्ज पहले ही करने की अपील की है। पटना एम्स में कार्यरत कनीय प्रशासनिक अधिकारी अश्विनी कुमार सिंह को पुलिस ने एक महिला कर्मचारी और उसकी पुत्री से छेड़खानी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पटना साइबर पुलिस ने पटना विश्वविद्यालय की एक अवकाश प्राप्त प्रोफेसर से 2.5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी के आरोप में पश्चिम बंगाल से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। निगरानी की विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के कनीय अभियंता धरनीधर राय को 4 वर्ष सश्रम कारावास के साथ 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने जनता दरबार में 68 मामलों की सुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को सभी मामलों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए हैं। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड क्षेत्र के नबीनगर ककरार में हथियारबंद अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी से 18 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। सीवान जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक विवेक कुमार को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग के सचिव ने उन्हें ये सम्मान दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव पर लिखा है, भाजपा और जदयू के 8 MLC प्रत्याशी घोषित, जदयू ने 3 अति पिछड़ा तो भाजपा ने 2 को दिया मौका। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, राज्य के 50 लाख घरों में सरकार लगाएगी मुफ्त सौर ऊर्जा यंत्र। दैनिक भास्कर लिखता है, मीनाक्षी मदन राय पटना उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, 12 जुलाई को होंगी रिटायर्ड। प्रभात खबर ने लिखा है, खानसर पर FIR दर्ज, कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण योजनाओं की ऑनलाइन निगरानी के लिए डिजिटल एकीकृत पोर्टल शुरू किया। राजस्व विभाग ने कर्तव्य में लापरवाही और अनियमितता के आरोप में 9 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। और मधुबनी, दरभंगा, अररिया और सुपौल जिले में बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: सर आइए इधर।
1: इधर?
0: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
2: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
2: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
2: शुभ वाणी,
1: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:05 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में अब आप जानकारी लेंगे आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद गीत मालिका कार्यक्रम में आप आनंद लेंगे हिंदी फिल्म संगीत का। आज के फनकार विविध भारती से प्रसारित किया जाने वाला ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:30 पर। सुबह 10:00 आप सुनिएंगे दिल्ली से हिंदी समाचार। सुबह 10:05 पर हम लेकर आएंगे विकास के सोपान। 10:30 पर सुनिएगा लोक माधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम लोक की। रसधार कार्यक्रम में सुनिएगा भोजपुरी एल्बम सॉन्ग 10:45 पर। पूर्वाहन 11:00 से 12:00 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती से प्रसारित किए जाने वाला कार्यक्रम रंग तरंग। 12:00 सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। 12:05 पर एक बार फिर आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती के कार्यक्रम दोपहर 2:00 तक। दोपहर 2:00 आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार। 2:05 पर इलाकाई खबरें और 2:10 पर आप सुनेंगे रोजगार सूचना। जी हाँ, ये तीनों कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से। 2:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम आपको सुनवाएंगे मध्याह्न समाचार। आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम हम रिले करेंगे दोपहर 2:30 से शाम 5:00 तक और रात 9:30 से रात 10:00 तक। शाम 5:00 आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा हिंदी समाचार। शाम 5:05 पर हमारे सासाराम केंद्र से आप सुनेंगे उद्घोषणा और कार्यक्रम विवरण। 5:10 पर वंदन कार्यक्रम में भक्ति संगीत। 5:30 पर युवाणी कार्यक्रम। 5:30 हमारे सासाराम केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले युवाणी के आज प्रमुख आकर्षण होंगे भोजन व्यर्थ न करें इस विषय पर जानकारी। साथ ही गोपीनाथ बोरदोलोई जयंती पर आप सुनेंगे कुछ विशेष जानकारी। शाम 6:00 हम लेकर आएंगे भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम। शाम 6:05 पर हम सुनवाएंगे आपको आकाशवाणी पटना से भोजपुरी बुलेटिन समाचार। शाम 6:10 का समय होगा कार्यक्रम किसान वाणी का। इस कार्यक्रम में आज की बातें के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता टमाटर और गेंदा की सह फसली खेती। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुमित पाल। साथ ही नई उम्र की नई फसल में आपको लौकी और बैंगन की खेती से संबंधित जानकारी दी जाएगी। साथ ही आज का नसीहत में आप सुनेंगे अपने पोषण पर दें ध्यान। शाम 6:40 पर सुनिएगा सांझ गीत कार्यक्रम में भोजपुरी फिल्म संगीत। शाम 7:15 पर हम लेकर आएंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। 7:25 पर सुनिएगा आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार। हेलो मनपसंद फोन इन फरमाइशी ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे आज 7:50 से रात 8:45 तक। 8:45 पर

सुनिएगा आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या। रात 9 बजे लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत और 9:15 पर महफिल कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंद गजल। 9:30 पर जी हां आकाशवाणी विविध भारती से सुनिएगा कार्यक्रम। रात 10 बजे रसरंग में हिंदी एल्बम सॉन्ग और 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत आप सुनेंगे हमारे सासाराम केंद्र से। 10:55 पर आप सुनेंगे अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान। रात 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम रिले करेंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी रात 11:10 पर।

एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। गीत मालिका कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं, इसी के साथ आज कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता सुनील दत्त से संबंधित, जी हां, इनके अभिनय से सजे हुए कुछ गीत, क्योंकि आज 6 जून को 1930 में ही इनका जन्म हुआ था। मशहूर अभिनेता सुनील दत्त के बारे में ढेर सारी बातें आपसे साझा करेंगे। फिलहाल हम आपको सबसे पहले सुनवाने जा रहे हैं उनकी एक बेहद ही चर्चित फिल्म हमराज का ये गीत। तो लीजिए सुनिए

श्रोताओं, बेहद ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना हमराज फिल्म से महेंद्र कपूर की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी के बोल थे, रवि का संगीत था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का हमारा ये गीत मालिका कार्यक्रम आधारित है मशहूर दिग्गज बेमिसाल अभिनेता सुनील दत्त पर, तो आपको इनके बारे में कुछ जानकारी हम ज़रूर देना चाहेंगे। जी हाँ, आज 6 जून को 1930 में इनका जन्म हुआ और इन्होंने जब अपने कैरियर की शुरुआत की तो एक रेडियो जॉकी के रूप में इन्होंने शुरुआत की। और रेडियो पर जब ये प्रोग्राम करते थे तो इनका नाम था बलराज दत्त। जी हाँ, इनका असली नाम था बलराज दत्त, लेकिन फिल्मों में आने पर इन्होंने अपना नाम बदलकर सुनील दत्त कर लिया। तो रेडियो जॉकी रहे थे ये। रेडियो में बेहतरीन उर्दू भी बोलते थे हिंदी के साथ साथ, और अपनी भारी और दमदार आवाज़ के कारण बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। और इनकी यही लोकप्रियता, जो रेडियो में लोकप्रियता हुई, उसी के आधार पर बाद में इन्हें फिल्मों में भी काम मिला। और जब ये फिल्मों में गए तो क्या कहने, एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में इन्होंने दी। तो चलिए, गुमराह फिल्म का एक गीत सुनवाते हैं आपको महेंद्र कपूर की आवाज़ में। एक बार फिर इस गीत को लिखा रवि ने और संगीत साहिर लुधियानवी का।

रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जी हाँ, ये कालजयी रचना आपने जो सुनी उसे लिखा था साहिर लुधियानवी ने, रवि ने, और संगीत था साहिर लुधियानवी का। तो साहिर लुधियानवी के लिखे हुए इस गीत को महेंद्र कपूर की आवाज़ में हमने अभी अभी आपको सुनवाया, गुमराह फिल्म से, जिसे फिल्माया गया था।

हिंदी सिनेमा के दिग्गज मशहूर अभिनेता सुनील दत्त जी पर। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं कि सुनील दत्त जी की आज जयंती है। 6 जून को 1929 में अविभाजित भारत में झेलम जिले के खुर्द गांव, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था और इनका वास्तविक नाम बलराज दत्त था। 1947 में विभाजन के बाद परिवार पंजाब आ गया। बॉम्बे में इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद इन्होंने रेडियो जॉकी के रूप में काम किया। 1955 में फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से अपने अभिनय कैरियर की शुरुआत की। 1957 में मदर इंडिया फिल्म में विद्रोही बिरजू के किरदार से लोकप्रियता पाई और ढेर सारी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में रहीं ये: वक्त, पड़ोसन, गुमराह, हमराज, मुझे जीने दो, रेशमा और शेरा, जानी दुश्मन, मदर इंडिया। अनेकों फिल्में, अनगिनत फिल्में, यादगार फिल्में इनके कैरियर की रही हैं। और राजनीति में भी जब ये गए तो वहाँ भी ये छा गए। 5 लोकसभा सदस्य चुने गए सुनील दत्त। तो चलिए, इस मशहूर अभिनेता की एक कालजयी फिल्म पड़ोसन का ये गीत सुनते हैं। चुलबुला सा ये गीत किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, आर डी बर्मन का संगीत।

0: ठीक है
1: तू क्यों चोटे कर दूंगा तकजम तकनम तकदम तत्संगित तकदम तकदम तकदम तकनम तकदम।

0: గారే గారే
1: ఏ గరబడే
0: గారే గారే
1: ఏ సూర బదల
0: గారే గారే
1: ఏ అమ్మక పట్టా
0: గారే గారే ఏ సూర కి దర
2: श्रोताओं, ये काफ़ी लंबा गीत है और हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं पड़ोसन फिल्म का ये गीत, लेकिन काफ़ी चर्चित फिल्म रही थी पड़ोसन सुनील दत्त की। और चलते चलते एक बार फिर आपको बता दें कि रेडियो पर काम करने के दौरान ही इनकी मुलाकात फिल्म निर्देशक रमेश सहगल से हुई थी और सहगल को इनकी आवाज़ इतनी प्रभावित करी कि उन्हें फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में पहला ब्रेक मिल गया और बाद में ये अनाउंसर से सुपरस्टार यानी हिंदी फिल्मों के सुपरस्टार बन गए। तो सुनील दत्त के बारे में आज बस इतना ही। चलते चलते सुन लेते हैं एक और गीत बेटी बेटे फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ें हैं, हसरत जयपुरी के बोल हैं और संगीत है शंकर जयकिशन का।

और श्रोताओं, इसी के साथ हम सुनील दत्त को उनकी जयंती पर आज नमन करते हैं। और अब इसी के साथ रागिनी आप सभी से चाहती है अनुमति गीत मालिका कार्यक्रम से। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:30 हो रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती से प्रसारित किया जाने वाला कार्यक्रम आज के फनकार।

राजेंद्र कृष्ण साहब का शुमार फिल्म जगत के बेहतरीन गीतकारों में होता है। उनकी कविता में नजाकत है, जज्बात की गहराई है और दिल को छू लेने वाला फन है।

वो चाहे अलसाई सी दोपहर हो, कोई हसीन शाम हो, या फिर कोई उदास अकेली रात। राजेंद्र कृष्ण के बोल उन पलों में कभी प्यार, कभी इकरार, कभी रुसवाई और कभी जिंदगी का कोई और दर्द इस तरह भर देते हैं कि उस दर्द से भी मोहब्बत हो जाए।

6 जून 1919 को शिमला में जन्म हुआ था अपने कलम से दिलकश नगमों को जन्म देने वाले इस गीतकार का। बहुत कम उम्र में ही राजेंद्र कृष्ण मोहित हो गए थे कविता पर। रोजी रोटी की जद्दोजहद में 1940 तक म्यूनिसिपल ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। उनकी इस नीरस नौकरी को रसीला बनाती रहीं फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की रचनाएं। 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बनी फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थीं और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर थे।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

सन 1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन हो गया।

0: अब अपने दोस्त कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए लक्ष्मी श्रीवास्तव की लिखी कहानी नजरिया, वाचन स्वर नेहा शर्मा का। आप आ गए? मुझे तो पता ही नहीं चला, भावना ने रसोई घर से निकलते हुए संदीप से कहा। अभी आया हूं बस, मां ने दरवाजा खोला। पता है तुम्हें, घंटी बजाने ही वाला था कि मां ने दरवाजा खोल दिया, संदीप ने कहा। हां, खाना खिला दिया उन्हें, कह रही थी कि आप आओगे तो साथ में बैठकर खाएंगे, पर मैंने आपका ही नाम लेकर कह दिया कि उन्होंने कहा है कि मां को जल्दी खाना खिला दिया करो, मां के लिए लेट खाना खाना ठीक नहीं। मैंने खाना खाकर घूमने का और कह दिया, इसीलिए गई हैं शायद थोड़ा नाराज होकर। तुमने अच्छा किया भावना, ऐसी नाराजगी सर आंखों पर।
2: इकतीस को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यह यात्रा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बिम्स्टेक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में साझा समृद्धि, संपर्क और सुगमता को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एकजुटता और आपसी सहयोग की भावना के साथ बिम्स्टेक सदस्य देशों के साथ सहयोग को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
3: मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कई दशकों बाद दुर्लभ जंगली बिल्ली कैराकल दिखाई दी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत कूनो राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव संरक्षण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है और कैराकल की वापसी इसी का प्रमाण है। खेलों में भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेज होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: समाप्त हुआ।
1: FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान। इस कार्यक्रम के संचालक हैं लाल बहादुर दुबे और प्रस्तुतकर्ता हैं संतोष कुमार।

0: श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है विकास कार्य तथा योजनाओं से संबंधित जानकारियों पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान और इस अंक के साथ मैं लाल बहादुर दुबे। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र सासाराम स्थित वार्ड नंबर 2 के मोहल्ला बैजला के बारे में। सासाराम नगर निगम कार्यालय से उत्तर दिशा में लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर सासाराम आरा रोड के बगल में स्थित है बैजला। पहले यह उचितपुर ग्राम पंचायत का भाग था, लेकिन सासाराम नगर निगम बनने के बाद यह नगर निगम के वार्ड नंबर 2 का भाग हो गया है। पहले तो यह एक सामान्य बस्ती थी, लेकिन नगर निगम में शामिल होने के बाद काफ़ी लोग बैजला के आसपास गृह निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिससे इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता जा रहा है। बैजला में एक प्राथमिक विद्यालय था, जिसे पास में स्थित सेमरा उच्च विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां बच्चे पढ़ते हैं। बैजला में गली नाली पक्की दिखाई पड़ी, बिजली के पोल पर कवर्ड तार देखने को मिला। श्रोताओं, ये तो रही नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 2 के मोहल्ला बैजला की बाहरी स्थिति जो हमें देखने को मिला, लेकिन वास्तव में वहाँ विकास की क्या स्थिति है, नाली गली पेयजल शिक्षा स्वच्छता स्वास्थ्य सुविधा के बारे में मोहल्ला वासियों का क्या कहना है, सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं का लाभ वहां रहने वाले पात्र लोगों को क्या मिल रहा है, इन सभी जानकारियों के लिए हमने संपर्क किया बैजला के लोगों से और बातचीत की। विषय है रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 2 के मोहल्ला बैजला में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं, आज हम रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र सासाराम स्थित वार्ड नंबर 2 के मोहल्ला बैजला में उपस्थित हैं और हमारे साथ बैजला के कुछ लोग हैं, तो आइए मिलते हैं और बातें करते हैं। जी, आप अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका?
1: जी, मेरा नाम मनोज शाह है, मैं बैजला का निवासी हूँ।
0: जी, बैजला जो है अब तो नगर निगम में हो गया है ना?
1: हाँ, नगर निगम में आ गया है। नगर निगम में आने से इसका जो है विकास थोड़ा सा हुआ है, लेकिन अभी यहाँ पर पानी निकासी की थोड़ा सा असुविधा है।
0: आपका जो मोहल्ला है बैजला, यहाँ लगभग कितने घर होंगे? ये तो चूंकि रोड के दोनों साइड में हो गया है, तो एक अनुमान?
1: पूरी आबादी सब मिला जुला के लगभग 150 घर आ जाएगा, लेकिन गांव में 60-70 घर है और नया नया घर बहुत सा रोड के दोनों साइड में बना है, और जिसके चलते यहाँ पर आबादी भी थोड़ा सा ज्यादा हो गई है, और आबादी होने के चलते यहाँ पर पानी निकासी की हर जगह बेढंगा ढंग से आदमी कुछ रोड पर माटी गिरा गिरा के नाला वाला नहीं लगाया है, जिसके चलते पानी लग रहा है।
0: रोड के जो दोनों साइड में बन गए हैं मकान, इसमें किनारे किनारे पानी निकास की समस्या?
1: पानी निकास कोई नाला वाला लगा नहीं रहा है, बाढ़ आ रहा है तो पानी बस भर जा रहा है सब।
0: ये बताइए, जो आपका पहले गांव था, पुराने गांव थे, यानी कि आज के समय वार्ड में क्या स्थिति है, नाली गली कंप्लीट है?
1: पुराने गांव में हाँ, नाली गली बहुत पहले से बना हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो रोड के किनारे जो नया मोहल्ली बनी हुई है सब, उसमें नाली आदमी नहीं लगाने के चलते सब पानी का निकासी का दिक्कत हो रहा है।
0: अच्छा, ये बताइए कि यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए क्या सुविधा है, विद्यालय है सरकारी?
1: सरकारी विद्यालय, एक प्राथमिक विद्यालय है जो सेमरा स्कूल में कन्वर्ट है, अभी वहाँ पर बच्चा लोग जाता है पढ़ने।
0: नज़दीकी है ना?
1: हाँ, वो 1.5 किलोमीटर है इस गांव से, और सारा बच्चा वहीं पर जाता है। जी,
0: बिजली की यहाँ क्या स्थिति रहती है?
1: बिजली तो अभी ठीक है, बिजली का दिक्कत नहीं है, बिजली आ रही है, कभी कभी उसी में चली जाती है, तो उसका लिए क्या किया जाएगा।
0: बिजली में सरकार की तरफ से जो छूट मिल रही है, वह लोगों को यहाँ पर मिल रहा है?
1: हाँ, 125 यूनिट का छूट मिल रहा है।
0: ये बताइए पेयजल की क्या स्थिति है यहाँ पर?
1: हाँ, पेयजल का स्थिति ठीक है, नल जल वाला पानी आता है, लेकिन एक बैजला मोड़ पर चापा कल है, वो खराब पड़ा हुआ है, नहीं बन रहा है, जिसके चलते मोड़ पर के जो आदमी है, जैसे हम लोग रहते हैं, पानी का दिक्कत होता है।
0: यहाँ पर ऐसे लोग भी होंगे जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेते होंगे, उनको मिल रहा है योजनाओं का लाभ?
1: हाँ, किसान

0: निधि योजना कुछ किसानों को मिलता है और यहाँ पे विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन इन लोग का कुछ मिलता है।
1: आपके घर में कोई वैसी सुविधा है कि नहीं?
0: हमारे घर में तो किसी कोई सब सुविधा नहीं।
1: किसान सम्मान निधि
0: नहीं मिलता है और राशन कार्ड अभी बना है।
1: राशन कार्ड वालों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आप बनवाए हैं कि नहीं?
0: अभी आयुष्मान कार्ड तो नहीं बनवाए हैं, तो उसी से बन जाता है ना।
1: इसके अलावा बताइए, कुछ लोगों को कॉलोनी मिली हुई है यहाँ पर?
0: हाँ, यहाँ पर बहुत से आदमी को कॉलोनी मिली है। हमारे दलित टोले में तो बहुत सा आदमी को मिला है कॉलोनी।
1: तो आप बता रहे थे कि यहाँ पर पानी निकास की है, तो जो अभी नया नया मोहल्ला बस रहा है, मैंने बैजला के दोनों साइड में आरा सासाराम रोड है, इसके दोनों साइड में जो बस रहा है, तो यहाँ पर बसने के बाद सामने जो चार्ट है इसको भर दे रहे हैं। यहाँ पर नाला की व्यवस्था नहीं लोगों की,
0: यही अभी नहीं कर रहे हैं लोग, जिसके चलते कभी बाढ़ आ रहा है ना तो खेत वेत सब पीछे का डूब जा रहा है, जिससे फसल नुकसान हो जा रहा है। बाकी सब ठीक है इधर, अब कोई व्यवस्था में दिक्कत नहीं है।
1: जी धन्यवाद, आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं।
2: मेरा नाम विकास कुमार है।
1: कहाँ के रहने वाले हैं?
2: गांव बजला।
1: मोहल्ला कहिए। मोहल्ला बजला।
2: मोहल्ला बजला।
1: वार्ड नंबर?
2: वार्ड नंबर 2,
1: नगर निगम सासाराम। तो ये बताइए क्या स्थिति है अभी बैजला की?
2: बैजला की स्थिति सब मतलब कि लाइन बिजली मतलब कि सब सही है। दिक्कत मतलब कि यही है, तो मतलब कि पानी के लेके दिक्कत है कि जिसे में कि नल जल को जो पानी जो आ रहा है ना, तो वो पानी मतलब कभी दे रहा है कभी बंद भी कर दे रहा है, मतलब कि अपने मन से मतलब कि नल जल वाला पानी मिल रहा है।
1: बाकी चीज बताइए कि यहाँ पर गली नाली बिजली क्या स्थिति है?
2: ये सब सही है, मगर दिक्कत है वो पानी वाला है।
1: अच्छा, नगर निगम हो जाने के बाद कुछ सुविधा मिल रही है, सफाई झाड़ू लगना नाली वगैरह साफ करना?
2: हाँ, सुविधा तो है, वो आता है अपना नाली सफाई उफाई करके चला जाता है।
1: सुविधाएं मिल रही हैं?
2: हाँ, पहले सुविधा है।
1: और यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र है कि नहीं?
2: आंगनबाड़ी केंद्र है, माँ काली मंदिर के पास है, वहाँ पर सब बच्चों लोग आंगनबाड़ी में जाता है, पढ़ाई होता है।
1: सुविधा लगभग देखा जाए तो हर तरह की यहाँ पर है ही, जो भी बच्चों को पढ़ने के लिए सुविधा, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय शायद जो स्कूल का जो रूम था वह जर्जर हो जाने के चलते सेमरा विद्यालय में चल गया है
2: वहाँ पर सेमरा स्कूल पर। अभी उतना जर्जर नहीं है, मगर अब उन लोग अपना सुविधा के लिए मतलब कि सेमरा स्कूल पर चले गए हैं।
1: अच्छा, ये सब तो कुछ विकास की बातें हुई, ये बताइए सरकारी योजनाओं का लाभ आपको या आपके घर के कुछ सदस्यों को मिल रहा है?
2: बच्चों को वही छात्रवृत्ति मतलब कि मिलता है, मतलब राशन मिलता है।
1: आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं कि नहीं?
2: आयुष्मान कार्ड अभी हम नहीं बनवाए हैं।
1: बनवा लेना चाहिए, देखिए कोई जानता नहीं है समय कब किसका खराब हो सकता है। तो उसमें यह है कि एक इलाज की सुविधा है, 5 लाख तक के पूरे परिवार का इलाज की सुविधा है, तो आप बनवा लेना जरूरी है। अच्छा, कॉलोनी के भी पात्र होंगे जिन्हें कॉलोनी मिली होगी? मिला है गांव में
2: कॉलोनी मतलब कि बहुत आदमी को मिला है, मतलब कि हम लोग का मतलब कि आज 5-7 बरस इलाज मतलब कि मिला नहीं है हम लोग का।
1: अच्छा, आप भी उसके पात्र हैं?
2: हाँ, मगर मिला नहीं है।
1: मैंने पहले मिला था क्या?
2: पहले मतलब कि मिला था, तो मतलब कि पिताजी के मिला था, हमको अभी नहीं मिला। गुडू वार्ड है तो बोले कि मतलब कि फार्म वार्म भर के जमा कर दीजिए, मिल जाएगा। आज 2-3 साल हो गया मतलब कि पास ही नहीं हुआ।
1: पता करना चाहिए, क्योंकि जो निडी व्यक्ति हैं जिन्हें आवश्यकता है उन्हें वो चीज़ मिलना चाहिए। बाकी यहाँ पर ठीक लग रहा है?
2: सब ठीक है, बाकी व्यवस्था ठीक है।
1: धन्यवाद, आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं।
3: नाम बलजीत कुमार, ग्राम बैजला, वार्ड नंबर 2,
1: नगर निगम सासाराम।
3: जी सर,
1: आप क्या करते हैं?
3: हम तो सर काम करते हैं अपना, मजदूरी उड़ी कर।
1: क्या स्थिति है अभी बैजला की?
3: स्थिति खाली ये पानी लग जाता है जब बाढ़ आता है। तो
1: रोड किनारे समस्या लोग बता रहे हैं कि जो अभी नया मकान बन रहा है घर के आगे जो चार्ट है इसमें नाला नहीं डाल रहे हैं।
3: नहीं डाला हुआ है
1: जी। तो इसके चलते समस्या होती है पानी की, मतलब गांव में तो दिक्कत नहीं होती?
3: गांव में दिक्कत नहीं होती है, खेत बाजार में चल जाता है।
1: अच्छा, यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या करते हैं?
3: ज्यादा लोग खेती करते हैं, कुछ कमाते भी है रोड साइड पे, मजदूरी उदूरी करते हैं। किसान तो यही ना होता है,
1: किसान के लिए समस्या हो जा रही है कि पानी बाढ़ का लग जा रहा है, निकास की व्यवस्था ना होने के चलते तो थोड़ी समस्या होती होगी,
3: किसान का फसल खराब हो जा रहा है।
1: यहाँ पर बिजली कैसी रहती है आपके बजरा?
3: बिजली रहती है सर, काले झूठ बोले, बिजली रहती है।
1: तो सरकार जो छूट दे रही है बिजली में वो आपको मिल रहा है?
3: लाभ मिल रहा है, लाभ मिल रहा है।
1: लोगों का तो बिजली बिल माफ हो जा रहा है?
3: हाँ, हमको हुआ नहीं था पहले, आज तब जब फिर हुआ तो अब चल रहा है उसी पे।
1: अच्छा, पैसा नहीं लग रहा है?
3: ना, पैसा नहीं लग रहा है।
1: गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई के सुविधा है ना?
3: हाँ, सुविधा है, बाकी कड़ी धूप में जाना पड़ता है 1.5 किलोमीटर।
1: छोटे बच्चों के लिए
3: परिश्रम है, कई जी के बगल में स्कूल था तो खींच के उधर ले गए, अपना वहाँ सेमरा स्कूल में ज्वाइन कर लिए, मध्य विद्यालय सेमरा।
1: दिक्कत हो रही
3: है, बहुत दिक्कत हो रहा है।
1: और छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी?
3: आंगनबाड़ी है।
1: क्या स्थिति है वहाँ पर?
3: बच्चे जाते हैं, मैडम पढ़ाते, जब पढ़ भी नहीं कीजिएगा तो मैडम का क्या उसमें दोष है
1: जी? सुविधा है ना वहाँ पर?
3: हाँ।
1: अच्छा, ये सब विकास की बातें हुई सरकारी योजनाओं के बारे

0: में बताइए, कुछ सरकारी योजना का लाभ परिवार के सदस्यों को मिल रहा है कि नहीं?
1: राशन मिलता है। पहले हमारा नाम था, नाम कट गया राशन में। पहले मिलता था हमको, कुछ डिलीवर हो गया इधर से उधर राशनधारी के पास, वहाँ से नाम कट गया हमारा। नहीं मिलता है हमको, मम्मी पापा लोग को मिलता है। बड़ी परेशान कि बन जाए तो अभी बन नहीं रहा है।
0: आयुष्मान कार्ड के बारे में बताइए।
1: नहीं है सर,
0: बनवा लेना चाहिए जिनका नाम है, कम से कम बन जाए।
1: ठीक है सर, बन जाएगा।
0: बताइए, कॉलोनी के भी पात्र आप रहे हैं क्या आपके परिवार के?
1: बहुत पहले सर, 2003 में हमको मिला था।
0: जो आप उस समय मिले थे जो भी राशि, उसका बना लिए हैं कि ऐसे ही रह गया?
1: नहीं सर, तो पैसा मिला 35,000 उसको जमाने का था, तो 35 का 55,000 लग गया हमारा। घर से 25,000 घुस गया, 20,000
0: बना लिए उसमें,
1: बन गया उसमें, कोई दिक्कत नहीं है।
0: घर में कोई बूढ़े लोग भी हैं?
1: मम्मी पापा की एज नहीं हुआ है, कमे हो रहा है, 60 नहीं हुआ है अभी।
0: पानी की समस्या यहाँ पर लोग बता रहे हैं, पीने वाला पानी तो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है।
1: हाँ ठीक बोल रहे हैं, टाइम से पानी नहीं देते हैं लोग,
0: मैंने समय से पानी नहीं।
1: पानी आने के टाइम होगा ना तो लाइन कट जाएगा, तो पानी कहाँ से मिलेगा?
0: बाकी चीज तो यहाँ पर सही है,
1: सब सही है सर।
0: जी जी धन्यवाद। श्रोताओं, नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 2 के मोहल्ला बैजला के कुछ और लोगों से की गई बातचीत हम थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पूर्व सुनवाते हैं आपको एक गीत मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। गीतकार हैं कवि प्रदीप, संगीतकार हैं अविनाश व्यास, और 1954 की फिल्म है चक्रधारी।

श्रोताओं, आज हमारी बात हो रही है रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम स्थित वार्ड नंबर 2 के मोहल्ला बैजला के लोगों से, और जान रहे हैं विकास कार्य तथा यहां पर लोगों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में। गीत के बाद आइए चलते हैं।

0: लोगों के बीच। आइए अगले एक व्यक्ति से मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
1: उमा शंकर सिंह।
0: कहाँ के रहने वाले हैं?
1: बैजला ही। क्या?
0: बैजला के वार्ड नंबर 2 नगर निगम हो गया है। अच्छा, बैजला में अभी क्या स्थिति है, नाली गली बिजली की यहाँ पर?
1: अभी तो बिजली ठीक है। अभी
0: नाली गली क्या स्थिति है?
1: नाली गली अभी हम नहीं कही बनावे के भाई रोडवा पर हमने कही नाली है क्या? अभी कहाँ नगर निगम बनाई सभी
0: यहाँ रोड किनारे जो बसे हुए लोग यहाँ पर सब लोग समस्या बता रहे हैं कि इसके चलते पानी की समस्या,
1: पानी की दिक्कत है अभी।
0: ये आप लोग रोड किनारे बना तो लिए हैं, नाला इसमें नीचे नहीं डलवाए हैं?
1: अभी नहीं डला, अभी तो जा रहा है, उस साल में जा रहा है। ऐसे ही
0: नाला डाला गया है,
1: पाइप दिया है 6 इंची का,
0: लेकिन उसे तो पूरा पानी बरसात
1: अभी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बाकी अब नगर निगम सोचेंगे बनाएगा तो होगा।
0: अच्छा, पुरानी जो बस्ती है वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ पर नाली गली ठीक है
1: सर? उधर वो सही है सब,
0: नाली गली पक्की है।
1: हाँ पक्की है।
0: तो यहाँ सड़क किनारे जो लोग नए नए बस रहे हैं यहाँ पर एक समस्या हो जा रही है।
1: वही सर, अभी नहीं नाली गली बना है।
0: सब लोगों की उम्मीद है कि नगर निगम के तरफ से बने बड़ा नाला लगे कि जिसके चलते लोगों को सुविधा हो।
1: सब पानी रुक गया है, सब चुपरा देखिएगा, बाढ़ होगा तो पूरा डूब जाएगा बजला टोला इधर।
0: अच्छा, पेयजल के बारे में बताइए यहाँ पर?
1: मोड़ है, कॉलेज चप्पा कल है, बिगड़ जाता है, बस यही एगो यही है, एगो इधर में है, वही साइड।
0: नल जल योजना यहाँ पर है ना?
1: दिक्कत है, नल जल का टंकी एगो बैठाया गया काली मैथर उधर।
0: तो चालू है ना?
1: वो चालू है, कब देता है कभी नहीं देता है वो।
0: अच्छा, आप क्या करते हैं?
1: हम खेती करते हैं, खेती गृहस्थी अपना, 2.5 बीघा खेत है अपना। वही
0: खेती गृहस्थी के लिए क्या सुविधा पानी की मिलती है?
1: पानी का सब सबसेबुल करा दिए, बोर किए हैं अपना वो खेते पर, नहर का पानी नहीं आता है,
0: नहीं आ पाता है
1: ना, नहर का सब बंद हो गया, रेलवे हो गया, सब उधर पानी खत्म अपना, ये सब बाहे करा जाम हो गया ना। अब
0: सवाल है कि यहाँ पर सब नई नई बस्ती बढ़ती जा रही, बस रहे
1: भरा गया सब,
0: इसके चलते दिक्कत हो,
1: दिक्कत हो रहा है।
0: अच्छा, ये बताइए किसान आप हैं, चूँकि खेती करते हैं, अपनी जमीन है, तो सरकार के तरफ से कुछ योजनाएं चलती हैं जिनमें प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना, 2,000 रुपए 6,000 आते हैं एक साल में, वो आपको मिलता है?
1: नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, फार्म आज नहीं किए।
0: अच्छा, राशन कार्ड की सुविधा है ना?
1: हाँ राशन मिल रहा है अभी, 22 किलो देता है।
0: राशन कार्ड वालों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनता है, बनवाए?
1: आयुष्मान कार्ड हमारा नहीं, हमारा औरत का है।
0: आपका भी बन जाएगा? क्यों बनवा?
1: अभी नहीं बनवाए हैं, बाकी बनवाएंगे,
0: बनवा लेना चाहिए, सबका बन जाएगा। जिसका राशन कार्ड में नाम होगा उस सबका बनता है, पूरे परिवार के लिए एक सुविधा होती है, कोई बीमार पड़ जाए,
1: 4-5 लाख का इशू होता है।
0: अच्छा, आपकी उम्र क्या है?
1: हमारा 55।
0: 60 वर्ष के कोई लोग नहीं ना घर में जिन्हें वृद्ध पेंशन योजना का
1: हमारा?
0: यहाँ कुछ लोग कॉलोनी के भी पात्र होंगे जिन्हें कॉलोनी मिली होगी, मिला है गांव में?
1: हाँ मिला है, 3 लाख खोला है वही मिला है।
0: बाकी चीज तो यहाँ पर ठीक है ना?
1: हाँ बाकी सब ठीक है अभी
0: जी। धन्यवाद। आइए अगले व्यक्ति से मिलते हैं, इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
2: ददन सिंह।
0: कहाँ के रहने वाले?
2: बैजला के।
0: क्या करते हैं आप?
2: किसानी खेती होती।
0: अच्छा, खेती गृहस्थी करते हैं। क्या स्थिति है अभी विकास के मामले में बैजला में? नाली गली बिजली पानी कैसा है?
2: हम लोग को तो खुद गली नहीं बना, अभी आज तक इतना पानी हाथ में आते हैं जाते हैं, अभी देख लीजिए।
0: किधर है आपका? की नहीं
2: बगल में है, बत्ती पड़ता ना बगल में है।
0: तारा सासाराम रोड के पूर्व साइड में आप रहते हैं?
2: हाँ पूर्व साइड में।
0: आपके घर तक नहीं बने कि और भी लोग हैं वहाँ आसपास में? वहाँ तक
2: सब घर बनी जा, हमने के हाथ ना पाँच में लास्ट में देखो देखो तो 4-5 गाड़ी माटी गिर।
0: आप लोग 5-6 घर हैं
2: जी? हाँ।
0: जहाँ तक नाली की समस्या है और गली,
2: नालियों के पानियों के समस्या,
0: नाली गली दोनों की
2: दोनों समस्या है।
0: अच्छा ये बताइए पेयजल आप लोगों को मिल रहा है इस समय, पीने वाला पानी टंकी?
2: हाँ वो चापा कल एगो है सरकारी, वह काम कर रहा सर।
0: नल जल योजना भी तो चालू है आपके यहाँ?
2: चालू है तो हम लोग का चलते ही नहीं है।
0: आपके यहाँ नहीं चलता है?
2: जी ना, हम लोग 5-6 घर बन जाए, एक
0: पानी आता ही नहीं है
2: जी ना अभी तक से।
0: चापा कल है सरकारी?
2: जी हाँ।
0: तो वह चलता है?
2: वो चलता है, वही से काम चलता है।
0: गर्मी के दिनों में तो जनरल चापा कल नहीं चल रहा होगा क्योंकि पानी का लेयर नीचे,
2: तो सर बंद है,
0: सब बंद हो गया,
2: बंद हो गया,
0: पानी का लेयर नीचे चला जाता है
2: ना।
0: बिजली मिलती है कि नहीं?
2: मिलता है।
0: क्या स्थिति है बिजली की?
2: बिजली का ठीक है,
0: सरकार के तरफ से कुछ छूट भी उसे मिलती है?
2: पढ़ा लिखल सर ना है।
0: अच्छा इतना तो मालूम है ना कि जो छूट है सरकार की तरफ से मिल रहा है?
2: छूट है, हम सुन रहे बन के छूट है।
0: सरकारी योजनाओं के बारे में बताइए, कुछ लाभ आपको घर के सदस्यों को मिल रहा है?
2: लाभ कहाँ मिल रहा है?
0: राशन कार्ड है?
2: राशन कार्ड हाँ है, राशन नहीं मिलता है, बंद कर दिया, अब बनल हो गया विधा पेंशन, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा कमेंट।
0: अच्छा, कभी कॉलोनी वगैरह भी पहले मिली है?
2: हाँ कॉलोनी मिला है पहले जी हाँ।
0: पैसा जो उसे मिला था उसमें बना लिए हैं कि ऐसे?
2: बना लिया है, घरों से कमा कर भी लगा के।
0: बिल्कुल बना लिए हैं ना?
2: हाँ जी हाँ, वही को सरकार के हमारा लोभ है
0: जी। और घर में कोई बूढ़े सदस्य भी हैं जिनका 60 साल उम्र हो गया हो, जो उम्र दराज है?
2: माई बिया
0: उनको पेंशन मिलता है
2: जी ना बुढ़िया के ना बिले बंद हो गए लोग करो
0: देखिए।

0: हर साल जाकर अपना वेरिफिकेशन कराना होता है।
1: हाँ सर।
0: तो नहीं कराए होंगे, हो सकता है उस कारण भी बंद हो गया हो। एक बार जाना चाहिए, कहीं साइबर कैफे में अंगूठा का निशान लगता
2: है। सेवरा स्कूल पहुँचू लागर अकाउंट तक कहा ला तो मैं हो जाई लिख पढ़ के दिया सर कहाँ भैया।
0: बाकी स्थिति यहाँ पर ठीक है ना?
2: हाँ
0: जी। धन्यवाद श्रोताओं, अगले व्यक्ति से मिलते हैं, उनका परिचय जानते हैं। क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम संजय कुमार पड़ेगा, मैं बैजला निवासी, मेरा घर बैजला ही में है।
0: ये तो हो गया नगर निगम सासाराम वार्ड नंबर 2।
3: हाँ जी।
0: क्या स्थिति है अभी विकास के मामले
3: बैजला में? तो अभी तक हम लोग नगर निगम में जब से आया अभी हम लोग कुछ विकास नहीं देखे हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पे झाड़ू लग रहा है और नाली वाली साफ होता है,
0: बस यही दो अधिकांश लोग बताते भी हैं कि यही दो चीज अधिकांश
3: हम लोग और कुछ नहीं देखे हम लोग।
0: पहले से जो स्थिति है क्या है?
3: पहले ही से है, शुरू से है, अभी भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन बिजली बत्ती की सब व्यवस्था ठीक है।
0: बिजली में जो सरकार छूट दे रही है वह मिल रहा है?
3: हाँ मिल रहा है, मिल रहा है, वो छूट मिल रहा है। 125 यूनिट जो फ्री है वो तो आ रहा है कट करके।
0: आप क्या करते हैं?
3: हम जॉब करते हैं।
0: कुछ ऐसे लोग यहाँ पर होंगे जो कृषि से जुड़े हुए हैं, किसान हैं, खेत है उनका, उनको कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं?
3: मिलता है, वो मिलता है, बहुत लोग को मिल रहा है। 2000 रुपया करके 3 किस्त में जो आता है वही वो मिलता है, बहुत लोग को मिल रहा है।
0: राशन कार्ड वाले भी यहाँ पर है ना?
3: हाँ राशन कार्ड तो आजकल देखिए रहे हर जगह, बहुत से राशन कार्ड बना हुआ है
0: जी। आप भी कुछ वैसे योजना का लाभ आपके घर के सदस्य कुछ लेते हैं जो सरकार की तरफ से चलती है?
3: हाँ,
0: कोई वृद्ध?
3: हाँ है, मान के चलिए बूढ़ा पेंशन मिलता है, किसान वाला भी मिलता है, मिलता है, ऐसा बात नहीं है। सरकारी सुविधा जो मिलता है जो है सो मिल रहा है हम लोग।
0: सरकारी सुविधाओं का लाभ लोगों तक पहुँच?
3: हाँ पहुँच रही है, ऐसा बात नहीं है, पहुँच रहा है।
0: यहाँ पर लोग समस्या बता रहे हैं कि रोड किनारे जो बना हुआ है मकान वगैरह इसमें नाला नहीं डाला गया है।
3: पानी के निकासी को देखा जाए ना तो बहुत संकट आने वाला है, इसलिए कि खेत का जो पानी निकासी है होने का जगह दिखाई नहीं दे रहा है। जब इधर से निकासी हम लोग का एक नाला था उससे निकासी हो रहा था, वो भी समझिए प्लॉटिंग हो गया सब जमीन, अब सारा जमीन जो है बाउंड्री हो रहा है तो पानी निकासी होगा कहाँ से? सारा जो है चाट उट भरा गया है, इसके चलते दिक्कत तो होगा।
0: समस्या सब जगह चल रही है क्योंकि लालगंज नहर के बाद जब इधर आते हैं तो जो दोनों तरफ मकान बन रहे हैं किनारे का चाट तो सब भर दे रहे हैं।
3: गांव में खेती जो है नहर डिपार्ट से मतलब उसका रही नहीं गया सिंचाई का, वो सारा ओपन से अपना समरसेबुल गला के कोई कुछ पंपू सेट से करता है। हाँ नहर से पानी इधर नहीं आ पाता है, सारा बंद हो गया है, इसके चलते दिक्कत है। बाकी जो है सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है
0: जी। धन्यवाद। श्रोताओं आप सुन रहे थे नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 2 के मोहल्ला बैजला के लोगों से की गई हमारी बातचीत। विषय था रोहतास जिला के सासाराम प्रखंड अंतर्गत नगर निगम सासाराम क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 2 के मोहल्ला बैजला में विकास कार्य और योजनाएं। श्रोताओं यदि आप भी अपने गांव मोहल्ला में हुए विकास कार्यों के बारे में बातचीत करना चाहते हों या आज के कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपने लिखा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम पिन 8211115। पत्र के अलावा आप हमें ईमेल के द्वारा भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है akasvansasaram@gmail.com। श्रोताओं समय अब आपसे और अधिक बातें करने की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए साप्ताहिक कार्यक्रम विकास के सोपान अब यहीं संपन्न होता है। अगले सप्ताह एक नई जानकारी लेकर हम पुनः आपके बीच होंगे, आज ही के दिन ठीक किसी समय। तब तक के लिए हम आज्ञा चाहेंगे, नमस्कार। कार्यक्रम संकलन एवं सूत्रधार लाल बहादुर दुबे और प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

विकास के सोपान, ये साप्ताहिक कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी एल्बम लोकगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में लीजिए सुनिए मुन्ना सिंह की आवाज़ में ये लोकगीत, जिसे संगीत से सजाया BN सिंह ने है। पारंपरिक लोकगीत है ये और एल्बम है करी हम कौन बहाना।

शारदा सिन्हा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे पुरबो तोहरे नेहा। इस एल्बम में ये पारंपरिक भोजपुरी एल्बम लोकगीत, संगीत भी शारदा सिन्हा का था। और इसी के साथ ही हमारा भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम रसधार बस कुछ ही पलों में।

आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:45 हो रहे हैं। रसधार कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं रंजन दुबे की आवाज़ में मृत्युंजय सिंह सिप्पी का लिखा हुआ एक भोजपुरी एल्बम सॉन्ग, जिसकी धुन बनाई असलम मिर्जापुर ने है। एल्बम है हे अम्बा जगदम्बा।

अम्बा जगदम्बा इस एल्बम में अभी आप सुन रहे थे रंजन दुबे की आवाज़ में ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। और अब सुनवाते हैं आपको विजय।

जगदम्बा इस एल्बम में अभी आप सुन रहे थे रंजन दुबे की आवाज़ में ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। और अब सुनवाते हैं आपको विजय चौहान का लिखा हुआ एक एल्बम सॉन्ग। आवाज़ विजय चौहान के साथ शिल्पी राज की है और संगीतकार हैं आर्य शर्मा। तो लीजिए सुनिए मेरा दिल दीवाना इस एल्बम का ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग।

कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 से प्राप्त की जा सकती है।

0: गोरिया चांद के अंजुरिया निहन गोर बड़ू हो। आलोक कुमार और ज्योति तिवारी के स्वर में इस एल्बम का ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग अभी आपने सुना। गीत और संगीत था अशोक कुमार दीप का। और अब इसी के साथ हमारा आज का यह रसधार कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाहन के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों को हम अपने आकाशवाणी सासाराम से रिले करने जा रहे हैं, तो सुनते रहिए आकाशवाणी सासाराम का केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब प्रातःकालीन सभा से रागिनी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम था मौसम। गीतकार थे गुलजार साहब और संगीत दिया था मदन मोहन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: यह अवस्थी आशा भोसले की और फिल्म का नाम था उमराव जान। इसे लिखा था शहरयार ने और धुन बनाई थी खयाम साहब ने।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज

0: के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम में आप सुनिए जयदेव के संगीत निर्देशन में मखदूम मोहिउद्दीन की लिखी ये रचना। गायिका है छाया गांगुली और फिल्म का नाम है गमन।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आइए सुनते हैं अगला गीत। जगजीत सिंह की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म साथ साथ की ये गजल। इसे जावेद अख्तर ने लिखा है और संगीत दिया है कुलदीप सिंह ने।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: लीजिए अब सुनिए हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं आशा भोसले और सत्यशील देशपांडे की। ये फिल्म है लेकिन।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और अब आज का चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए मैटिनी शो।

मैटिनी शो में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म थ्री इडियट्स के कुछ गीत। जी हाँ, फिल्म थ्री इडियट्स, जिसे आपने भी देखा होगा, इसी पर आज हम कुछ बातचीत कर लेंगे। क्यों, ठीक है ना? तो आप सभी जानते हैं कि फिल्म थ्री इडियट्स बहुत ही फेमस फिल्म है और ये फिल्म कई विषयों की पड़ताल के लिए जानी जाती है, खासतौर से शिक्षा प्रणाली की जो मुद्दे हैं, शिक्षा प्रणाली के मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी जो आलोचनाएं हैं और शिक्षा से जुड़े जो सामाजिक दबाव हैं बच्चों पर, परिवार पर, उस पर केंद्रित रही ये फिल्म थ्री इडियट्स। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आवाजें सोनू निगम, शान और स्वानंद किरकिरे की। गीत को स्वानंद किरकिरे ने ही लिखा है और धुन शांतनु।

0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की। इसमें ये फिल्म 2009 में आई थी और आमिर खान के अलावा आर माधवन, शर्मन जोशी, करीना कपूर, बोमिन ईरानी और ओमी वैद्य मुख्य भूमिकाओं में थे। और इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हीरानी ने किया था, गीत स्वानंद किरकिरे ने लिखे थे और संगीत था शांतनु मोइत्रा का। और हाँ, हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में आमिर खान ने फुनसुख वांगड़ू के रूप में भूमिका निभाई थी रेंचो की, जिसे रेंचो के नाम से हम जान रहे थे। शर्मन जोशी जो हैं राजू रस्तोगी के रूप में बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहे थे और आर माधवन फरहान कुरैशी के रूप में थे। करीना कपूर ने पिया के रूप में अपनी बहुत ही खास भूमिका निभाई और इस फिल्म का केंद्र बिंदु थे बोमिन ईरानी, जिन्होंने प्रोफेसर वीरू वायरस सहस्त्रबुद्धे के रूप में अपनी भूमिका निभाई। ओमी वैद्य ने चतुर रामलिंगम जो साइलेंसर के रूप में थे अपनी काफी अच्छी भूमिका निभाई और मोना सिंह मोनिका के रूप में थी। राहुल कुमार को मिलीमीटर के रूप में फिल्म में दर्शाया गया था। तो कुल मिलाकर ये फिल्म जो थी बहुत ही शानदार तरीके से एक शानदार विषय पर फिल्माई गई। निर्माता विधु विनोद चोपड़ा थे जिन्होंने बहुत ही सुंदर विषय उठाया। और कहते हैं कि फिल्म जो है चेतन भगत के उपन्यास 5.1 पर आधारित थी और इस फिल्म की पटकथा यानी स्क्रीन प्ले राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने लिखा था। और जैसा कि हमने बताया, शांतनु मोइत्रा ने संगीत दिया था और स्वानंद किरकिरे ने अपने गीतों से इस फिल्म में चार चांद लगा दिए थे।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो।
0: ये स्वर हैं सूरज जगन और शर्मन जोशी के।

0: तो मैटिनी शो में आज हम बात कर रही हैं फिल्म थ्री इडियट्स की। थ्री इडियट्स फिल्म भारतीय हिंदी फिल्मों की अगर हम बात करें तो मील का पत्थर माने जाने वाली फिल्म है और ये फिल्म शिक्षा प्रणाली की कमियों और सामाजिक दबाव जिस पर मैंने अभी बात कही थी आपसे उस पर एक तीखा व्यंग्य है जो दर्शकों को अपने जुनून को चुनने की एक सलाह देता है, संदेश देता है और जीवन को सरलता से जीने का भी संदेश देती है ये फिल्म। क्योंकि जिंदगी में हम आज इतने तनावग्रस्त हैं, हमारे बच्चे जो कैरियर चुनना चाहते हैं अच्छा मनपसंद, लेकिन इतना बोझ है शिक्षा का कि वे समझ नहीं पाते कि क्या किया जाए। तो ये फिल्म स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे हमारे जो शिक्षण संस्थान हैं, जो एजुकेशन है, वो सिर्फ रटने वाली विद्या पर बढ़ावा देती है, यानी नवाचार जो कहा जाता है कि नवाचार कीजिए उस पर इतना नहीं जोर देती है जितना कि रटने जैसी विद्या पर, ताकि बच्चे किसी पोस्ट पर जब जाते भी हैं, किसी कैरियर को चुनते भी हैं तो कई बार उनका पढ़ावा कहीं काम ही नहीं आता है। तो ये फिल्म ये भी दर्शाती है कि जो माता पिता हैं वो बच्चों पर कैरियर का विकल्प थोपे नहीं कि आपको इंजीनियर ही बनना है, आपको डॉक्टर ही बनना है, यानी आपको काबिल बनना है, कामयाबी की राह पर चलना है और इसके लिए आपको अपने सपने देखने हैं, अपने सपनों के पीछे भागना है। ये फिल्म साफ संदेश देती है कि काबिल बनो और कामयाबी तो आपके पीछे झक मार कर आएगी, बस तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है।
1: जाने नहीं।
0: और मेहनत भी ऐसी जो आपके सपने हैं, जो आपके ख्वाब हैं, जो आपकी कल्पना में हैं।

जी, तो आप सभी ने फिल्म थ्री इडियट्स देखी होगी, जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो इंसानी जीवन का संघर्ष है उसकी एक शानदार कहानी है। और ये फिल्म दर्शाती है कि हमें अपने अस्तित्व के लिए बचपन से ये लड़ाई लड़नी शुरू करनी होती है, क्योंकि बच्चा जब दुनिया में आता है तो अपने माता पिता की आशाओं से भरी निगाहों को देखता है, जो चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने या कोई बड़ा अधिकारी बनकर परिवार का नाम रोशन करे। माता पिता इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं कि उनकी अपेक्षाएं वास्तव में उनके बच्चों को लाभ पहुंचा रही हैं या उनके मानसिक दबाव को बढ़ा रही हैं। और ऐसा नहीं है कि माता पिता अपने बच्चों के दुश्मन होते हैं, बल्कि या ऐसा कि उनका कोई निजी स्वार्थ होता हो, लेकिन हाँ, माता पिता भी कई बार जरूरत से ज्यादा बच्चों पर जब बोझ लाद देते हैं तो फिर एक अलग कहानी पैदा हो जाती है। माता पिता की अपेक्षाओं का दबाव और बच्चे को और ज्यादा गंभीर बना देता है, तनावग्रस्त बना देता है और अपनी जिंदगी में जो बचपन की दुनिया है उसे भूलकर एक मानसिक दबाव की जिंदगी जीने लगता है। तो ये फिल्म एक ऐसे पिता की कहानी बताती है जो अपने बेटे को, जिसे वन्य जीव फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इंजीनियरिंग करने के लिए मजबूर करने की अपनी गलती को अंततः स्वीकार करता है और उसे अपने दिल की बात मानने की अनुमति देता है, जो कि हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे से बात करे और पूछे कि आखिर उनका बच्चा क्या बनना चाहता है और उस दिशा में क्या वो सच में मेहनत करेगा या खाली ख्वाब देख रहा है या सपने देख रहा है। ये बातचीत करने की आज परिवार में बेहद जरूरत है, ना कि अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को बच्चों पर लादने की। फिल्म थ्री इडियट्स यही कहती है संदेश।

ये आवाजें सोनू निगम और श्रेया घोषाल की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म थ्री इडियट्स की, और आप सभी ने अगर ये फिल्म देखी है तो निश्चित रूप से आप इस फिल्म को पसंद किया होगा। और इस फिल्म में शायद पहली बार शहरी कॉलेज जाने वाले छात्रों को एक सही रूप से बोलते हुए या कपड़े पहने हुए दिखाया गया है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि बहुत ही बड़े रूप में, एक अलग रूप में कॉलेज का दृश्य दिखाई देता है जो आम कॉलेजों से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन इस फिल्म में वैसा ही दृश्य दिखाया गया है जैसा फिल्मों में हमारे जीवन में भी वैसा ही दृश्य हमें कॉलेज का मिलता है। और दोस्ती की एक दिल को छू लेने वाली और दिल को उत्साहित कर देने वाली कहानी है, और जहां इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों को छू लिया। और हमें लगता है कि इस तरह की फिल्में अगर बनाई जाए तो निश्चित रूप से ये फिल्में हमें कुछ सीखने को तो देगी ही, और आम लोगों से भी फिल्मों का कनेक्शन जुड़ेगा। क्योंकि थ्री इडियट्स जैसी फिल्में जब बनती हैं जहां पर किसी विषय को, किसी मजबूरी को, किसी सपने को, किसी सच्चाई को उठाया जाता है, तो वो आम लोगों से कनेक्ट करती है फिल्म, ऐसा माना गया है। ये है थ्री इडियट्स फिल्म का आखिरी गीत, शान और शांतनु मोइत्रा की आवाजों में, स्वानंद किरकिरे की रचना, शांतनु

मैटिनी शो में अभी आप सुन रहे थे फिल्म थ्री एजेंट्स के कुछ गीत। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी।

0: कमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगम नेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में यह घोषणा की गई। लिंगम नेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानस उधार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमने राजेंद्र कृष्ण जी के लिखे गीतों को शामिल किया है। आज उनका जन्मदिन है, तो आइए सुनते हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में गीतकार राजेंद्र कृष्ण की रचनाएं।

श्री रामचंद्र के संगीत निर्देशन में हम आपको राजेंद्र कृष्ण की लिखी गीत रचना सुनवा रहे हैं। युगल स्वर आशा भोंसले और मोहम्मद रफी के, फिल्म का नाम है अमरदीप।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और सी रामचंद्र का गाया हुआ फिल्म का नाम है आजाद। गीत रचना राजेंद्र कृष्ण की और संगीत सी रामचंद्र यानी चितलकर का।

कार्यक्रम में आप सुनिए कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है ब्लैकमेल।

0: आ रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाजें मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम गोपी।

0: इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को फिल्म ब्लैकमेल में।

कार्यक्रम का अगला गीत मदन मोहन के संगीत निर्देशन में है। गीतकार राजेंद्र कृष्ण तो है ही, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है मन मौजी।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
3: राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत, मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजें फिल्म शहनाई के लिए।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म शारदा से आपके लिए चुना है। गाने वाले कलाकार लता मंगेशकर और आशा भोंसले, राजेंद्र कृष्ण के बोल तुम्हें ही और सी रामचंद्र का संगीत है।

0: लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज थी फिल्म शारदा के लिए।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
2: वंदे मातरम सुजला।
1: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: और अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने गीतकार राजेंद्र कृष्ण को याद किया।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

सुरीला सफर कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी बताइए कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे हैं और हमारे कार्यक्रम का इंतजार कर रहे हैं, और आपकी टिप्पणियां आपके संदेश पढ़कर हमें पता लगा कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और थोड़ा सा परेशान भी हो गए थे कि क्या बात है, आज सुरीला सफर में हम सफर करेंगे कि नहीं। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये कार्यक्रम आपका अपना है और हम हर दिन आपके साथ यूं कहें कि आप हमारे साथ सफर करते रहेंगे। हाँ थोड़ा कभी कभी आगे कभी कभी पीछे हम हो सकते हैं, होना नहीं चाहिए पर ऐसा कभी कभी हो जाता है। तभी तो जब ऐसा होता है, यानी कभी समय ज्यादा हो जाता है कभी समय से पहले कुछ हो जाता है तो हमारा ये मन व्यथित हो जाता है, और आज इसीलिए हमने कुछ ऐसे गीत चुने हैं जो आपके मन को प्रभावित जरूर करेंगे। और हमने हमारी इबारत बहुत छोटी रखी, कई श्रोताओं ने लिखा है कि अरे इतनी छोटी इबारत, जब हम बहुत बड़ी इबारत रखते हैं तो आप कहते हैं माशाल्लाह कितनी बड़ी इबारत रखी है, तो ऐसा नहीं है। जब मन में जो विचार आते हैं जिस गीत को लेकर या आज इस कार्यक्रम को लेकर, हम वैसा ही लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमसे अच्छा तो आप लिख देते हैं जनाब, जिसे हम पढ़ते हैं आप सभी के साथ साझा करते हैं। तो आज हमारी छोटी सी इबारत है कि कभी कभी मन का रेगिस्तान सूख जाता है, या यूं कहें कि कभी कभी मन जो है रेगिस्तान सा हो जाता है, मन प्यासा हो जाता है। इस भागती दौड़ती दुनिया में हर कोई, आप हम, किसी न किसी चीज का प्यासा है ना। उदास मन को बस एक अदृश्य मीठी सी बूंद की तलाश होती है। अगर आज या यूं कहें कि आपका मन जब भी उदास हो तो रुकिए, खुद को कोसिए मत, कोसना बंद कीजिए, आसमान की ओर देखिए, सूरज खुद जलकर औरों को ऊर्जा और प्रकाश दे रहा है, बस यही जीवन दर्शन है। इसलिए इस जीवन दर्शन को लेकर आज हमने इबारत रची, तो छोटी सी इबारत थी क्योंकि जब दर्शन की बात हो गई तो क्या कहना चाहिए, कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बात है ना। तो आपने मन के बारे में, सूरज के बारे में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हाँ हमने आपको लिखा था कि इस इबारत में आज के चुनिंदा गीतों से संबंधित कोई शब्द नहीं रखे गए हैं, जिसे लेकर आप अक्सर परेशान हो जाते हैं कि भाई इस शब्द पर तो बहुत सारे गीत हैं। आज हमने आपको इतना बड़ा क्लू दे दिया और उसको जानकर आपने देखिए कितने कम समय में कितने सारे गीत चुन लिए हैं जो हमारी पसंद के गीतों से मेल खा रहे हैं, यानी यूं कहें कि अब हमारी पसंद मिलने लगी है। यही तो होता है संगत का असर, हमें आपकी संगत का असर हो गया है, या यूं कहें कि आपको हमारे साथ रहने का असर है कि हमारी पसंद मिलने लग गई है। तो बस आज के गीतों में रे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बताइए कौन से गीत हो सकते हैं वो। आपने बहुत सारे गीतों को बताया भी है और उसका जिक्र हम करने भी वाले हैं, लेकिन हाँ हम आपको ये कहना चाहते हैं कि फिल्मी गानों में हमारे गीतकारों ने अलग अलग प्रयोग किए हैं और ये प्रयोग बहुत सफल भी हुए हैं। आज के सभी गीतों में रे का संबोधन है ना। कहते हैं कि हिंदी और उर्दू साहित्य का एक बहुत ही काव्यात्मक और भावनात्मक तरीका है ये, जिसमें हम किसी निर्जीव वस्तु, विचार या खुद के मन को सीधे पुकारते हैं तो उसमें संवाद करते हैं और कहते हैं सुन रे, है ना। बस इन्हीं गीतों को आज हमने चुना है जहां गीतकारों ने उसमें खुद से, किसी वस्तु से, किसी विचार से या किसी अपने से सीधे संवाद किया है रे के माध्यम से, जैसे कि सूरज रे जलते रहना। तो सुनिए।

तो देखा आपने सूरज रे जलते रहना, कितना खूबसूरत गीत। हेमंत कुमार की आवाज थी, हरिश्चंद्र तारामती फिल्म का नाम था, कवि प्रदीप की रचना थी ये, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। आपने सुना इस गीत को और महसूस किया होगा कि यहाँ कवि प्रदीप प्रकृति के सबसे तेजस्वी तत्व सूरज से बात कर रहे हैं और उसे उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। सूरज रे जलते रहना, बुझना मत जलते रहना, कितना खूबसूरत तरीके से गीतकार ने इस गीत को लिखा है ना। हमारी श्रोता लिखती है कि कोई चीज खो जाए और ना मिले तो मन कैसा उदास हो जाता है, मन का रेगिस्तान उसी पल सूख जाता है। लोग कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है, पर ऐसा नहीं होता। इंसान नियति के आगे झुककर जीने को बाध्य है, और जब हम जानते हैं कि हाल कैसा भी हो जीना तो पड़ेगा ही, तो क्यों ना ये जीवन थोड़ा हंसकर और थोड़ा भूल कर जिया जाए। जीवन को जितनी गंभीरता से लिया जाएगा उतनी ही पीड़ा होगी। इसे कुछ इस तरह से जियो कि यह उम्र एक सड़क है और हम सिर्फ चलने वाले हैं, हमें सिर्फ चलते जाना है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की इस आपाधापी में अक्सर मन का सागर उथला और शांत हो जाता है, उम्मीदों का किनारा छूटता सा लगता है और आत्मा एक सुकून भरी छांव की प्यासी हो जाती है। ऐसे में खुद को दोष देने के बजाय जरा उस वृक्ष को देखिए जो खुद तेज धूप सहकर पथिकों को शीतल छाया देता है। यही इस नश्वर जीवन का सबसे बड़ा सत्य और सार है, दूसरों के जीवन में प्रेम और प्रकाश को बांटना। वहीं श्रोता ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी बात कही है कि अगर कोई ये पता लगा ले कि मन की उत्पत्ति कैसे

ऐसी हुई तो मैं उसे वैज्ञानिक कहूंगी। सब कहते हैं मन मेरा है, लेकिन मन क्या है? इसकी उत्पत्ति क्यों हुई और ये किससे बना है? इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका उत्तर नहीं मिलेगा। मन की उत्पत्ति निरंतर बदलती रहती है, इसलिए कोई नहीं बता सकता कि ये कैसे अस्तित्व में आया। मन को ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के बीच कड़ी यानी मध्यस्थ माना गया है। अंतःकरण के चार भाग, अंतःकरण के चार अंगों में से मन एक है, शेष तीन बुद्धि, चित्त और अहंकार। कार्य मन का मुख्य स्वभाव है, संकल्प विकल्प, चंचलता, दुविधा और इच्छाएं पैदा करना। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन के अंदर भी एक रेगिस्तान होता है, बाहर भले हरियाली हो लेकिन अंदर सूखी और गर्म रेत। मन का रेगिस्तान पानी नहीं मांगता, वो मांगता है बस इतना कि कोई उसे समझे बिना, जज किए बिना उस उदास मन को बस वो जो थक गया है मुस्कुराते उसे मुस्कुरा कर देखे। उदास मन के भीतर भी एक कोना होता है जहां उम्मीद की एक बेल जिसे सींचना पड़ता है, खुद से बात करके, खुद को समझ के और बेवजह खुद को ही गले लगाकर। आपने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है, जो इसमें से आपका एक गाना हमसे मिलता है, सूरज रे जलते रहना। तो आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, शब्द रे। सोना रे,

आशा भोसले मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे और संगीतकार थे राहुल देव बर्मन। कितनी प्यारी इल्तजा कर रही है महबूबा अपने महबूब से, ओ मेरे सोनारे। जी तो आज के दो सवाल नोट कर लीजिए। वैसे तो आपने अपनी टिप्पणियों में बहुत सारे गीत लिखे हैं जो हमारी गीतों से मेल भी खा रहे हैं और उसके अलावा भी गीत लिखे गए हैं, तो वही हमारा सवाल है कि रे का ये प्रयोग किन किन गीतों में हुआ है, आप बताइए। जैसे ही आप बताएंगे हो सकता है आपकी पसंद हमारी पसंद से और मेल खा जाए और इसके अलावा कुछ अन्य गीत भी हमारी नजर में आ जाए। तो रे का प्रयोग यहाँ और फिल्मों में किन किन गीतों में किया गया है इसका उल्लेख आपको करना है, कम से कम चार या पांच गीत। और दूसरा सवाल ये है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी गीतकार जब लिखता है जैसे सोना रे सूरज रे, ये क्यों और कब? जैसा कि मैंने पहले कहा भी था, आप अपनी कल्पना से बताइए, अपने भावना से बताइए कि रे का ये काव्यात्मक रूप गीतकार कब कब गीतों में किस रूप में इस्तेमाल करता है। अगर वो कहता है सूरज रे चंदा रे मन रे, तो क्यों? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइएगा कम से कम शब्दों में।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत आधुनिक अंधी दौड़ की मरीचिका का उल्लेख करते हुए जीवन के दर्शन को बयां कर रही है। अंततः इस मृत तृष्णा का सुखांत सूर्य की उपमा संग प्रदान कर सुखद उपसंहार में समापन किया गया है। विषय पूर्णतः तथ्यपूर्ण और दार्शनिक है। अभिनव गीत चयन भी प्रशंसनीय है। अल्पकालीन सूचना पर भी आशा है कि यह संक्षिप्त इबारत सफर की गरिमा बरकरार रखेगा। बिल्कुल, ये आप सभी श्रोताओं पर है। हो सकता है आज का ये सफर थोड़ा छोटा हो जाए, आप सभी लोग कम से कम टिप्पणियां कर पाए क्योंकि आपको वक्त कम मिला, लेकिन जितना भी मिला उसी में हम इस सफर का आनंद उठाएंगे, क्यों, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश में जीवन में छाई उदासी या ग्लानि को एक तरस या प्यास की उपमा के साथ उभारने की कोशिश हुई और एक शब्द को खास कर प्रयोग में लाया गया है गीतों के जरिए, वो भी खास है रे, यानी मन वो उदास हो या धीर कैसे धरे या हो, या सूरज जो जीवन की शक्ति के लिए अपने को जलाता रहे, यही जीवन की सच्चाई को उजागर करते हुए गाने होंगे। आपने भी कुछ गीतों का चयन किया है तो देखिएगा आपके गीत हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं या नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी ये पंक्तियां जीवन के एक बहुत ही गहरे और कड़वे सच को बेहद खूबसूरती से बयां कर रही है। मंदाकिनी जी, भागदौड़ भरी इस जिंदगी में अक्सर हम दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते अंदर से पूरी तरह रीते और थकावा महसूस करते हैं। ये ठहराव जिसे हम प्यास या खालीपन समझ रहे हैं वास्तव में खुद को भीतर से सींचने और एक नई ऊर्जा के साथ खिलने का अवसर है। हमें किसी बड़े चमत्कार की नहीं बल्कि अपनेपन और सांत्वना की एक बस एक छोटी सी मीठी बूंद की तलाश है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी मीठी बूंद की तलाश में हम पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। वो मिलती है कि नहीं ये हमारे अपने अपने सोच और कहना चाहिए अनुभव पर निर्भर करता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आपने श्रोताओं के मन को रेगिस्तान बना दिया। पोस्ट लगभग सिर्फ 45 मिनट पहले आई है। मेरे ख्याल से सभी उत्सुकता से

आपकी राह देख रहे थे कि कब सुरीला सफर की रेल आए, हम उसमें सवार हों, इबारत को देख अपनी जिज्ञासा की प्यास बुझाए। तो अब तो आप रेल में सवार हो गए हैं ना, चलिए करते हैं यात्रा शुरू। और हो गई है यात्रा शुरू, देखिए रेल हमारी चल पड़ी है फटाफट। एक श्रोता लिखते हैं कि अपने मन की उदासी को कोसने के बजाय खुद पर हौसला रखें और उगते सूरज की तरह चारों तरफ प्रकाश फैलाएं, अर्थात परिश्रम करें, आगे बढ़े। मन रे तू काहे न धीर धरे, आपने इस गीत का चयन किया है और वाकई हमारा अगला गीत यही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बधाई जिन्होंने ये गीत पसंद किया है या अपनी पसंद में ये गीत शामिल किया है।

रोशन की संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे साहिर लुधियानवी का लिखा गीत। मोहम्मद रफी की आवाज थी और फिल्म का नाम था चित्रलेखा। कितना खूबसूरत गीत, गहरा और सुंदर। दार्शनिक प्रयोग यहाँ पर रे का, देखा आपने, रे का अर्थ यानी यहाँ मन या आत्मा से है। और यहाँ गीतकार जो साहिर लुधियानवी हैं, अंतरात्मा को एक दार्शनिक उपदेश दे रहे हैं। जो मन अशांत है उन्हें धैर्य रखने की सीख दे रहे हैं। कह रहे हैं कि रे मन, तू धीरज क्यों नहीं धरता, इस जीवन की धूप छांव को किसने बांधा है, इसलिए व्यर्थ की चिंताओं को छोड़ दे। रे मन, मन को समझा, अपने आप को समझा। कितना गहरा गीत, और इस गीत को सुनकर तो मन को शांति मिलती ही है, आपको भी निश्चित रूप से बहुत गहरी शांति मिली होगी। और आप मन को समझा सकते हैं इस गीत को सुनकर कि इधर उधर व्यर्थ की दौड़ भाग में कुछ नहीं रखा, मन को शांत और सौम्य रखा जाए, वही जीवन का सार है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज के सुरीला सफर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप इस रेगिस्तानी सफर में गर्मी में आज सुरीले गानों से मन की प्यास बुझाएंगी, मन को शीतलता मिलेगी, बहुत सुंदर। वहीं गीत एक श्रोता लिखते हैं कि इंतहा हो गई इंतजार की, नमस्कार, क्या बातें आज

0: रीला सफर बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा पोस्ट के लिए। अरे आप तो फिर भी इस सफर में शामिल हो गए हैं, और क्या चाहिए। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती रे, मंदाकिनी बहन रे, आप ही बताओ आज की पोस्ट इतनी देरी से क्यों आई। वैसे रोज सुबह आ जाती है मगर इतनी छोटी सी इबारत भी नहीं होती है। सुरीला सफर में जुड़ रहे सभी के संग आपको मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आपका कि आप हमारे साथ हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो आप पानी की बूंदे लेकर आई है तो कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी, बाकी तो जब प्रोग्राम चलेगा तब पता चल जाएगा कि कितनी ठंडक मिलेगी। मिली ठंडक आपको? वहीं एक श्रोता ने कहा है कि सूरज हमें जीवन दर्शन भी सिखाता है। सूरज हर दिन बिना थके अपना काम करता है। ये सिखाता है कि जीवन में परिस्थिति कैसी भी हो अपने कर्तव्य से नहीं डिगना है, नहीं हटना है। रात कितनी भी लंबी हो और सवेरा जरूर आएगा, और इसी तरह हमारे जीवन में भी दुख के बाद सुख जरूर आता है। सूरज स्वयं जलकर भी संसार में प्रकाश बिखेर कर परोपकारी बनना सिखाता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत अनुरूप संभावित गाने, समय कम है इसलिए ज्यों ज्यों याद आएंगे जोड़ते जाएंगे। सूरज रे जलते रहना, फिल्म हरिश्चंद्र तारामती, मन रे तू काहे नधीर धरे, और आपने और भी गानों के बारे में लिखा है। तो हमारी जो आज की सवाल है, हमारा जो आज का सवाल है, उसमें हम आपके गीतों को शामिल करेंगे जो आपने रे के प्रयोग वाले गीत लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म नागमणि का गीत। इसे आवाज दी है प्रदीप ने। गीत को कवि प्रदीप ने ही लिखा है और धुन बनाई है अविनाश व्यास ने।
1: पिंजरे के पंछी
0: रे,

जी, तो सुना आपने कि कवि प्रदीप ने कितने दार्शनिक तरीके से ये बात कही है कि पिंजरे में बंद पक्षी और शरीर यानी दुनिया में फंसी मानव आत्मा की जो उन्होंने तुलना की है। आप देखिए कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार पिंजरे में कैद पक्षी अपने पंखों के कटने और अपनी स्वतंत्रता यानी अपनी आज़ादी छिन जाने का दर्द किसी को नहीं बता सकता, ठीक उसी तरह मानव शरीर में कैद आत्मा सांसारिक बंधनों और दुखों के कारण मौन रहकर भीतर ही भीतर तड़पती रहती है। तभी तो उन्होंने कहा, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। हमारे श्रोता लगातार अपनी बात कह रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात रख रखे हैं और मुझे लगता है बहुत गहराई में चले गए हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि कहीं उलझ गए हैं हम मंदाकिनी जी शब्द जाल में, जब आप होती हैं तो कुछ नया होता है, एक बजे का बस इंतजार है, हम नहीं उलझेंगे। बिल्कुल मत उलझिए, बस आप हमारे साथ बिल्कुल आराम से सफर में रहिए और आरामदेह सफर का मजा लीजिए। एक श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी मन इतना सूख जाता है कि आंखों में आंसू होते हुए भी प्यास नहीं बुझती, भीड़ के शोर में चलते चलते अपनी ही आवाज कहीं खो जाती है, हर चेहरा मुस्कुराता दिखता है पर भीतर कोई चुपचाप टूट रहा होता है, कोई रोटी का प्यासा है, कोई मोहब्बत का, कोई बस एक अपने का, मन ढूंढता एक मीठी सी बूंद जो माथे पर हाथ रखकर कह दे मैं हूं, तुम अकेले नहीं हो, मगर अक्सर शाम ढल जाती है और वो बूंद नहीं आती। बिल्कुल सही कहा। फिर नजर उठती है आसमान की ओर जहां सूरज रोज जलता है, अपने हिस्से की आग सहकर दुनिया को उजाला देता है, तब दिल रो पड़ता है कि शायद जीवन का अर्थ यही है, अपने दर्द को सीने में रखकर भी किसी और के अंधेरे में दीपक बन जाना। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि सबसे ज्यादा रोशनी बांटते हैं जो, अक्सर उनकी तन्हाइयों का हाल कोई नहीं पूछता। क्या बात कह दी आपने, मेरी आंखें नम हो गई हैं, गला रुंध गया है। सचमुच यही होता है कि जो दूसरों की चिंता और फिक्र करता है उसके लिए आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाहती हूं, वो आपने कह दिया है। एक श्रोता लिख रही है कि आज सुरीला सफर प्रोग्राम की पोस्ट 12 बजे के बाद आई है, रोज की तरह हम तो पोस्ट का सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को पोस्ट 10 बजे के करीब आ जाती है, आज बहुत देर कर दी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज सुरीला सफर के अंदर दर्द भरे उदासी के सॉन्ग शायद सुनने को मिलने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है, आज हम कुछ दर्शन पर बात कर रहे हैं, जिंदगी का दर्शन जिसे आप भी पसंद करते हैं, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सूर्य केवल आकाशीय पिंड नहीं है बल्कि अनंत ऊर्जा, प्रकाश, जीवन और त्याग का सकारात्मक प्रतीक है। सूर्य निरंतर गतिमान और कर्मशील है, इसे आलस्य त्याग कर निरंतर कर्म करने और ऊर्जावान बने रहने की प्रेरणा का स्रोत माना जाता है। ये निराशा के काले बादलों को चीर कर रोशनी और प्रकाश रूपी किरणों को विस्तारित कर आशा का संचार कर देता है। जी बिल्कुल, आशा का संचार तो आपने भी कर दिया है, इतने कम समय में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर सफर में हमारे साथ हैं, और क्या चाहिए। आपका ये जो है ना मैं हूं ना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है, दवा का। और जब हमारे श्रोता हमारे साथ हैं तो रे का प्रयोग भी तो श्रोता रे बने रहना है ना। चलिए तो हमारे सवालों का जवाब दीजिए फटाफट कि रे का प्रयोग और किन किन गीतों में हुआ है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिख भेजा है, हम पढ़ेंगे जल्द ही। वहीं हमारा दूसरा सवाल है कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है, आप अपने हिसाब से जवाब दीजिए। आप क्या सोचते हैं गीतकार कब रे का प्रयोग करता है, जैसे मैंने कहा श्रोता रे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था दिल ने फिर याद किया। जी एल रावल के बोल थे और सोनिक ओमी का संगीत। कितना गहरा और दर्द भरा गीत था। जब हम किसी को पुकारते हैं और कोई नहीं आता तो जी जान से हम पुकार लगा देते हैं, आ जा रे आ जा रे आ जा रे, है ना। बस यही है रे का प्रयोग जो आपको बताना है कि गीतकार ने किन किन अर्थों में किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में किसी भी शब्द का चयन नहीं करना है क्योंकि रे जैसे संबोधन परक शब्दों से ही संबंधित गीत बजाए जाएंगे, लेकिन रेगिस्तान तो अपने आप में ही सूखा होता है और इसीलिए उसे मरुस्थल कहा जाता है। ऐसे में सहारा का रेगिस्तान, थार रेगिस्तान जैसे रेगिस्तानी इलाकों का नाम सुना है, किंतु मन का रेगिस्तान प्यासा हो यह तो संभव है। लेकिन एक तो रेगिस्तान वैसे ही सूखा, दूसरे सूखे में और सूखा। बात कुछ समझ में नहीं आई भाई। जहां सूखा होता है वहां भूख प्यास के लिए धरती ही नहीं, अभी तो हर जीव ही एक बूंद के लिए तरसते हैं। लेकिन अब भी ये तो कहावत प्रचलित है कि जहां कोई नहीं वहां रेड़ का ही पेड़ प्रधान हो जाया करता है। फिर भी क्या बात है, बहुत गहरे में चले गए आप तो। देखिए, हम जब हमारा मन रेगिस्तान हो जाता है यानी सूखा हो जाता है तो हम मिठास को तरसते हैं। एक बूंद मिल जाए प्यार की, एक बूंद पानी की, एक बूंद जिसे हम कह सकते हैं, और वो बूंद हमें सुरीला सफर में मिल रही है ना। हम भले ही हमारा मन रेगिस्तान है लेकिन आपकी प्यार की बूंद, या यूं कहें कि हमारी तरफ से जो आपको प्यार मिल रहा है वो बूंद काफी नहीं है क्या हमारे जीने के लिए? सोचिएगा। एक श्रोता लिखते हैं कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। अरे आना तो था ही, आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं। मैं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर पोस्ट है आपकी, और एक श्रोता लिखते हैं कि विशेष रूप से ये कहना है मुझे कि कल शाम को 5:30 बजे से रात 9:30 बजे तक आपने बहुत मस्त गीत सुनवाए। अच्छा, कल आप सुन रही थी? बहुत आभार और शुक्रिया आप सबकी अथक मेहनत को सलाम। बहुत शुक्रिया आपको भी कि आप भी तन मन धन लगाकर हमें सुनते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज छोटी सी इबारत और अच्छा अंदाज आपने दे दिया रे शब्द के गाने, अब ये सोचने में ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े शायद, पर आप हैं तो हम लोग तुक्का लगाना बेकार ही मानेंगे। आप कहां कहां से अनसुने गाने खोज खोज के लाती हैं, हम लोग अवाक रह जाते हैं। आपको पसंद है यही हमारे लिए काफी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का ही कार्य

तुम तो दिलचस्प पहेली जैसा लग रहा है। आपके संकेत के अनुसार आज के सभी गीतों में रे शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदी गीतों में रे बहुत ही आम है, इसलिए कई संभावनाएं हो सकती हैं। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, मन रे तू काहे न पिए, धीर धरे ओरे पिया, रे कबीरा, नैना रे, सजन रे, चलत मुसाफिर मोहलिया रे। क्या बात है, बहुत खूब। मुझे लगता है कि आपकी इबारत का मुख्य संदेश गीतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब मन उदास हो, जीवन में आशा की छोटी सी किरण तलाशनी हो, सूरज का उदाहरण देकर आपने यही बताया कि जीवन का सार संघर्ष के बावजूद प्रकाश बांटना है। बिल्कुल, आप लोगों के विचार लगातार हम तक पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या करें, समय का ध्यान भी हमें रखना होता है। बहुत सुंदर विचार आपने लिखे हैं। मन का रेगिस्तान भी एक दिन खिल जाएगा, सब्र की बारिश से हर जख्म सिल जाएगा, तो खुद को कमजोर समझना छोड़ दे, तेरे भीतर का सूरज भी एक दिन मिल जाएगा। क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पीतल की मोरी गागरी, दिल्ली से मोल मंगाई रे, दो बूंद पानी का। अच्छा, इस गीत में रेगिस्तान है, पानी के लिए कश्मकश भी है, प्यास भी है और रे शब्द भी आ रहा है, तो पूर्ण रूप से ये गीत शामिल होना चाहिए। आपकी लिस्ट में गीत शामिल हो गया है, और क्या चाहिए। देखिए ना, आप कितना गहरा उतर कर इस गीत को उठा लाए हैं कहीं से। और एक श्रोता लिखते हैं कि आज थोड़े समय के लिए मन उदास हो गया था, क्योंकि रोजाना सुरीला सफर की पोस्ट 8 से 10 घंटे पहले आ जाती है। आज 12 बजे के बाद सुहाना सफर की पोस्ट आई, जो पढ़कर मन प्रफुल्लित तो हो गया। मेरा मन अगर उदास हो जाता है तो मैं हमारे घर से नजदीक लाखोटा तालाब के पार्क में खुली हवा में टहलने चला जाता हूँ। वहाँ रेडियो बजता रहता है, FM रेडियो बजता रहता है, और मैं मधुर गाने सुनता हूँ, मन को शांति मिलती है, मन प्रफुल्लित हो जाता है।

वाणिज्य राम को आपने सुना, फिल्म का नाम था गुड्डी और गुलजार साहब के बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी आवाज में एक खनक है, आप मुस्कुराते हुए गीतों को लेकर आती हैं तो हमें अच्छा लगता है। आज की इबारत कुछ अलग सी बड़ी प्यारी लग रही है, बस हम थोड़े बिजी हैं पर आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल रहिएगा। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट के इंतजार का मन प्यासा बन गया था, मानो दिल का रेगिस्तान बन गया था, अब पोस्ट आ गई है तो आपने कुछ गाने लिखे हैं जो हमने पूछे थे। मन रे बिल्कुल बूझ मेरा क्या नाव रे, क्या बात है, मेघा रे बदरा छाए रे, खाई है रे हमने कसम, जा जा रे वाह और बोले रे पपीहरा, तो आपकी पसंद हमसे मिल गई है। आजा रे प्यार पुकारे, ये अगला गीत अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना ही था, दिल पुकारे आ रे ओ माझी रे पंछी रे, क्या बात है ओ साथी रे, तेरे बिना क्या जीना, ऐसे करके सखीरी सुन बोले पपिया उस पार। आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, बहुत शानदार आपने गीत मालिका तैयार की है जो रे पर आधारित है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज मेरे मन से जुड़ा हुआ टॉपिक है और आपने लिखा है कि बहुत सारे गाने हैं जो रे पर आधारित है। मेरे मन से जुड़ा टॉपिक है, आज तो रेगिस्तान कभी मन हो जाता है लेकिन जीना है तो हंस के जीना है, इसी फंडे पर मैं हमेशा जीती हूँ चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए और मैं मुश्किलों का सामना करती हूँ। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मन रे तू काहे न धीर धीरे, ये गाना आपकी लिस्ट में है, बिल्कुल। एक श्रोता ने लिखा है कि वाह आज के कार्यक्रम का शीर्षक ही दिल को छू गया है, जहां आपने रे का संबोधन वाले गीत चुने हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज चंदा रे कभी तो जमी पे आ बैठेंगे बात करेंगे, बिल्कुल आपने ए हरिहरन की आवाज में ये गीत पसंद किया है, नई फिल्म से गीत है, बहुत सुंदर गीत आपने चुना है चंदा रे चंदा रे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं ओ माझी रे अपना किनारा नदिया करे धरा, अच्छा ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना, चंदा रे दिल से रे दिल से रे, बिल्कुल सही आपका चुनाव भी बहुत सही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सूरज रे जलते रहना चंदा रे मेरी मोरी पतियां ले जा, वाह जा रे जा बालम वाह, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, जरा सा झूम लू मैं ना रे बाबा ना, क्या बात है बहुत नया गाना आपने चुना है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैम आपकी स्माइल कितनी प्यारी है, अरे वाह आपको दिख रही हूं मैं हंसते हुए शुक्रिया मेहरबानी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ओ मेरे सोना रे ये गाना तो मेरी लिस्ट में नहीं था, क्यों भाई क्यों नहीं था, ये गाना तो बहुत ही पॉपुलर है और सभी को पसंद आता है। चलिए कोई बात नहीं, आपकी लिस्ट में जो गाने थे वो तो लिखिए जनाब। एक श्रोता लिखते हैं माई री चंदा रे आओ रे ओरे पिया, ये गाने नदिया चले चले रे धारा, रात का समा झूमे चंद्रमा मन मेरा नाचे रे, वाह क्या बात है कहाँ पकड़ा है आपने रे को, बहुत सुंदर। और वहीं और भी श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी है, रे मन सुर में गा ओरे ताल मिले नदी के जल में, यह तो हमने भी गीत चुना था फिर हमने इसे हटाया। पिया तो से नैना लागे रे, क्या बात है रे माँ तेरे मेरे नैना सावन भादो। और वहीं आप लिखते हैं तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के रे, अच्छा इसमें भी आप सुन रहे हैं, और यानी आज आपने रे जिनमें रे है और मन की प्यास उदासी उम्मीद की बात है, मंदाकिनी जी आज आपने वो गाने सुनकर हमें बहुत आनंदित किया है, ऐसा हमारे श्रोता लिख रहे हैं। अब आपने हमारे पहले सवाल का जवाब तो दे दिया, और भी बहुत सारे श्रोता अपनी पसंद के गीत लिख रहे हैं जहां रे का प्रयोग हुआ है, लेकिन आपने इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब किन किन गीतों में इस्तेमाल किया गया है। गीतों का नाम तो आपने लिख दिया है लेकिन कब इस्तेमाल किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया, इसका छोटा सा बताइए ना बात। अगला गीत हमने चुना है सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में, शैलेंद्र का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है पूनम की रात। साथी रे सुनिए आप। साथी रे ये वे हमारी जान ले लेता है ना,

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आपको हार्दिक नमस्कार और अक्षर रे का जो आज स्पेशल प्रोग्राम है वो बहुत ही शानदार लग रहा है। आपने फिल्म आ का गीत आजा रे अब मेरा दिल पुकारा, रो रो के गम भी हारा, ये गीत पसंद किया है और लिखा है कि इसमें रे का इस्तेमाल बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, ये गाना भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर नया गाना है। आप एक श्रोता हमारे सवाल का जवाब देते हैं दूसरे सवाल का कि रे शब्द का काव्यात्मक आविष्करण खुशी उदासी आशा निराशा चैतन्य वैराग्य अभिमान प्यार स्नेह के अनुभव में अपने आप बखूबी हो जाता है गीतों के माध्यम से गीतकारों के माध्यम से, क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेघारे मेघारे ये गाना आ जाए तो इतनी गर्मी में थोड़ी ठंडक मिल जाए। हाँ आज तो आपको ये गाना नहीं मिलेगा लेकिन हो सकता है अगले किसी और कार्यक्रम में हम आपके लिए गाना लेकर आएं। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने दिया कि रे का ये काव्यात्मक रूप कब कब गीतों में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि जब कोई गीतकार किसी अमूर्त भावना जैसे कि मन है सूरज है चांद है को व्यक्ति के रूप में अपने खास प्रेमी के रूप में महबूब के रूप में अपनेपन के रूप में देखता है तब वो रे लगाकर उसे संबोधित करता है ताकि वो जो बात वो जो प्रार्थना वो जो इल्तजा वो जो प्रेम की बौछार वो जो भी संदेश देना चाहता है वो रे के माध्यम से और मजबूत रूप से उस व्यक्ति तक उस इंसान तक पहुंच जाता है। जैसे सूरज रे जलते रहना है ना रे का प्रयोग। तो हमारे दूसरे सवाल का जवाब भी आपने बहुत अच्छा दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं रविंद्र जैन के संगीत निर्देशन में अनजान का लिखा हुआ, जसपाल सिंह की आवाज, फिल्म का नाम श्याम तेरे कितने नाम।

0: सच्चा, मन से मन का बंधन सच्चा, बाकी बंधन झूठे कभी अपना साथ न छूटे।
1: जी हाँ, कभी अपना साथ न छूटे। प्यारे श्रोताओं रे, बने रहना इस सुरीले सफर में हमारे साथ, कभी अपना साथ न छूटे। लेकिन अब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है इस सफर को और लंबा करने का, तो बस यहीं थम जाते हैं इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर से। अब मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत, फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में। नमस्कार।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। कल भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की थी। गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव जबकि एक सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। दिल्ली की रॉज एवेन्यू अदालत ने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में उनकी पत्नी रेणु सिंह समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला 31 दिसंबर वर्ष 2018 को न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई फायरिंग से जुड़ा है। दिल्ली के फतेहपुर बेड़ी स्थित एक फार्म हाउस में पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग के घटना में डॉक्टर अर्चना गुप्ता के सिर में गोली लगी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। फायरिंग का आरोप राजू कुमार सिंह पर लगा था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनसे लगभग 7,00,000 किसान लाभान्वित हुए। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा

0: कर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बिहार के वैभव सूर्यवंशी को भारतीय सीनियर टी20 क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। वैभव भारतीय टीम में चुने गए सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 15 साल 71 दिन की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाई है। वैभव को जून जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले टी20 सीरीज के साथ साथ एशियन गेम्स के लिए चुना गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित 50 छात्र छात्राओं को पंजाब के शैक्षणिक और सांस्कृतिक दौरे के लिए रवाना किया गया। आईआईटी पटना में आयोजित फ्लैग ऑफ समारोह में गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने छात्रों को रवाना किया। इस अवसर पर आईआईटी पटना के निदेशक टीएन सिंह ने कहा कि युवा संगम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, भागलपुर और कटिहार समेत 18 जिलों में बारिश हुई है। बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के लड़ैयाटाड़ थाना क्षेत्र के जतकुदिया गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के दक्षिणी हिस्सों और उत्तर पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबने से एक ही परिवार के दो महिलाओं की मौत हो गई। दोनों दरभंगा जिले की रहने वाली थीं। अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। एनडीए की हलीफ जमात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार कानून साज काउंसिल की एक सीट के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने कारगुजार रियासती सदर अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। कल बीजेपी ने 4 और जनता दल यू ने 4 उम्मीदवारों के नाम की फहरिस्त जारी की थी। गौरतलब है कि बिहार कानून साज काउंसिल की 9 सीटों के लिए 2 साल इंतखाबात जबकि एक सीट के लिए ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से बीजेपी रुकन असम्बली राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हिलाकत और असलहा एक्ट के मामले में कसूरवार करार दिया है। अदालत ने उन्हें हिरासत में लेने का हुक्म दिया है। कोर्ट ने इस मामले में उनकी अहलिया रेणु सिंह समेत दीगर मुलजमीन को बरी कर दिया है। ये मामला 31 दिसंबर 2018 को न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई फायरिंग से जुड़ा है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी वाक़े एक फार्म हाउस में पार्टी के दौरान ज्वाइंट फायरिंग के दौरान डॉक्टर अर्चना गुप्ता के सर में गोली लगी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। फायरिंग का इल्ज़ाम राजू कुमार सिंह पर लगा था। ज़राअत और किसान फलाह वजारत ने कहा है कि मुल्क भर में अब तक 9,42,000 से ज़्यादा किसान खेत बचाओ मुहिम से जुड़ चुके

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के आलोक में एनडीए परीक्षा के आलोक में कुल 394 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2008 से 1 जनवरी 2011 के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है।

आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.upsc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB असिस्टेंट लोको पायलट के कुल 11,127 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI या डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें।

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल 2026 के आलोक में कुल 12,256 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम किसी भी विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31

0: मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेट का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। सीबीएसई ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जांच जारी है।

0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबंदा में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
4: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने

0: संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। कार्यक्रम का पहला गीत सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ, आवाज लता मंगेशकर की, और ये फिल्म है बारिश।

कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है चंगेज खां, आवाज लता मंगेशकर की, गीत के बोल कमर जलालाबादी ने लिखे हैं और धुन बनाई है हंसराज बहल ने।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चंगेज खां। आइए सुनते हैं SN त्रिपाठी के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास के बोल। आवाजें हैं गीता दत्त और मन्नाटे की। फिल्म का नाम है जन्म जन्म के फेरे।

तालियां, श्याम के भजन में बजाऊं मैं तो तालियां, राधा संग कान्हा का रास जहां चला दे, इस झूठी दुनिया को छोड़वा।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे, दिल उनको दे आए।
3: यह आवाज आशा भोंसले की और फिल्म का नाम है मेरा सलाम। शिवान रिज़वी की रचना है और हाफिज खान का संगीत।

किशोर कुमार की आवाज में हम आपको फिल्म पेइंग गेस्ट का गीत सुनवा रहे हैं। शब्दकार मशरूह सुल्तानपुरी हैं और संगीतकार सचिन देव बर्मन हैं।

0: नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा।
1: और आइए अब सुनते हैं दत्ताराम का संगीत, हजरत जयपुरी की रचना, लता मंगेशकर और मन्ना डे की युगल स्वर। फिल्म का नाम है कैदी नंबर 911।

लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है हिल स्टेशन, गायिका हैं लता मंगेशकर, बोल हैं SH बिहारी के और धुन बनाई है हेमंत कुमार ने।

रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है मन चाहे गीत।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी।
0: मन चाहेगी।

0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
0: प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हमें खत लिखा है, आप हैं अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर और तन्वी गौहर। ये खत हमें मिला है अमरावती कल्याण नगर से रमेश किल्लेकर, शकुंतला किल्लेकर, आराध्या किल्लेकर।

और माही किल्लेकर का, और ये खत हरियाणा से सेक्टर 18 जगाधरी से लिखा है विनय मोहन खारवन, मीनाक्षी प्लोमा और डॉक्टर ईशानी ने। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म महबूब की मेहंदी का गीत, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा, वाणी वर्मा। ये खत हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाणे, अर्चना गोंडाणे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गोंडाणे का। और कोटवा नारायणपुर से आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। आप सभी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का गीत। किशोर कुमार की आवाज है, फिल्म का नाम है अभिमान, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत एसडी बर्मन का।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं आप सबकी पसंद पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। आइए सुनते हैं अगला गाना। फिल्म का नाम है अमरदीप। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोंसले, गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीत दिया है सी रामचंद्र ने। सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। शाहू नगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री, जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, सावित्री साहू ने, और दत्तरेंगी भाटापारा से ये हैं हीरामणि वर्मा। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये दो गाना।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। वरुण जौलका से महेंद्र सरकते, विजया सरकते, मिलिंद सरकते, और ये खत है, आपने लिखा है गुजरात से नूर मोहम्मद लखाणी, जुबैदा खातून लखाणी, विहान लखाणी ने। भामेश्वर से सुनना चाहते हैं सिराज, हिना, रुबीना और इनके परिवार वाले। इसी गाने को सुनना चाहते हैं महेंद्र सरकटे और उनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म कटी पतंग का गीत। गीत रचना आनंद बख्शी की है और तर्ज राहुल देव बर्मन की।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था कटी पतंग। और अब आप सुनना चाहते हैं रवि के संगीत निर्देशन में हसन कमाल का लिखा गीत, आवाज सलमा आगा की और फिल्म का नाम निकाहा। सुनने के लिए आप सभी ने हमें खत लिखे हैं। ककराला बदायूं से डॉक्टर मसरूर खान, मुसर्रफ राज खान, अमजद अंसारी, दीपक वाल्मीकि और इनके परिवार वाले इसी गाने को सुनना चाहते हैं। शेगांव बुलडाणा महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले, लोकेश एस काले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है अंबेडकर सागर मध्य प्रदेश से रामसखी परमानंद, सौरभ गौरव, किशोरी बोस, एलपी रोहित, ललूराम, पूरन रोहित, छोटू, टुनटुन और इनके परिवार वालों का। और आप हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफाबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायाल, मोताला से कुमार प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, कलड़ा रिसोर्ट से आप हैं सानवी सरवत और इनके परिवार वाले। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, आवाज सलमा आगा की और ये फिल्म है निकाह।

0: रवि के संगीत निर्देशन में अभी आपने हसल कमाल का लिखा ये गीत सुना। आवाज सलमा आगा की थी और फिल्म का नाम था निकाह। इस गाने के साथ ही आज का फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब समाप्त होता है।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहेगी
0: और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। आज आप इस नाटक का पहला भाग सुनेंगे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूं। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार में नाचना होगा।
2: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।
1: मैं कहता हूं नाचो। गुलाम, इनके कोड़े लगाओ और भरे दरबार में नचाओ।
3: कादिर रोहेला का मुगल शहजादियों और बेगमात पर कितना जुल्म है।
4: हाँ।
3: आलम शाह सानी ने इन्हें पाला पोसा और ये उसी की आंखें फोड़कर आज हरम की बेगमात को दरबार में नचा रहा है।
4: ये सब मंसूर अली की तगा और अंग्रेजों की साजिश से हुआ है।
3: अंग्रेज जब हिंदुस्तान को हड़पना चाहते हैं।
4: नहीं, जब तक हिंदू मुस्लिम सिख और मराठे बादशाह के साथ हैं ऐसा नहीं होगा।
3: तुम ठीक कहते हो, आज ये सब गुलाब की ऐसी पंखुड़ियां हैं जो गुलाब के इस फूल की हिफाजत के लिए मैदान जंग में आ गए हैं।
4: हाँ, ये गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बल्कि तलवार की धार है जो विदेशी ताकत को काट कर रख देंगी।

0: गुल से लिपटी हुई तितली को गिराकर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा।
1: मंजूर अली
2: जी। आलम पना,
1: आज कितने दिन हो गए इन अंग्रेजों से लोहा लेते, लेकिन ये लोग भी गजब की चालबाज हैं। बिहार पर दोबारा हमला भी किया, लेकिन उस जनरल कार्निक ने फिर हमारे कुछ लोगों को अपनी तरफ मिलाकर हमें मात दे दी। इतने फर्माबरदार बहादुरों के होते हुए भी कुछ गद्दार लोग इन गोरों के जाल में फंस ही जाते हैं और बाई से शिकस्त बन जाते हैं।
2: आलम पना, वाकई इनकी जासूसी भी बेमिसाल है। इस पर भी ताज्जुब है कि ये लोग फतेहयाब होने के बाद भी हुजूर के साये में ही पनाह लेते हैं, खुद को जहां पनाह की रियाया तस्लीम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपना जाल फैलाने से बाज नहीं आते। अब यही कार्निक
1: कैसा भीगी बिल्ली बनकर हमारे हुजूर में पेश हुआ, जमीबोस करता हुआ कंपनी की तरफ से नजर पेश की और शाही फौज के खिलाफ जंग करने के लिए मुआफी की दरख्वास्त की,
2: और हुजूरे वाला ने उसे मुआफ भी कर दिया। लेकिन इनकी खास मंशा सिर्फ यही थी कि आलम पनाह उनके बनाए बंगाल के नवाब मीर कासिम की शाही फरमान के जरिए तरक्की फरमा दे और इनके इरादों पर नकाब पड़ा रहे।
1: हाँ मंजूर अली, लेकिन हमने भी इनके साथ पटना जाना इसलिए कबूल कर लिया था कि इन लोगों के अंदरूनी हालात वे ताकत का सही अंदाजा हो सके, और इसमें हमें कामयाबी भी हासिल हुई।
2: जी हाँ आलम परवर, आपकी बार पूरी तैयारी के साथ इन लोगों को शिकस्ते फाश देनी चाहिए।
1: इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, अब इनकी हरकतों से तंग आ चुके हैं हम।
2: जी हाँ जहां पना, हमारे जासूस बराबर ऐसी खबरें ला रहे हैं।
1: नवाब शुजा के पास मीर कासिम ने खत भी भेजा है कि शायद उसे जल्द ही बंगाल छोड़ना पड़े, क्योंकि अंग्रेज कंपनी उसे हटाकर मीर जाफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाने की फिराक में है।
2: जहां पना, अगर ऐसा हुआ तो हमारी ताकत और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि मीर कासिम की सिपाह भी हमारे साथ हो लेगी।
1: ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या सूरत बनती है, लेकिन बरसात गुजरने से पेशतर हमला करना मुमकिन नहीं होगा। हाँ मंजूर
2: जी। आलम पना,
1: उस अंग्रेज लड़की के बारे में कुछ?
2: जी आली मकाम, उसी के बारे में हुजूर से गुजारिश करने के लिए आया था।
1: अंग्रेजी रक्स और मुसीकी तो हमें कतई पसंद नहीं आई, मगर वो कमसिन अंग्रेज लड़की, उसे हमारे रूबरू पेश किया जाए।
2: जो हुक्म वाली जा।
3: तस्लीम।
1: तस्लीमात तस्लीमात, क्या नाम है तुम्हारा?
3: मेरा नाम एमिली है, योर मैजिस्टी।
1: ये क्या अल्फाज बोलती हो तुम? योर
3: जी, योर मैजिस्टी।
1: हाँ हाँ, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तुम हमें जहां पनाह या आलम पनाह कहो।
3: आलम पनाह, आलम पनाह।
1: बिल्कुल ठीक, तुम तो हिंदुस्तानी जुबान अच्छी तरह जानती हो।
3: जी जी हाँ, जान पाना, यहाँ बचपन से रही हूँ। तो आलम पनाह, आपने हमें पसंद किया या नहीं?
1: जरूर जरूर, हमने तुम्हें बहुत पसंद किया है।
3: ओ, हमारा अच्छा किस्मत है, हमने भी आलम पनाह को बहुत पसंद किया। आप बहुत रहम दिल हैं, हम यहाँ आपकी पनाह में रहने चाहता है।
1: ठीक है एमली, तुम यहाँ रह सकती हो।
3: ओ थैंक यू। नहीं नहीं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
1: तुम्हें हमारे हरम में सब बेगमों के साथ रहना पड़ेगा, बाहर जाओगी तो पर्दे में जाना होगा।
3: ओ नो, नहीं नहीं, हम पर्दे में नहीं रह सकते, हम तो आजाद घूमने चाहते।

0: हमारे कोई पता नहीं करता।
1: तो तुम कभी कभी इधर उधर घूम सकती हो, यहां जब तक चाहो रह सकती हो।
0: ओ जय पाना, आप कितनी अच्छा है, कितना खूबसूरत है आप।
1: हाँ, हमें भी तुम अच्छी लगती हो। तुम जब चाहो आ जा सकती हो, लेकिन सिर्फ हमें बताकर।
0: ओ, ओ शुक्रिया आलिम्पिना, कितना अच्छा है, कितना ग्रेट है, बहुत बहुत बड़ा दिल है आपका।
1: नवाब शुजा, अब तो नवाब मीर कासिम अली भी हमारे साथ शरीक हो गए हैं।
2: जी हां जहांपनाह, इन चालबाज अंग्रेजों से किसी भी नवाब की नहीं पड़ सकती। ये तो बंगाल में भी ऐसा नवाब चाहते हैं जो इनके इशारों पे नाचे।
1: अब मीर जाफर को फिर मसनद नशी कर दिया और कासिम को बंगाल से खदेड़ दिया।
2: जी हां आलमपना, अंग्रेज तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर पूरी तौर से हावी हो जाना चाहते हैं।
1: यही नहीं शुजा, इनके मंसूबे तो पूरे हिंद को हड़प लेने के मालूम होते हैं, लेकिन लेकिन हम इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी फौज में गोसाई हिम्मत बहादुर और उमराव गोसाई तो हैं ही, इनायत खान रोहिला भी शामिल हो गया है, मीर कासिम मई सिपाही आन पहुंचा है।
2: जी हां जहांपनाह, और बनारस के राजा बलवंत सिंह भी मैं अपनी पलटन के हमारी इमदाद के लिए आ गए हैं। जर्मन कप्तान सैमरे भी अपने तोपखाने को एकदम मुस्तैदी से तैयार कर रहा है।
1: नवाब
2: जहांपनाह,
1: अगरचे शिकस्त दर शिकस्त होती रही है, ताहम हमारे फर्माबरदार सिपहदारान का अभी भी हौसला बुलंद है। हमारी सिपह वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल है। देखो देखो, जिस तरह ये गुलाब का फूल पंखुड़ियों की वजह से इतना दिलकश बना है, उसी तरह हमारी फौजों में भी हर कौम और मजहब के बहादुर मिलकर एक कुल की शक्ल में काम करते हैं। इसी पर हिंदुस्तान को फख्र है।
2: जी हां आली मकाम, इसमें कोई शक नहीं है।
1: पंखुड़ियां गिरती हैं, मुरझाती हैं, लेकिन नए गुल और भी खूबसूरती से जहूर में आते हैं। चंद गद्दार मुरझाई पंखुड़ियों की तरह भटक जाते हैं, यही बदनसीबी है। इसके बावजूद कई राजा, नवाब और अमीर नई पंखुड़ियों की तरह हमारी इमदाद के लिए आन पहुंचे हैं। इस दफा अंग्रेजों पर पूरी ताकत से हमला करना है, ताकि हिंदुस्तान से इनका नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए।
2: जी हां आलमपना, हुजूर के इकबाल से इस दफा हमारे जासूस भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। नवाब मुनरुद्दौला का जासूसी दस्ता खबर लाया है कि मेजर हेक्टर मुनरो की फौज में कुल 6-7 हजार सिपाही हैं और सिर्फ 20 तोपें।
1: फिर तो हमारी इतनी बड़ी फौज और 100 से ज्यादा तोपों के मुकाबले में उनका ठहर पाना नामुमकिन है। हम जल्द से जल्द इन सरकशों को सबक सिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं।
2: जी अली कद्र, हमें कप्तान सैमरे ने बताया है कि हमारी 133 तोपें बिल्कुल सही हालत में हैं, और उधर मीर कासिम और उमराव गोसाई के जासूसों ने भी काबिले तारीफ इंतजाम किया है। उन्होंने अंग्रेजी फौज में कुछ ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो ऐन वक्त पर वहां के अफसरों और सिपाहियों को हमारी तरफ मिल जाने को उकसा रहे हैं।
1: वाह, बहुत खूब, कुछ कामयाबी हासिल हुई।
2: जी हां सरकार, हमें पुख्ता खबर मिली है कि करीब 70-80 छोटे बड़े अफसर और नायक और करीब 1000 सिपाहियों की पलटन ऐन वक्त पर हमसे आन मिलेंगी।
1: वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। अब हम शर्तिया फतेयाब होंगे, इन पदसात अंग्रेजों को मुल्क से निकाल बाहर करेंगे।
2: बेशक आलमपना, बेशक इस बार हम यकीनन कामयाब होंगे और इन पदसात अंग्रेजों को मुल्क से बाहर निकाल देंगे। लेकिन जहांपना, अगर इजाजत हो तो एक अहम मामला और हुजूर के

0: इल्म में।
1: जरूर नवाब, बोलो बोलो।
0: आली कत्र, वो अंग्रेज लड़की जिसको हुजूर ने पनाह दी थी, उसका रवैया इन दिनों कुछ अजीब सा नजर आ रहा है।
1: तुम्हारा मतलब एमली से है? क्या हुआ?
0: हुजूर, वो शुरू के कुछ महीनों में तो काफी संजीदगी और बुर्दवारी से।
1: और अब क्या हुआ उसको?
0: हुजूर आला, पिछले एक माह से उसकी हरकतें काफी हैरत अंगेज हो चली हैं। वो शाही फौज के खेमों में मुख्तलिफ सिपादारान हुक्काम वगैरह से अक्सर बड़ी बेतकल्लुफी से मिलती रहती है।
1: नवाब शुजा, वो भोली लड़की जरा चुलबुली जरूर है, फिर इन अंग्रेजों की तहजीब में औरतों को काफी आजादी है।
0: वो तो वजह है जहां पना, लेकिन हाल ही में मेरे कुछ खास हरकारों ने खबर दी है कि ये खेमों से दूर जाकर अंग्रेज घुड़सवारों से भी गुफ्तगू करने लगी है।
1: ये तो बहुत संगीन मामला है।
0: जी हां अली मकाम, जब से हम लोग बक्सर के नजदीक पहुंचे हैं उसकी सरगर्मियां और भी बढ़ गई हैं।
1: इस वक्त वो कहां है?
0: वो इस वक्त शाही हरम के खेमे में है, यहां से तकरीबन 4-5 कोस।
1: उफ नवाब शुजा, इधर सामने मेजर मुंद्रो अंग्रेजी सिपह के साथ आगे बढ़ रहा है, उधर ये लड़की न जाने क्या क्या गुल खिला रही होगी।
0: आलमपना, मैंने ख्वाजा सराओं और कुछ चुरीदा नायकों को ताकीद कर दी है कि उस लड़की पे कड़ी नजर रखें, मगर हुजूर पता नहीं कि इससे पेशतर क्या किया हो उसने।
1: मगर हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
0: जब तक कुछ पुख्ता सबूत न मिले आलम पनाह को जहमत देना मुनासिब न होता, और इसके अलावा हुजूर इस जगह के लिए कूच भी कर चुके थे।
1: शुजा, ऐसे मशकूक शख्स को फौरन गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, बाद तफ्तीश असलियत का पता लग जाता।
0: हुजूर, मैंने आपके खौफ के मारे जुर्रत करना मुनासिब न समझा।
2: हुजूर, बेगम साहिबा बारियाबी की इजाजत चाहती हैं।
1: कौन? सकीना बेगम? यहां? फौरन भेजो।
2: जी जहां पना।
3: आलम पना, गुस्ताखी मुआफ फरमाए।
1: हाँ हाँ, बोलो बेगम, यहां क्यों कर आना हुआ हरम से मैदान जंग में?
3: आलीजा, मैंने एमिली को गिरफ्तार करने की जुर्रत की है। वो कुछ गोरे घुड़सवारों से गुफ्तगू कर रही थी, कुछ कागजात भी।
1: उफ सकीना, घुड़सवारों को भी गिरफ्तार कराया या नहीं?
3: पहले सिर्फ दो थे, भागते भागते एक को गिरफ्तार कर लिया, दूसरा कुछ कागजात लेकर भाग रहा था तो हमारे जवानों ने उसका पीछा किया, मगर आगे जाकर 20-25 गोरे सवार और मिले और बंदूकों के फायर करते हुए सब भाग निकले। वक्त की नजाकत देखकर मैं खुद चली आई।
1: दूसरा सवार पकड़ा नहीं जा सका?
3: जी नहीं आलमपना।
1: ओ, वो कमीनी कहाँ है?
3: जी, बराबर वाले खेमे में ख्वाजा सरा मंजूर अली की हिरासत में है।
1: नवाब शुजाउद्दौला को बुलाओ।
0: जहां पना ने याद फरमाया।
1: हाँ नवाब शुजा, तुम्हारा शुबा ठीक मालूम होता है। उस बदसात को सकीना बेगम ने गिरफ्तार तो कर लिया है, एक आध कागज भी बरामद हुआ है, मगर दो में से एक घुड़सवार भाग निकला, कुछ कागजात भी ले भागा। अब उस हराम खोर एमिली को कोड़े मार मार कर कुल तफसील मालूम करो और हमें बताओ। बराबर के खेमे में है वो बदसात?
0: जी अलीजा, हुक्म की तामील होगी।
1: बेगम, तुम बहुत थक गई हो, आराम कर लो। इस मामले की तहकीकात हो जाए तो अपने खेमे की तरफ वापस चली जाना, यहां ठहरना खतरे से खाली नहीं।
3: जी नहीं आलमपना, मुझे आराम की कतई जरूरत नहीं। फिर जहां हुजूर का कयाम हो वहां मुझे भला क्या खतरा हो सकता है?
1: नहीं बेगम, तुम्हारी जल्द से जल्द वापसी ही लाजिम है।
3: जैसी आलमपना की मर्जी।
0: आलमपना, मैंने तहकीकात कर ली है, अफसोस है कि बहुत खौफनाक सूरत बन गई है। एमिली ने बामुश्किल तमाम कबूल किया कि वो अंग्रेजी जासूस है। उस कागज में अंग्रेजी सिपाही के कुछ लोगों के नाम हैं,

0: जो हमसे मिल जाने के लिए तैयार थे, मगर इससे पेशतर वो हजारों नामों की फहरिश्त मेजर मुनरो को भेज चुकी है। कोड़ों के मार से वो लहूलुहान हो गई, तब कहीं उसने जाकर
1: उस कमबख्त कमीनी को हाथियों से कुचलवा दो। शुजा, ये हाँ। ये क्या है?
0: ओह, जहां बना, ये तो अंग्रेजों की तोपें हैं। पता नहीं एक एक धमाके में कितने लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा होगा।
1: उफ नवाब, तो क्या हमारे जासूसों की कुल मेहनत बेकार गई? क्या वो हजारों को मार डालेंगे?
0: हुजूर, मालूम तो ऐसा ही होता है, धमाके पे धमाके हो रहे हैं, हजारों की मौत के पैगाम हैं ये धमाके। हुजूर, हमारे सिपाह में न जाने कौन कौन गद्दारी पे आमादा होगा।
1: शुजा, फिर भी हमें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए। सकीना बेगम की वापसी का इंतजाम कर दो और फौरन जंग के लिए कूच का ऐलान किया जाए, और उससे पेशतर उस अंग्रेज जादी को हाथियों से कुचलवा दिया जाए।

0: नवाब मुनीरुद्दौला, समझ में नहीं आता कि अभी भी हमारी गर्दिश और दुश्वारियों का दौर क्यों खत्म नहीं होता।
1: आलमपना, वक्त सबका बदलता है।
0: बक्सर की शिकस्त का कुछ और जायजा मिला?
1: जी हाँ, वही तफसील अर्ज करना चाहता था। आलमपना, हमारे करीब 2000 बहादुर मारे गए। हमारी तमाम तोपों पर मुनरों ने कब्जा कर लिया। सिपाहियों में मुर्तजा खान, मियाँ ईसा, यासीन वगैरह मारे गए।
0: ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूं।
1: नवाब शुजाउद्दौला पूरे खानदान के साथ बरेली की तरफ चले गए हैं और नवाब मीर कासिम रोहेलखंड, हमारी बहुत सी सिपाह घायल हो गई है और बाकी भाग निकली है।
0: नवाब मुनीर, इस बक्सर की जंग ने तो हमारे हौसले पस्त कर दिए। अब कोई सूरत नहीं अंग्रेजों से लोहा लेने की। इतनी मुकम्मल तैयारी के बाद ऐसी शिकस्त-ए-फ़ाश। सुना है कप्तान सेमरे भी बरेली की तरफ भाग गया है।
1: जी हाँ अली मकाम, सबको अपनी अपनी जान की पड़ी है। अवध का इंतजाम तो अंग्रेज कप्तानों ने संभाल लिया है, वो भी बड़े जुल्म ढा रहे हैं रियाया पर।
0: तो फिर हमारी हालत बहुत ही नाजुक है इस वक्त। ताहम ये समझ में नहीं आता कि जनरल कार्निक ने हमसे मुलाकात की दरख्वास्त क्यों की है। अंग्रेज कंपनी का गवर्नर हमसे सुलह चाहता है। हमने उससे मुलाकात के लिए इजाजत का परवाना भिजवा दिया है।
1: सुना है हुजूर वाला, ये अंग्रेज नवाब शुजाउद्दौला से भी सुलह की कोशिश कर रहा है।
0: अंग्रेजों की चालबाजियां समझ में नहीं आती नवाब मुनीर।
1: बेशक आलीजा,

0: जयपना, मुझे आपकी राया इंग्लिश कंपनी का गवर्नर क्लाइव साहब ने आपके हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया है। हम आपसे सुलह करना चाहते हैं, ये नजर कबूल करें।
1: शुक्रिया। अंग्रेज कंपनी क्या उम्मीद रखती है हमसे?
0: उम्मीद? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ हुजूर को इलाहाबाद और खोड़ा के जिले देना चाहती है। जयपनाह का हिफाजत करना हमारा काम होगा और आपकी वफादार अंग्रेज रियाय की तरफ से एक अफसर आपके पास रहेगा।
1: अफसर? वो अफसर क्या करेगा?
0: वो आपका खिदमत करेगा। अगर कोई दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाएगा तो अंग्रेजी फौज बुला लेगा और योर मैजेस्टी का मदद करेगा।
1: अच्छा अच्छा, इसके बदले में हमारी वफादार रियाया अंग्रेज कंपनी क्या चाहती है?
0: योर मैजेस्टी कुछ नहीं, बस एक फरमान, ओनली वन, शाही फरमान।
1: फरमान?

0: फरमान? कैसा फरमान?
1: जापना, बंगाल की दीवानी का फरमान।
0: बंगाल की दीवानी का फरमान? लेकिन बंगाल में तो तुमने मीर जाफर को नवाब बनाया है, फिर हमारे फरमान से क्या मकसद है?
1: योर मैजेस्टी, नवाब और शहंशाह में जमीन आसमान का फर्क होता है। सारा मुल्क का असली मालिक तो आप ही है। आपका फरमान हमारे लिए बहुत इज्जत का बायस होगा। इसके लिए हुजूर का रियाया कंपनी हुजूर को 26 लाख रुपया सालाना खिराज अदा करती रहेगी।
0: लेकिन अंग्रेज कंपनी हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में भी मदद करेगी या नहीं?
1: जरूर योर मैजेस्टी, लॉर्ड क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
0: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
1: शुक्रिया योर मैजेस्टी, कल हमको

0: क्लाइव साहब ने भी यही कहला के भेजा है, वो जरूर मदद करेंगे।
1: ठीक है ठीक है, हमें मंजूर है। तुम अपनी तरफ से दस्तावेज तैयार कर लो, हम भी दीवानी का फरमान बहुत जल्द जारी कर देंगे।
0: शुक्रिया योर मैजेस्टी, कुल हमको इजाजत बख्शे।
1: इजाजत दी जाती है।

0: लो नवाब मुनीर, ये क्लाइव का जवाब भी आ गया। वो हमें दिल्ली पहुंचाकर तख्त नशीनी में मदद करने के वायदे से फिर गया है। यही तो एक अहम शर्त थी सुलह की, आज 5 साल बाद भी पूरी नहीं हुई।
1: जी आलमपना, इधर इस अंग्रेज कमांडर बारकर के दिनों दिन दिमाग बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे मुलाजिमों से बदसलूकी से पेश आता है, कहता है हम तुम्हारे बादशाह को 26 लाख रुपए वजीफा देते हैं।
0: अच्छा कमांडर तैनात किया हमारी हिफाजत को, एहसान फरामोशों ने 26 लाख सालाना देकर हमें खरीद लिया है। बंगाल की दीवानी से करोड़ों रुपए हासिल कर रहे हैं, उसका कोई एहसान नहीं।
1: हुजूर, वो कहता है कि हमारी इजाजत के बगैर कोई शाही मुलाजिम इलाहाबाद से बाहर नहीं जाएगा।
0: गोया हम शहंशाह नहीं, इस कमीने कमांडर के कैदी हो गए।
1: लेकिन जब आलमपना के हुजूर में पेश होता है तो वो मेमना बन जाता है, जमी बोझ करेगा, योर मैजेस्ट्री की रट लगाया जाता है।
0: मगर ये कमबख्त मेमने की खाल में भेड़िया है, भेड़िया।
1: अलीजा, अब तो मराठों के जवाब का इंतजार है। सैफुद्दीन खां को कई महीने हो गए माधोजी सिंधिया के पास गए हुए।
0: देखो क्या होता है, अब तो हमें जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचने की तमन्ना है। साबता खां किले पर काबिज है और उसका रवैया दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है।
1: जी आले कदर, वो
2: आलमपना, सैफुद्दीन ने पैगाम भिजवाया है कि मराठों ने हुजूर के शरीक दौलत होकर मदद की रजामंदी दे दी है। सिंधिया की फौजें रवाना हो चुकी हैं और यहां पहुंचने ही वाली हैं। उन्हीं की मदद से सैफुद्दीन मोहम्मद खान ने दिल्ली पहुंचकर जामा मस्जिद से हुजूर के शहंशाह होने का ऐलान भी कर दिया है।
0: वाह वाह वाह, ये तो अहम खुशखबरी है। मंजूर, सब सरदारान और उमरा से कह दो कि कूच की तैयारी करें।

0: जहां पना अब दिल्ली दूर नहीं।
1: ये कौन सा मुकाम है मंजूर?
0: आलम पना ये मौजा धनौली है, यहां से शाहदरा करीब 4 मील है।
1: ओहो, तब तू दिल्ली आन पहुंचे। अरे ये इतनी शान और शौकत से किसका जुलूस चला आता है? मंजूर जरा पता लगाओ।
0: आलम पना ये आली जहा वली है, शाहजादे और बुजुर्ग बेगमें हुजूर के इस्तकबाल को आते हैं। जाब्ता खान हुजूर के खौफ से किला छोड़कर भाग गया है और उसकी सिपह भी सिर पर पैर रखकर भाग रही है।
1: वाह वाह, बहुत खूब।
0: और आलम पना सारा इंतजार

0: इंतजाम मुकम्मल है। अब हुजूर का जुलूस शाहदरा से दिल्ली दरवाजे होकर लाल किले में दाखिल होगा।
1: लगता है मंजूर, आज हमारी मुरादें पूरी हुई और उम्मीदें भर आई।
0: हुजूर, वली अहद ने बताया है कि जाब्ता खां फौजें जमा कर रहा है।
1: वो है कहां? कहां तैयारी कर रहा है?
0: जी, वो नजीबाबाद है।
1: ठीक है, दिल्ली में तख्त नशीनी के फौरन बाद हम उस पर चढ़ाई करेंगे और बगावत की सजा देंगे। हमने माधोजी सिंधिया से भी मशवरा कर लिया है, वो भी हमें पूरी इमदाद देने को रजामंद है।

गुलाब की पंखुड़ियाँ। अभी आप सुरेंद्र कांत के लिखे इस नाटक का पहला भाग सुन रहे थे। निर्देशक मुमताज शकेब। आपको बता दें कि इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: Sound, camera, action!
1: बॉम्बे टॉकीज में आइए आज सुनते हैं कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। आज सुनिए पहला भाग।
2: दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज फिर एक बार डांस से जुड़े एक बेहद मकबूल फनकार हमारे बीच हैं, डांस रियलिटी शोज के जज, डांस गुरु और कोरियोग्राफर, जिनके साथ होगी फिल्मी गपशप। टेरेंस लुविस। टेरेंस जब सिर्फ 6 साल के थे तभी लहू उनके मुंह लग गया, जी हाँ, और डांस उनकी नस नस में लहू के साथ दौड़ने लगा।
3: होया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलग गया।
2: डांस के स्टेज ने टेरेंस के अंदर वो ऊर्जा भर दी जो आज भी उन्हें हर वक्त म्यूजिक की बीट्स पर

0: मेरे डैडी तो मजदूर हैं, वो पढ़े लिखे भी नहीं।
1: तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गैराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी। ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे वो सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया। 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था। हमारे परिवार में डांस एक लग्जरी है, ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते इसमें।
2: इतनी कठिनाइयों के बावजूद जिंदगी के साथ लड़ाई में आप आगे बढ़ते गए, जीतते गए।
1: मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा।
2: आप जब कभी हारते थे तो जिंदगी से शिकायत नहीं होती थी? तो फिर क्या किया आपने?

जिंदगी ने टेरेंस को गले लगाया, टेरेंस ने जिंदगी का साथ खूब निभाया। बहुत सी बातें, बहुत से गाने, बहुत सी यादों के साथ आज टेरेंस हैं हमारे बीच।

0: बहुत शुक्रिया अमरकान जी, आपने बहुत प्यार और बहुत सहज रूप में बहुत कुछ कह दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टेरेंस, ये स्वागत मैं सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, हमारे वो तमाम लाखों करोड़ों सुनने वाले कर रहे हैं जो आपके फैन भी हैं। कितने लोग आपके ऐसे लोग दीवाने हैं जिनको डांस का डी भी नहीं मालूम लेकिन वो टेरेंस के दीवाने हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे जो श्रोताओं हैं और जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैंने क्या किया, क्या किया कि इतना प्यार मुझे मिला है। मैं बहुत शुक्रगुजार अपने अपने आप को फील करवाता हूँ, और बहुत ही बहुत मैं कभी कभी ओवरवेल्म हो जाता हूँ कि यार ये कैसे हो गया और क्यों हो रहा है। मैंने कोई ऐसा बड़ा काम किया नहीं कि मैं इस प्यार का हकदार बनूं। सो
1: मैं आपको बताऊँ, ये बात मैं जानता हूँ कि क्यों हैं आप इसके हकदार। उसका कारण सिर्फ आपका डांस नहीं है, आपकी शख्सियत है, आपका स्वभाव है, आपकी विनम्रता है, आपका प्यार बांटने का सलीका है।
0: शुक्रिया।
1: ये इंसान को बहुत लोकप्रिय भी बनाता है, प्यारा भी बनाता है, और जिंदगी में काफी ऊंचाई तक ले जाता है। और अभी तो आपके लिए बहुत से आसमान बाकी हैं, बहुत से आसमान छूने हैं आपको।
0: वो तो जरूर है। और अगर दर्शक और श्रोताओं का अगर प्यार ऐसा मिला तो जरूर बहुत सारे जो मकाम जो मैं अपने लिए बनाए रखा हूं इस उम्र में भी शायद वो मुकम्मल हो जाए।
1: जी, तो चलिए, आपने उम्र की बात की है तो श्रोताओं तक ये बात पहुंचा देते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, और ये पहुंचेगी आपकी जन्म तारीख से।
0: हाँ।
1: जन्म तारीख मैं आपकी जानना चाहूंगा, और वो भी इस बात के साथ कि आपका जन्म कब कहाँ हुआ।
0: मेरा जन्म हुआ मुंबई में, और मैं आठवां बच्चा हूँ मेरे माँ बाप का। मेरे माँ बाप का नाम है जेवियर और मीडिया लुइस। डैडी मैंगलोर से हैं ओरिजिनली, लेकिन मुंबई में वो 10 साल की उम्र में आए और काम करने लगे, और मम्मी मुंबई से ही है। तो हम सभी आठ भाई बहन मुंबई में ही पले पड़े हैं। मेरा जन्म हुआ 10 तारीख को, 10 अप्रैल 1975। तो मेरी उम्र उसके हिसाब से आज 2020 में 45 साल की हो जाती है।
1: तो देखिए साहब, 45 साल के जवान, या यूं कह लीजिए नौजवान युवा डांसर के साथ मैं इस समय बैठा बात कर रहा हूं। तो टेरेंस, आप मुझे ये बताएं कि जो बचपन का ये वक्त था मुंबई में, जब आपका जन्म हुआ, मुंबई में कहां हुआ, कैसे आपका बचपन बीता।
0: हाँ।
1: और ये डांस का जो एक जुनून आपके अंदर है, ये आपको कब महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हो रही है।
0: तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मेरा जन्म हुआ मुंबई में। एक हम रहते थे एक छोटे से बस्ती में, चौल में, हरिनिवास चौल था, पठान चौल भी था, दो दो नाम थे उसके, और बड़ी बसी बस्ती थी। हमारे घर के दरवाजे नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पर्दे हुआ करते थे।
1: अच्छा अच्छा
0: तो बहुत प्यार मिला, और इट वाज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। हिंदूज भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई सिर्फ एक थे नेबर्स, अदरवाइज इट वेरी कॉस्मोपॉलिटन, जो ऐसा वाला फील था। किसी के भी घर में आना जाना, टीवी नहीं हुआ करता था तभी। हाँ। सिर्फ रेडियो हुआ करता था
1: उस जमाने में, तो था
0: ना, था नहीं। और लोग बोलते भी हैं कि यार आपने इतने इतनी चीजें सही हैं, आप कहाँ थे और कहाँ आए हैं, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं उस परिस्थिति में जन्म लिया था मैंने, तो मुझे पता ही नहीं कि इससे अच्छा भी हो सकता है। मुझे माँ बाप का प्यार बहुत बेशुमार मिला, और लोगों का प्यार बहुत जबरदस्त मिला, और यही वजह थी, ये प्यार जो मुझे मिला ये मेरे डांस की वजह से मिला। और जब मुझे वो मिला, वो बेशुमार मिला, मेरे इर्द गिर्द जो नेबर्स थे, या जो मेरे समाज के जो लोग थे, वो मुझे बहुत ही एक ऊंची नजर से देखते, क्योंकि मैं गाता था, एक्टिंग करता था, कॉपी करता था जो भी दिखता था टीवी पे, एवरी फिल्मों में, या डांस करता था। तो किसी की भी शादी होती तो मुझे बुला करते थे, आजा बुला बुला उसको, बुला उसको बुला, ये नाचेगा।

0: हमारे लिए
1: तो क्यों ना अभी मैं भी कहूं कि आज टेरेस आए, अभी टेरेस गए, नाचेंगे तो नहीं लेकिन गाना तो सुना सकते हैं।
0: अरे वो जरूरत नहीं क्योंकि मैं ट्रेंड सिंगर नहीं हूं, लेकिन बस मुझे स्टेज पर का बहुत बड़ा लगाव हुआ था क्योंकि मैं 6 साल का था जब मैं अपने पहले स्कूल में मेरी भर्ती हुई थी। नया स्कूल था मेरा, बांद्रा में मेरा स्कूल था, सेंट टीजर्स हाई स्कूल। तो मैं रहता था अंधेरी में, लेकिन क्योंकि मेरी माँ बांद्रा में रहती थी पहले, ओके, शादी होने के पहले, तो हमें भर्ती किया गया था एक कॉन्वेंट स्कूल में, सेंट टीजर्स हाई स्कूल। हम 4 भाई वहीं पर पढ़े। तो वो स्कूल में 6 साल की उम्र में मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, और आई थिंक सीनियर केजी में, नॉट इवन फर्स्ट स्टैंडर्ड, 5 साल का था। तो टीचर आई और उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चे लोग, कौन हिस्सा लेना चाहेगा सिंगिंग कंपटीशन में। किसी का हाथ नहीं उठा, मेरा हाथ उठा। और मेरे में बचपन से वो यू नो ऑलवेज थिंक कि पार्टिसिपेट करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि मैं एक खुश यू नो एनवायरमेंट में पला पड़ा। यू नो बहुत सारा तनाव था, आर्थिक स्थिति बहुत बहुत कठिन थी, डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत था, लोगों का प्यार बहुत था। और कभी कभी बच्चों के लिए उनको कुछ पता नहीं कि कितना क्या अमीर है क्या गरीब है उनके, आई थिंक आई डिडंट रियलाइज दैट, आई वाज जस्ट हैप्पी। और मैं हर एक चीज में पार्टिसिपेट करना चाहता था। फिर दूसरी टीचर आई, बोला कि डांसिंग में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता, मेरा हाथ उठ गया। तो ऐसे करते करते मैंने 8 जो भी कॉन्टेस्ट थे, ड्रॉइंग सिंगिंग एलिक्यूशन, पार्टिसिपेट कर दिया। बड़ी बहन जो थी वो मेरी देखभाल करती थी, मैंने उनको बता दिया कि मैंने ये कर दिया। उन्होंने बोला अच्छा, लेकिन अभी मैं कैसे सिखाऊं, मुझे तो ये सब आता नहीं है। तो बोला कि मैं कुछ भी कर लूंगा। तो मैंने कुछ भी कर लिया जो मुझे आता था, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ शायद कर लिया, तो मुझे पहला नंबर लग गया। ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि वो पहली बार मैंने वो कोशिश की और वो सफल हुआ, और फिर जो तालियों की गड़गड़ाहट मैंने सुनी और जो मुझे पुरस्कार मिले, यू नो जब 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने यू नो सर्टिफिकेट सब साथ में इकट्ठा, एक एनुअल डे होता है तो सभी सर्टिफिकेट साथ में मिलते हैं उस दिन पर, तो मैं मेरा नाम बार बार लिया जा रहा था। तो एलिक्यूशन, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सब में मैंने भाग लिया था, मैथमेटिक्स में सब में लिया था। तो वो जो खुशी, वो जो हाई, जो नशा मैंने फील किया, वो मेरे जहन से आज तक उतरा नहीं है। तो मैं मौका ढूंढता हूं कि कब मुझे स्टेज पर कोई बुलाएगा कि मैं अपना फन या जो भी मेरा टैलेंट है मैं दिखाऊंगा, लोग मुझे वाहवाही देंगे। तो शायद उसकी लालच में मैं स्टेज का दीवाना हो गया।
1: अरे इतनी चीजें याद हैं आपको बचपन हाँ। की तो वो गाना भी याद होगा जो आपने गाया था उस समय चलिए गाइए तो गाना तो बताइए।
0: तो वो अंग्रेजी गाना था, ओके, बॉनी एम, ओके,
1: बॉनी एम का, ओके,
0: बॉनी एम 1975 हाँ। में तो एक गाना था, ब्राउन गर्ल इन द रिंग ट्रा ला ला ला ला, सो वो वाला गाना था, उसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फिर हिंदी गाना जो गाया था, जो गाना गाया था मैंने, वो पिक्चर थी एक यू नो हिंदी फिल्म की थी, जो शायद मेरे शादी का ख्याल,
1: सौतन,
0: सौतन। तो वो पिक्चर मैंने, वो रेडियो पे चल रहा था 80s में, तो मैंने वो गा दिया, तो वो मुझे फर्स्ट प्राइज मिल गया। तो ऐसे यू नो फिर अजीब दास्तां है, हाँ। अजीब दास्तां मेरी बहनें रेडियो पे सुन के वो पुस्तक में लिखती थी, क्योंकि लिरिक्स सब उनको चाहिए था, तो वो लिखती थी। तो मेरी बहन की राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो मैं वो दोनों, वो हर गाना जो आता था, वो हमारे पास टेप रिकॉर्डर भी रहता, सिर्फ रेडियो, तो वो हम 2-3 बार सुनते थे रात, ताकि वो यू नो वो लव्स जो बोले गए हैं वो सही सुने हैं क्या नहीं, तो वो भी गाते थे हम भी गाते थे, तो हमारा टाइम पास ऐसे ही होता था घर में। तो वही
1: याद भी हो जाते थे,
0: याद हो जाते थे। तो ऐसे बोलते बोलते मैं अजीब दास्तां के लिए मैंने बहुत बार यू नो पुरस्कार बहुत बार मिला है, और वो गाना ऐसा है कि सबको बहुत प्यारा लगता है। तब मेरी आवाज यू नो एक छोटे बालक की तरह था, बहुत ही स्वीट, बहुत ही पतली, एंड इट वाज सूटिंग दैट सॉन्ग। फिर बाकी जाके आगे बहुत अलग अलग गाने गाए, बट कभी ट्रेंड नहीं हुआ था, और डांस का शौक बहुत कभूत चढ़ गया था, और बहुत यू नो वाहवाही मिल रही थी, तो मैं उस लाइन में घुस गया, डांस की लाइन में।

0: देखिए दास्तान तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी अजीब है,
1: लेकिन मेरी माँ की नजर से बहुत ही अजीब हूँ।
0: लेकिन हमारे
1: लिए कुछ तो... भी मैंने कोई भी चीज जिंदगी में जो जो नो जो रेगुलर चीज होती है जो सब बच्चे करते हैं मैंने कभी नहीं किया। जो चीज लोग नहीं कर रहे मुझे वही करना है।
0: लेकिन हमारे लिए अजीब नहीं, हमारे लिए बड़ी दिलचस्प है,
1: क्योंकि आप आर्टिस्ट वाले लोग हैं ना।
0: हाँ।
1: आप हमारे जैसे लोग हैं, आप समझते हैं, लेकिन हमारे जो माँ बाप है वो मिडिल क्लास है, सिंपल पढ़ाई करो, जाओ गवर्नमेंट की नौकरी लेके आओ और यू नो सुखी रहो। तो उनके लिए ये सब चीजें अमीरों का शौक है, सिंगिंग डांसिंग। मुझे बहुत मार नहीं पड़ती थी, लेकिन मेरी माँ बोलती थी मत कर, चाहे तुम फर्स्ट भी, मुझे नहीं चाहिए ये सब, तुम सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो। और पढ़ाई में भी मैं होशियार था, तो फिर मैंने बोला कि ये क्या बात हुई। तो मैं बहुत झगड़ता था कि नहीं मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, और मैं आपको लिख के देता हूं कि मैं अपना नंबर जो पहला आया है उससे ज्यादा लेकर आऊंगा, लेकिन आप मुझे रोक नहीं सकती। तो मैं बहुत थोड़ा यू नो जिद्दी भी था, तो और रिजल्ट भी लेके आता था, पढ़ाई में मेरा बहुत बहुत होशियार था। फिर मेरी टीचरों ने मेरी माँ को डांटा एक बार कि आप क्यों ना बोल रही हैं, पढ़ाई में भी अच्छा करता है वो और हमारी स्कूल की शान है ये। तो फिर मेरी माँ चुप हो गई वहां से। फिर मतलब अगर तू कुछ भी हुआ फिर मेरे पर नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: बाकी के भाई बहन कोई शौक नहीं था डांस या म्यूजिक का?
1: आई थिंक शायद होता भी तो आई थिंक वो इतने यू नो आई थिंक उनमें शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, या मुझ में ना बचपन से लेके क्योंकि मैं वो जीत गया तो वो नशा चढ़ गया, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट

0: था। फिर इसकी वजह से वो आगे बढ़ गया। तो मैं कहूंगा कि मैं थोड़ा लकी हो गया, वो एक तुक्का ना, एक लॉटरी पहले ही लग गई। तो उसकी वजह से वो है ना, एक कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज होती है जब अपने आप पर विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, चाहे आप लड़खड़ाएं और चाहे आप उसकी दूसरी बार हार भी जाए, कई बार हारा भी उसके बाद, लेकिन वो एक फील होता है कि हाँ मैंने ये कर लिया है। एक बार आपने स्टेज पर चढ़ गया ना आप, तो वो डर जो होता है ना
1: वो निकल जाएगा।
0: हाँ, तो मैं जीता नहीं हर बार, मैं कई बार हारा, लेकिन जो डर होता है यू नो स्टेज पर चढ़कर बात करना या एलिक्यूशन देना या डिबेट करना है, तो ये चीजें बहुत लोगों को डर की वजह से लोग आते नहीं है सामने। बहुत सारे अरमान है लेकिन वो लोगों से डरते हैं। वो डर मेरा चला गया, तो वो स्टेज पर जो डर होता है ऊपर चढ़ के लोगों को देखकर, वो अपने आप को यू नो एकदम यू नो जो भी है आपके अंदर जो टैलेंट जो फन है वो बताना, कभी कभी लोगों को, लोगों में बहुत कुछ टैलेंट है लेकिन वो डर जाते हैं लोगों को देखकर कि उनके विचार क्या होंगे, वो जजमेंट क्या होगा, अगर वो सेल्फ जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो बहुत होता है। तो मैं शायद उसमें बच गया तो

0: टेरेंस, अब थोड़ी सी हमें एक लीप लेनी पड़ेगी, एक थोड़ी सी छलांग लेनी पड़ेगी और हम उस जगह पे पहुंचना चाहते हैं कि जहां पर आपने ये तय कर लिया कि अब मुझे डांस को ही अपना करियर बनाना है। जब आपने ये तय किया तो घर वालों का क्या रिएक्शन था और आपकी अपनी क्या कोशिश थी इस फील्ड में जाने के लिए?
1: हम मध्यम वर्ग के लोग थे, तो पिताजी ने हम सभी भाई बहन को बोला था कि मैं सिर्फ 15 साल की उम्र तक पढ़ाऊंगा, उसके आगे आपको गराज में काम करना है या नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी, ओके, मेरी जिम्मेदारी है आपको पाल पोस कर 15 साल तक पढ़ा करना, उसके बाद जो करना है करो, मेरी जिम्मेदारी निकल जाती है। मेरे डैडी बहुत क्लियर थे क्योंकि उनके डैडी ने उनको आई थिंक 10 साल की उम्र में बोला था कि अब मेरा काम हो गया तो मेरे डैडी ने 5 साल और बढ़ा दिए और बोला कि 15 साल 10वीं तक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पढ़ना है नहीं पढ़ना है आपकी मर्जी, मैं पैसे नहीं दे सकता तुम्हारे कॉलेज की फीस के लिए कुछ भी, अब अपना अपना करो। तो मैंने देखा था कि मेरे सभी जो 7 भाई बहन थे उन सब ट्यूशन देते थे मैथ साइंस इंग्लिश, तो मैंने भी ट्यूशन दिया और कहीं ना कहीं बीच में मुझे डांस का, क्योंकि मेरा डांस का लगाव बहुत ज्यादा था, लोग जानते थे कि मैं डांस करता हूं, तो मेरे एक दोस्त ने, उसकी 2-3 बच्चे थे जो ट्यूशन देती थी, उनको डांस सीखना था तो उनको मैंने डांस सिखाना शुरू किया, बहुत पैसे मिलने लगे और वो पैसे मेरे कॉलेज फीस को, यू नो, कॉलेज फीस और सभी जो यू नो चाहिए जिंदगी को गुजारने के लिए, उससे ज्यादा मैंने बहुत कुछ पाया तो मेरी लॉटरी लग गई।
0: यानी ये उस समय आपकी उम्र कुछ 16-17 साल होगी?
1: 17 साल की थी।
0: उस उम्र से आप डांस सिखा रहे हैं?
1: और 14 साल की उम्र से मैं मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन देता था क्योंकि मैं पढ़ाई में भी होशियार था, तो 10वीं में ही मैंने मैथ साइंस इंग्लिश ट्यूशन का देना चालू कर दिया।
0: वाह वाह वाह।
1: तो हमारे घर में हमारी बहनें थी, मेरी 4 बहनें थी, मेरे 3 भाई थे, वो भी ट्यूशन दिया करते थे, तो जब भी उनका उनके पास टाइम नहीं होता था तो उन लोगों ने मुझे बच्चे जो उनका एक्सेस थे उन्हें कि आप ले लो, यू नो, ये आप पढ़ा दो और ये आपकी जो भी फीस है ये आपके लिए।
0: अब जैसे मैं कह रहा था आपकी दास्तान के बारे में दिलचस्प, मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि बड़ी प्रेरक दास्तान है।
1: अच्छा।
0: इससे जो प्रेरणा हमारे सुनने वालों को मिलेगी कि जीवन संघर्ष का नाम है और संघर्ष कब शुरू होता है और कब खत्म होता है ये ना आप जानते हैं ना कोई और जानता है, लेकिन उस संघर्ष का जो फल मिलता है उसको कहते हैं टेरेंस लुईस।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: तो टेरेंस, मैं यहाँ ये जरूर जानना चाहूंगा कि ये जो दौर था आपका, जो संघर्ष का जो दौर था, इस समय आप, चलो आप डांस सिखा रहे थे लेकिन उस समय अपने आप को भी तैयार कर रहे थे, सोचा था आपने कि मुझे क्या करना है?
1: एग्जैक्टली, क्योंकि

0: तो मैं पढ़ाई में होशियार था, तो मैंने साइंस लिया था, मुझे डॉक्टर बनना था, तो मेरा 88% निकल गया था। फिर मैं 3 मार्क्स की वजह से मुझे मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं मिली, मुझे डोनेशन देना पड़ा था और मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने माइक्रोबायो और बायोकेमिस्ट्री किया ग्रेजुएशन के लिए। फिर वहाँ से छुड़ के मैं होटल मैनेजमेंट किया और मेरी डांस की ट्यूशन मैं देता गया, क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे थे। जब मैंने सब फिनिश कर दिया, मेरा ग्रेजुएशन फिनिश कर दिया और फिर मैंने होटल मैनेजमेंट भी फिनिश किया 3 साल का, और मुझे नौकरी भी मिल गई थी कैंपस इंटरव्यू से, लेकिन तब तक मेरा इतना बड़ा मतलब मैं घर घर जाके इतना कमा रहा था कि जो पैसे मिल रहे थे कैंपस इंटरव्यूज के द्वारा, मतलब जो नौकरी लगने के बाद जो पैसे मिलने वाले थे, उससे मुझे 10 गुना और पैसे ऑलरेडी मिल रहे थे घर घर जाके सिखाने हैं।
1: ओह
0: मैंने अपने परिवार वालों को बोला कि मैं ये काम नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इसमें और अच्छा मेहनत करूं तो मैं शायद सफल हो जाऊंगा। मेरे माँ बाप को डर था कि ये जो नौकरी है घर घर जाके, ये इसमें कोई मैं हम लोग क्या बोलेंगे समाज को, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना होशियार बच्चा था, तू डॉक्टर बनने वाला था, और फिर तू माइक्रोबायो बायोस्ट्रीम है, फिर तुमने होटल मैनेजमेंट किया है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेके तुम अभी डांसर बन रहे हो। तो वो उनके लिए तौहीन की बात थी, क्योंकि हमारे परिवार में डांस के एक एक लग्जरी है, ये ये अमीर लोगों के लिए शौक है, शौक के लिए कर सकते हो, करियर नहीं बना सकते हैं इसमें। तो वो मेरे पेरेंट्स का मानना था, मेरे पिता और माता का, और मेरे भाई बहन भी जो साथ हैं वो सभी एक मतलब इधर टीचर है या फार्मेसी में है या इंजीनियर है मेरे भाई या बैंकर है, तो वो सभी एक बहुत ही स्ट्रीमलाइंड जॉब में है, मैं थोड़ा हटके सोच रहा हूँ। तो उन्होंने सब ने ना कर दी, मैंने बोला कि नहीं आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मुझे जो करना है करना है, वैसे भी मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूँ। तो मैंने ठान लिया है कि मैं ये नौकरी नहीं लूंगा। तो सब लोग मेरे दो मेरे भाई बहन, तो तू गिरेगा, तू तू तू समझ नहीं पा रहा है कि ये फिक्स नहीं है, आज तुम्हारे जो लोग तुमको काम दे रहे हैं घर घर में, वो बच्चे बड़े हो जाएंगे, बोलेंगे अभी खत्म, तो तुम क्या करोगे ऐसे, क्यों दूसरे आएंगे ऐसे, अगर तुम्हारी बॉडी को इंजर हो गया तो तुम क्या करोगे, ये सब बहुत ही सेंसिबल सवाल
1: जाहिर है
0: थे
1: कि हर तरह से
0: हर तरह से,
1: तोड़ने
0: मतलब।
1: की कोशिश थी।
0: और मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे थे 10 लोग कि नहीं ये मत करना, ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि वो सब बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, उनके पास एक फिक्स्ड करियर है।
1: देखिए एक बात होती है टेरेंस, मैं बताऊं, मिडिल क्लास आदमी बड़ा डरपोक होता है, वो
0: करेक्ट।
1: हर चीज से डरता है
0: हाँ
1: क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहता, उसके पास जो रहता है वो खोने
0: करेक्ट।
1: के लिए, वो इतना होता है कि अगर वो खो गया तो वो सर्वाइवल का सवाल खड़ा हो
0: हाँ, अगर
1: जाएगा,
0: आप कलाकार फैमिली में बॉर्न हुए हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम
1: कोई
0: नहीं है,
1: प्रॉब्लम
0: क्योंकि
1: नहीं।
0: लोग सपोर्ट मिलता है, लेकिन हमारे मेरे डैडी तो मजदूर हैं, उनको सिर्फ वो पढ़े लिखे भी नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ कि पढ़ा लिख कर मेरा बच्चा आगे जाए वो ही खुशी
1: ये
0: है।
1: बहुत
0: हाँ
1: बड़ी बात है ना। और देखिए हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका नाम रोशन करे,
0: करेक्ट
1: आगे बढ़े, हर बाप
0: करेक्ट।
1: की सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि
0: हाँ
1: उसका बेटा उससे आगे जाए।
0: बड़े, हाँ
1: बस आपने 2 कदम भी आगे बढ़ा दिए तो आपके पिताजी तो खुश हो गए,
0: खुश
1: उनको
0: हो
1: तो
0: गए।
1: खुशी मिल गई।
0: हाँ, लेकिन उनको वही
1: लेकिन
0: वही चिंता थी कि अरे तू तो डॉक्टर बनने वाला था, फिर तूने माइक्रोबायो बायोलॉजिस्ट में किया, फिर तूने होटल मैनेजमेंट किया, तू फर्स्ट भी आया यहाँ पर, तो फायदा क्या इतना पढ़ के, तू इतना पढ़ता है तू फर्स्ट लेके आता है, नौकरी भी तुझे हाथ में मिल गया, लेकिन तू ये नहीं करना चाहता है, ये क्या बात हुई।
1: चलिए
0: तो मेरे डैडी को समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा कैसा इंसान हूं, और वो
1: फाइनली
0: ये
1: फिर आपके मदर फादर खुश
0: अग्री
1: हुए कि नहीं?
0: नहीं, वो बाद में बहुत सालों के बाद खुश हुए, बहुत सालों के बाद जब उन्होंने देखा कि वो भी मतलब 7-8 साल बहुत, जब मैं जब एक्चुअली मैंने इंस्टीट्यूट खोला, फिर मैंने बोला कि मैं घर घर नहीं जाऊंगा, मैं अपना खुद का क्लास शुरू करूंगा, लोगों को मेरे पास आना चाहिए, मैं क्यों जाऊं घर घर। तो वो भी था ना कि अगर मुझे अपने आप का एक नाम बनाना है तो मैं घर घर नहीं जाऊंगा, लोग मेरे पास आना चाहिए। तो मैंने एक स्टूडियो लिया, पैसे खर्च किए, जो भी इकट्ठा किए थे, पूरा मेरी मेरी पूरी जवानी जो मुझे पता नहीं कहाँ गई, मैंने दोस्तों के साथ कभी वक्त ही नहीं बिठाया, मैं सिर्फ काम करता गया और जो भी पैसा है अपने करियर में लगा दिया, और वो फिर ठप हो गया क्योंकि लोग आए नहीं, क्योंकि मैंने ये सोचा ही नहीं था कि लोगों को, अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूँ तो वो उनकी सहूलियत होती है ना कि मैं उनके घर पे आ रहा हूँ, तो उनके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है,
1: एक और
0: लेकिन
1: बात होती है टेरेंस, कलाकार जो होता है वो कलाकार होता है, बिजनेसमैन नहीं
0: नहीं होता। तो वो
1: होता।
0: अकल बाद में फिर
1: वो
0: जब जमीन
1: सीखना
0: पर उतरा, मैं
1: पड़ता
0: उड़ रहा था कि मेरा ऐसा
1: है।
0: होगा,
1: और
0: मैं सच में ना, जो मैं 21-22 साल का था, मैं मेरे सपने, हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ये होगा, फिर मैं बड़ा शो करूंगा, फिर लोग मेरे मेरे पास आएंगे, देखें कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, और तो ये बड़े बड़े मेरे ख्याली पुलाव चलते रहते थे मेरे दिमाग में, फिर मेरी एक बड़ी फिल्म आएगी, लोग मेरे पास आएंगे और बोले कि मेरी फिल्म करो, तो मेरा दिमाग सपनों में रहता था।

0: अरे टेरेस, आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि मैंने जवानी में पूरा अपना इस तरह से वक्त निकाल दिया, रिलैक्स करने के लिए क्या करते थे? रेडियो पे जो गाने बचपन में सुना करते थे, वो गाने कब तक आपका पीछा करते रहे? मैं मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो गाने जरूर होंगे कहीं ना कहीं आपके जहन में
1: जरूर,
0: लेकिन जब भी रिलैक्स करने का मूड होता रहा होगा तो किस तरह के गाने सुना करते थे? गानों की जो अगर आपसे फहरिस्त पूछी जाए तो किस तरह के गाने होते थे?
1: मेरे
0: किस मूड में किस तरह का गाना आप सुना करते थे? जहां अभी मान लीजिए कि घर में बैठे हैं और माँ और पिताजी से बहस हुई है कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, तुम हम इतना पढ़े लिखे हो, और उसके बाद अल्टीमेटली कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज होके या थोड़ी सी उदासी में घर से निकले, तो कहीं कोई गाना पीछा करता था विविध भारती का?
1: बहुत सारे गाने थे सर, क्योंकि मैं ट्रेन से ट्रैवल करता था,
0: लोकल ट्रेन,
1: और मुझे सॉरी ये कहना नहीं चाहिए रेडियो पे, लेकिन मुझे
0: हैंड हेल्ड पकड़ के
1: मुझे गर्मी बहुत जल्दी होती है, तो मुझे हवा चाहिए, तो वो हवा ना, और मेरे बाल लंबे हुआ करते थे, तो मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक हाथ
0: पकड़
1: कई बार
0: दरवाजे पे लटक जाऊं।
1: आई एम टेलिंग यू, मैं सच कह रहा हूं कि कई बार पता नहीं किसने मुझे बचाया है, फिसलते फिसलते मैं बचा हूं। तो ये मेरे 5 साल ऐसे ही गवाए हैं, और मैं उसके बाद भी ट्रेन में ही ट्रैवल करता था क्योंकि वो फटाफट हुआ करता था।
0: दोस्तों ये जो टेरेंस जो कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ सुनिए, इसे सिर्फ सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। इस पर अमल बिल्कुल नहीं करना नहीं है आपको, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। मुंबई में हर दिन कई कई बच्चों की जान इससे जाती है, कई अपने जीवन में अपाहिज हो जाते हैं। तो इसको सिर्फ सुनिए और कान दूसरे कान से निकाल दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं।
1: नहीं सही कहा आपने। तो क्या है कि मैं गाने सुनता था और मेरा जरिया था कि जब भी मैं उदास या जब भी मैं अपने आप को खुश करना

था या मैं जनरली मैं उदास नहीं रहता हूँ, मैं ऑलवेज हसमुख रह करता था। मैं वो गाने सुनता था या वो गाने गाता था, सुनता भी नहीं था गाता था, जो मेरे दिल को हल्का करे। मैं बताऊं कि एक गाना है देवानंद सर का, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया और फिक्र को धुएं में उड़ा। ये ऐसा गाना मुझे दिल के बहुत करीब है।

0: तो हमने सुन लिया,
1: हाँ,
0: जिंदगी के जो कश्मकश रहती हैं उनको किस तरह से आपने दूर किया। मैं जानता हूँ सिगरेट विगरेट तो आप नहीं पीते हैं और पीना भी नहीं चाहिए किसी तरह के नशे से, बिल्कुल अपने आप को बचा के रखना चाहिए।
1: नहीं, ऑल्सो अगर आपने लाइफ का नशा पिया है ना, और जो लाइफ में मजा है और जो जिज्ञासा में मजा है, लाइफ को खोजने में मजा है, वो कभी आपने अगर चख लिया तो सब नशे फीके पड़ जाते हैं।
0: और फिर आप तो पहले ही से वो स्टेज वाले नशे में धुत थे, आज भी है।
1: तो ऐसा मैं ये भी कहूंगा कि मैंने 35 साल की उम्र में, 35 की उम्र में मैंने बिना शराब की बूंद चख ली, फिर मैंने लोग सिगरेट पीते तो मैंने टिकटिक क्या है, तब तक मुझे कोई थे ही नहीं, मतलब मन पूरा मेरा ध्यान डांस में था। और देखा क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं महसूस पड़ रहा है, लेकिन कि जो नशा लाइफ में है और जीने में है उससे बहुत कम है, तो कभी वो लत या लगाव लगाई नहीं।

0: अच्छा टेरेस, अब हम उस पर आते हैं जब आपका जो काम था वो टोटली कमर्शियल हो गया, अदर देन इंस्टीट्यूट डांसिंग क्लासेस के अलावा फिल्मों में कहीं ना कहीं अंदर आपकी इच्छा तो रही होगी कि मैं भी बड़े पर्दे पे नजर आऊं, मैं भी डांस करूं। अब अगर मैं सच्ची बात करूं, ईमानदारी की बात करूं, तो आप चेहरा मोहरा फिजिक हर तरह से एक अच्छा खासा हीरो मटेरियल आप रहे हैं, आज भी हैं।
1: शुक्रिया।
0: है ना, तो ऐसा नहीं सोचा आपने कभी कि मैं हीरो ट्राई करूं?
1: देखिए, आज की तारीख में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है बच्चों को, क्या कहाँ जाना है, कास्टिंग कहाँ होती है। मेरे जमाने में मुझे कोई समझ नहीं थी, और कोई यू नो गॉडफादर नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है कि अच्छा ऐसा ऐसा करो। तो यू नो कई

0: तक मैं सोच रहा कि ये शायद मुझे कौन लेगा, मुझे कौन काम देगा।
1: लेकिन आप चाहते थे हीरो बनना।
0: हीरो नहीं, मुझे थिएटर का बहुत शौक था और
1: अच्छा।
0: मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। लेकिन और कुछ म्यूजिक वीडियोस भी मिले, जैसे शान का एक गाना रीमिक्स, तभी रीमिक्स का गाना बहुत चलता था। शान ने गाया था, माना जनाब ने पुकारा नहीं,
1: वाह वाह।
0: उन्होंने एक गाना रीमिक्स किया था।
1: हाँ
0: उसके मेन किरदार जो मेन मॉडल, जो मॉडलिंग, जो
1: हाँ
0: मेन कैरेक्टर है, वो मैं प्ले कर रहा था। तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक वीडियोज मैंने किए बड़े बड़े जाने माने डायरेक्टर के साथ। लेकिन कभी वो ब्रेक कैसे मिलना चाहिए, ये किसके साथ बात करना चाहिए, कहां जाऊं, वो मुझे समझ नहीं थी। और भागदौड़ थी कि पैसे जमा करने हैं और अपनी परिस्थिति, आर्थिक स्थिति जो है, उसको कैसे मैं अच्छा बनाऊं, वो इसी में लगा पड़ा रहता था। और ऑलवेज अपने आप को प्रूव करना था कि अगर मैं इसमें ध्यान नहीं दूंगा तो कोई और अच्छा करके जाएगा, और ये जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। तो कभी कोई सपोर्ट ना, कोई बताने वाला कि अच्छा ठीक है, तू इसमें अभी थोड़ा ट्राई कर ले, कोई था नहीं। तो कोई नाराजगी भी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई गिले नहीं है। जो था सही था, अगर होना था तो हो जाता। अब जाके मैं समझता हूँ कि मेरी स्थिति जो है अच्छी है, तो अब जाके मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा हूँ और जो ऐसे काम मिल रहे हैं जो एक्टिंग के माध्यम में है, और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं मुझे एक जरिया मिल रहा है फिर से उस उमंग को जीने का। लेकिन उस वक्त में मुझे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं था, और ना ही मेरे जहन में ये था कि मैं बन जाऊंगा। मुझे लगा कि यार, जो फैमिलीज आती थी, ट्रेडिशनल फैमिलीज आती थी, उन्हीं के बच्चे सपूत जो हैं वो आगे बढ़ते थे, तो वो कभी वो जो अरमा भी था वो वहीं के वगैरह। तो मैंने बोला कि ये शायद इससे ज्यादा नहीं होगा, तो मैंने अपने आप को सीमित किया। किसी की गलती नहीं है।
1: फिर
0: मैं
1: आपको एक कोरियोग्राफर की हैसियत से काम कैसे
0: कैसे,
1: मिला? क्या आपने किसी को असिस्ट किया? बड़े बड़े कोरियोग्राफर्स के नाम रहे हैं।
0: तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। मैंने कभी किसी को असिस्ट नहीं किया, क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने डांस सिखाना शुरू कर दिया। और जब आप डांस सिखाना शुरू करते हैं, और फिर 18 या 19 साल में मैं कॉलेज के फंक्शंस में कोरियोग्राफ भी करने लगा, तो मेरा नाम लोगों में सुनने में आया था कि हाँ, ये कोरियोग्राफ करता है। स्कूल, कॉलेज, फंक्शन सब दूसरे कॉलेजेस को भी कोरियोग्राफ करता है। तो जो दूसरे कोरियोग्राफर्स थे वो मुखर जाते थे मुझे यूज करने के लिए, ये तो कोरियोग्राफर है, ये तो अपना काम देख के निकल जाएगा कहीं, तो वो डर जाते थे। मैं अगर चाहूं भी तो उनके साथ काम करूं, बोलते नहीं, क्योंकि तुम तो कोरियोग्राफर हो, तुम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डर होता है ना कि कहीं वो टेरिटोरियल हो जाता है। तो फिर मैं कभी गया नहीं किसी के साथ, किसी के अंडर काम नहीं किया। और फिल्मी जो मुझे मिली, पहली फिल्म जो थी, एक छोटा सा कोरियोग्राफी का सेक्शन था, लगान में वॉल्स का सेक्शन था, वो भी मेरे नसीब में ऐसा हुआ कि रीना दत्ता, जो आमिर की पहली बीवी थी, वो प्रोड्यूसर थी उस फिल्म की। तो उनको चाहिए था एक ऐसा कोरियोग्राफर जो वॉल्स, जो टेक्निकल वॉल्स है, वो कोरियोग्राफ करके दिखाए।
1: वो जो अंग्रेज लड़की डांस
0: अंग्रेज
1: करती
0: लड़की
1: है
0: नाचती
1: वो
0: है,
1: वाला
0: माय
1: डांस
0: हार्ट इज, हाँ
1: सेक्शन।
0: वो वाला। हाँ, तो मैं रीना को बोला कि वो मेरी स्टूडेंट रहती थी, क्योंकि वो आती थी सीखने के लिए। मैं अभी फिटनेस में भी चला गया था, कि डांस और फिटनेस का दौर चल रहा था, तो मैंने अपना हाथ फिटनेस में भी डाल दिया और मैं औरतों को वेट लॉस करवाता था।
1: उस पर हम बात करेंगे लेकिन अभी
0: हाँ,
1: पहले इसको।
0: इसको तो
1: हाँ।
0: रीना मेरी वेट लॉस वाली स्टूडेंट थी। वो मेरे पास आई थी वेट लॉस करने के लिए, मैं उसका पर्सनल ट्रेनर बना, और उन्हें मुझे ये प्रस्ताव पेश किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये गाना कोरियोग्राफ करें, ये जो थोड़ा सेक्शन है, और बस वॉल्स करना है, आपको तो आता ही होगा, आप तो ईसाई धर्म के हो। तो मैंने कहा कि ईसाई धर्म का ये मतलब नहीं कि मुझे वॉल्स आता हो। ये तो तुम करते हो तुम्हारे पार्टीज में से। नहीं, मुझे नहीं आता ये सब, ये तो एक अलग स्टाइल है। नहीं, ये तुम पाना चाहिए, क्योंकि हमारे फिल्मी कोरियोग्राफर्स नहीं कर पाएंगे, और जिस तरीके से तुम चलते हो, जो तुम्हारी ट्रेनिंग है, लगता है कि तुम कर पाओगे ऐसे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। फिर एक बार तुम आमिर से मिल लो। मैं आमिर से मिला, आशुतोष जी से भी मिला, और उन्होंने मुझे और भी डरा दिया कि उन्होंने कहा कि नहीं, वॉल्स तो हमें चाहिए, लेकिन हमें ना वो 18th सेंचुरी, क्योंकि हमारी फिल्म 18वीं सदी में
1: का कहानी है।
0: कहानी है, तो 18वीं सदी की जो वॉल्स हुआ करती थी, वियनीज वॉल्स, वो हमें चाहिए।
1: बताइए।
0: तो मैं तो वहीं पर, मेरे हाथ पैर कांपने लगे। पहले तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं कि मैं कैसे शूट करते हैं, मुझे मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है।
1: मैं यही जानना चाह रहा था आपसे, माफ
0: हाँ
1: कीजिए बीच में रोक रहा हूं, कि आप कोरियोग्राफी करते थे
0: हाँ लेकिन
1: स्कूल्स
0: स्टेज,
1: में
0: हाँ
1: और
0: फिल्मों के लिए
1: कॉलेजेस
0: नहीं,
1: में, लेकिन फिल्मी कोरियोग्राफी अलग होती है,
0: अलग
1: उसके
0: होती है,
1: नुएंसेस अलग होते
0: एकदम अलग
1: हैं,
0: सर,
1: उसकी ट्रिक्स अलग होती हैं, वो
0: एब्सोल्युटली,
1: तो आप जानते नहीं थे। फिर
0: एब्सोल्युटली नहीं।
1: आपने इसमें कैसे अपने आप को मैनेज किया, ये सवाल पे मैं आने वाला था।

0: आप खुद ही आ गए, तो आप दोनों
1: हाँ
0: चीजों को जोड़ के
1: साथ में
0: बताइएगा।
1: जरूर। तो फिर मैंने मेरा एक उसूल है कि जो चीज आपको नहीं पता वो सीधा सामने बोल दो, सच बोलो, क्योंकि सच बोलोगे तो सब कुछ ना कुछ हल मिलेगा। तो मैंने सीधा रीना को बता दिया कि मुझे कुछ नहीं आता और ना ही मुझे फिल्म, मैंने कभी फिल्म कोरियोग्राफ किया है। तो मैंने रीना को रूम में बता दिया कि ऐसा ऐसा है। रीना ने मुझे फिर से रूम में बैठा दिया आमिर और आशुतोष के साथ, और उन्होंने बोला कि देखो इसको कुछ भी नहीं आता, आप लोगों को हेल्प करना पड़ेगा, करेंगे। तो आशुतोष ने बोला क्या है आप बताओ। आशुतोष सर वॉज सो नाइस टू मी, ही सेज डरने की बात नहीं है, तुम बहुत डरे हुए हो, आप डरो मत। इट वॉज सो स्वीट, क्योंकि मैं बहुत आई थिंक वॉज ओनली 24 ईयर्स। सर मैं नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना है। सर क्यों डरे हो, आपको आता है, मैं सीख लूंगा, लेकिन सर मुझे मुझे पता ही नहीं फिल्मों में कैसे शूट किया जाता है ऐसे। वो हमारी जिम्मेदारी, और हमारे पास अनिल जी है, अनिल मेहता जी है, वो कैमरा मैन है सबसे सीनियर, हम संभाल लेंगे, आप हमें कोरियोग्राफी और डांस दिखाओ, कैसे इसको शूट करना है वो हमारी जिम्मेदारी। अरे ठीक है, आमिर ने भी बोला कि आप डरो मत, आप करो, यू विल बी फाइन। तो फिर मैंने वो स्टाइल सीखा। मैं एक सलोमी रॉय कपूर की एक मोहतरमा थी जो सिद्धार्थ रॉय कपूर की माँ है,
0: ओहो
1: हाँ, तो वो सिर्फ वो जानती थी वो पर्टिकुलर स्टाइल। तो मैं उनके घर गया, नेपिन सी रोड का घर था मलबा हिल में, मैं गया, उनको बोला कि मुझे सीखना है, और उन्होंने ठीक है मैं सिखाऊंगी। तो मैंने भर्ती किया अपने आप को, सीखा, फिर मैंने वही चीज़ कोरियोग्राफी में डाली। गाना ए आर रहमान का गाना था, वो मैंने लिया, कोरियोग्राफ किया, फिर बुझ गया। वहां पे उन्होंने मुझे अनिल मेहता सर के साथ ही कमरे में बिठा दिया, और अनिल मेहता को मैंने साफ साफ कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता कैमरा के बारे में, मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगा सेट पे, मैं क्या, मुझे एक्शन भी बोलना नहीं आता कि कब एक्शन बोलूं कब नहीं, कब नगाड़े को बोलूं कि रोल साउंड, ये मैंने सुना है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। सर कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। फिर उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद एक बुक दिया, इट्स कॉल्ड द 5 C's ऑफ कैमरा। अगर कोई भी डांस के दीवाने हैं या कोरियोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये एक्चुअली कोरियोग्राफी के बारे में नहीं बताता, लेकिन कैमरा के बारे में बताता है, और ये क्या बोलते हैं ना, ग्रंथ है। अगर आपको कैमरा के बारे में सीखना है, दिस इज अ बुक फॉर टू गो फॉर द 5 C's ऑफ कैमरा। तो अभी मुझे पढ़ाई लिखने में बहुत शौक है, तो मैं वो बुक को रातों रात खा गया सब कुछ, और मैंने नोट्स लिख दिए कि जो मुझे समझ में नहीं आया मैंने नोट्स कर दिए। मैंने अनिल मेहता सर को बता दिया कि ये मैं समझ गया, ये नहीं समझा, आप मुझे बताइए। ऐसे आप 2 दिन मेरे साथ आइए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने देखा, समझ गया, और मैं बहुत फटाफट समझ जाता हूँ। तो वो मेरी मतलब मैं समझता हूँ कि मैं अगर मुझे कोई दिखाया तो मैं फटाफट समझ जाता हूँ। तो मैं सेट पर रह के मैं सीख गया, और फिर मेरी 3रे दिन मेरी शूट लग गई, और मैं बहुत नर्वस था क्योंकि पहली बार मैं
0: एक तो और
1: बड़े
0: इतनी बड़ी
1: कलाकार को
0: कला, बड़ी फिल्म थी,
1: हाँ
0: बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म थी आमिर
1: करेक्ट।
0: की और आशुतोष की भी, और फिर हिस्ट्री भी बनी।
1: तब हमें नहीं पता था कि ये हिस्ट्री बनने वाली है, तब हमें लगा कि अच्छा नॉर्मल फिल्म
0: हाँ,
1: फिल्म बन रही है।
0: लेकिन उसके बाद जब वो
1: हाँ
0: फिल्म रिलीज हुई होगी
1: हाँ
0: और जब उससे टेरेंस का नाम जुड़ा,
1: हाँ
0: तो एक खुशी जो आपको मिलनी चाहिए वो तो खैर जाहिर सी बात है, उसका तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कमर्शियली आपको फिर उससे कोई फायदे हुए होंगे?
1: एक्चुअली मैं कहूंगा कि मेरा बहुत, मैंने कुछ उस फिल्म में बहुत छोटा काम किया है सर, लेकिन बहुत इज्जत मिली। तो ये भी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि लोग मेरा नाम जोड़ने लगे बड़े बड़े हस्तियों से, जैसे सरोज खान जी ने कोरियोग्राफ किया था, राजू खान ने कोरियोग्राफ किया था, वैभवी मर्चेंट ने, उनका बहुत ज्यादा काम था सर, मेरा बहुत छोटा, लेकिन कोरियोग्राफर के नाम में मेरा भी नाम जोड़ा गया
0: वो
1: था।
0: जाहिर सी बात है ना।
1: लेकिन एक्चुअली बोलूं वो बहुत दिग्गज कोरियोग्राफर्स है, मेरी कोई औकात नहीं है उनके सामने, मैं तो अभी अभी पैदा भी नहीं हुआ वैसा वाला कोरियोग्राफर हूं, लेकिन शायद कोरियोग्राफर्स के नाम साथ में जुड़ गए थे, तो वो लोगों के नजर में अरे हाँ ये बड़े लोगों के साथ में जुड़ गया है, ये मेरी खुशनसीबी थी, लेकिन ये सत्य नहीं है। और ये मैं इसका खुलासा करना चाहता हूँ कि ये मेरा सत्य है कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया लगान में, कोई बड़ा गाना नहीं किया, छोटा सा एक पोर्शन था वही किया।

आज के बॉम्बे टॉकीज में आप सुन रहे थे जाने माने कोरियोग्राफर टेरेंस लुविस से अमरकांत दुबे की फिल्मी गपशप। ये था इस फिल्मी गपशप का पहला भाग। तकनीकी सहयोग HR पाटले, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की गई। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कोई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी विशिष्टता बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। युवा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित के लिए युवा भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने कहा कि हर घर और हर खेत को ऊर्जा का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे। वे ब्यास नदी में अपने एक रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के

अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 85 ओवर में 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। केएल राहुल 100 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी स्थिति बनी रहने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। आज शनिवार है। आज के दिन शाम 5:30 पर हम प्रस्तुत करते हैं अपने युवा दोस्तों के लिए कार्यक्रम युवावाणी। भोजपुरी लोकगीत आप सुनेंगे शाम 6:00। शाम 6:05 पर हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे भोजपुरी बुलेटिन समाचार। वापिस से स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से हम प्रस्तुत करेंगे शाम 6:10 पर कार्यक्रम किसान वाणी। सांझ गीत भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:40 पर। शाम 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। प्रादेशिक समाचार और ज़िले की हलचल के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र। समय होगा शाम 7:25। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद।

रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे समाचार संध्या। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम लोकधारा। गजल की महफिल सजेगी रात्रि 9:15 पर। 9:30 पर हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम रिले करेंगे।

हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से प्रस्तुत किया जाएगा रात्रि 10 बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। हिंदी समाचार रात्रि 11 बजे और रात्रि 11 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी समाचार बारी बारी से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। आइए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कबीर अमृतवाणी से।

कबीरा एल्बम का ये भजन अभी आप सुन रहे थे जुबिन नौटियाल की आवाज़ में। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगा हर्ट्स पर। अब आइए सुनते हैं जय बजरंग बली एल्बम से एक भजन। आवाज़ शबाब साबरी की है, मनीषा ब्यास के लिखे इस भजन की धुन बनाई है अभिजीत ने। लेकिन इससे पहले आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

हे हनुमंता नमो नमो एल्बम का ये भजन अभी आप सुन रहे थे। भरत कुमार और साथियों की आवाज़ें थी। और अब इसी के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा दोस्तों के लिए हमारा कार्यक्रम युवा वाणी।

दोस्तों नमस्कार, युवाणी कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम आपके आपका अपना ओम प्रकाश। दोस्तों आज इस कार्यक्रम में हम बातें करेंगे वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो 7 जून को है, उस पर कुछ हम चर्चा करेंगे जन सेवा के आदर्श गोपीनाथ बोरदोलोई जयंती पर भी हम आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। अलावे इसके कुछ फिल्म संगीत का भी आनंद आप इस कार्यक्रम में लेंगे।

तो दोस्तों आइए सबसे पहले फूड सेफ्टी के बारे में यानी भोजन व्यर्थ न करें विषय पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे बेसिक चीज है दोस्तों रोटी कपड़ा और मकान। रोटी से तात्पर्य भोजन से है। भोजन मनुष्य की सबसे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, स्वस्थ रखता है और जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज दुनिया में लाखों लोग भूखे सोते हैं, जबकि दूसरी ओर बड़ी मात्रा में भोजन प्रतिदिन बर्बाद कर दिया जाता है। भोजन की यह बर्बादी एक गंभीर सामाजिक और नैतिक समस्या है। दोस्तों किसान कड़ी मेहनत करके खेतों में अनाज उगाते हैं, तेज धूप, वर्षा और अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बाद फसल तैयार होती है। जब हम भोजन को बिना सोचे समझे फेंक देते हैं तो हम केवल भोजन ही नहीं बल्कि किसान की मेहनत, पानी, भूमि और अन्य संसाधनों को भी व्यर्थ करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार दुनिया में हर वर्ष करोड़ों टन भोजन बर्बाद होता है। यदि इस भोजन का सही उपयोग किया जाए तो करोड़ों भूखे लोगों का पेट भरा जा सकता है। इसलिए भोजन की बर्बादी रोकना केवल आर्थिक आवश्यकता ही नहीं बल्कि मानवता का भी कर्तव्य है। दोस्तों हम अपने दैनिक जीवन में कुछ सरल उपाय अपनाकर भोजन की बर्बादी रोक सकते हैं। सबसे पहले हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सकें। विवाह समारोहों,

छुट्टियों और अन्य आयोजनों में अक्सर लोग आवश्यकता से अधिक भोजन अपनी प्लेट में ले लेते हैं और बाद में उसे फेंक देते हैं। यह आदत बदलनी चाहिए। घर में भी भोजन को सही तरीके से संग्रहित करना चाहिए ताकि वह खराब ना हो। बचा हुआ भोजन जरूरतमंद लोगों को दिया जा सकता है या अगले भोजन में उपयोग किया जा सकता है। बच्चों को भी भोजन से भोजन का महत्व समझाना चाहिए ताकि उनमें भोजन के प्रति सम्मान की भावना विकसित हो। श्रोताओं, भोजन की बर्बादी पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव डालती है। जब भोजन कूड़े में फेंका जाता है तो उसके सड़ने से हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं जो प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं। इसलिए भोजन बचाना पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान है। और दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे द्वारा बचाया प्रत्येक कण किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए अमूल्य हो सकता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि ईश्वर का दिया हुआ अनमोल उपहार है। इसका सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है। और दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि अन्न का सम्मान करें, भोजन व्यर्थ न करें। यदि हम सभी इस संकल्प को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल भोजन की बर्बादी कम होगी बल्कि एक अधिक संवेदनशील और जिम्मेदार समाज का निर्माण भी होगा। और अब आइए, लिए चलते हैं हम आपको गीत और संगीत की दुनिया में और सुनवा रहे हैं ये गीत।

निशुल्क कानूनी सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 1-4454 से प्राप्त की जा सकती है।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं युवा दोस्तों के लिए हमारा कार्यक्रम युवा वाणी। अब आइए एक चर्चा करते हैं जन सेवा के आदर्श गोपीनाथ बोरदोलोई जयंती पर। श्रोता दोस्तों, महान स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक और जनसेवा के आदर्श प्रतीक गोपीनाथ बोरदोलोई की जयंती बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाई जाती है। गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म 6 जून 1890 के समय में हुआ था। इनका जन्म असम के नगांव जिले के राहा नामक स्थान पर हुआ था। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली, परिश्रमी और देशभक्त थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने वकालत का कार्य शुरू किया, लेकिन देश की स्वतंत्रता और जनता की सेवा के लिए उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन प्रेरित होकर वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल हुए। उन्होंने

असम में राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य किया और अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में कई बार जेल भी गए। उनका मानना था कि सच्ची राजनीति का उद्देश्य जनता की भलाई और राष्ट्र की उन्नति होना चाहिए। श्रोता दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गोपीनाथ बोरदलोई असम के प्रथम मुख्यमंत्री भी बने। उन्होंने राज्य के विकास, शिक्षा के प्रसार, कृषि सुधार और सामाजिक समरसता के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। उनके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण असम की संस्कृति, पहचान और हितों की रक्षा संभव हो सकी। उन्होंने जनजातीय समुदायों तथा कमजोर वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। गोपीनाथ बोरदलोई का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा नेता वही होता है जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर समाज और राष्ट्र की सेवा करे। उनकी ईमानदारी, सादगी, कर्तव्यनिष्ठा और जन कल्याण की भावना आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके असाधारण योगदान को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1999 में उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। यह सम्मान उनके महान व्यक्तित्व और राष्ट्र के प्रति उनके अमूल्य योगदान का प्रमाण है। आज उनकी जयंती पर हम संकल्प ले सकते हैं कि हम भी उनके आदर्शों का अनुसरण करेंगे, ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तथा समाज और देश के विकास में अपना योगदान देंगे। श्रोता दोस्तों, महान जननायक गोपीनाथ बोरदलोई जी को शत शत नमन करते हुए उनके प्रेरणादायक जीवन से सीख लेने का आग्रह हम सभी को एक दूसरे से करने चाहिए। और अब आइए एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनवा रहे हैं ये गीत।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो सेट और मोबाइल सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युवाणी।

श्रोता दोस्तों, कल यानी 7 जून को है यूनिफाइड भारत ई चेंज डे, यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, सुरक्षित भोजन स्वास्थ्य जीवन। ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, भोजन हमें ऊर्जा देती है, शरीर का विकास करता है और हमें स्वस्थ रखता है। लेकिन यदि भोजन दूषित हो जाए तो यही भोजन बीमारी का कारण बन सकता है, क्योंकि भोजन ही हमें ऊर्जा भी देता है। दूषित भोजन से पेट दर्द, उल्टी, दस्त और कई गंभीर रोग हो सकते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का उद्देश्य लोगों को यह समझना और समझाना है कि भोजन की सुरक्षा खेत से लेकर थाली तक हर चरण में महत्वपूर्ण है। किसान, खाद्य उद्योग, दुकानदार और उपभोक्ता, सभी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब बात करते हैं कि हम अपने घर में भोजन को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। पहली बात, हमेशा हाथ धोकर भोजन बनाएं और खाएं भी। फल और सब्जियों को अच्छी तरह धोएं, पका हुआ और कच्चा भोजन अलग रखें। भोजन को सही तापमान पर सुरक्षित रखें। साफ और शुद्ध पानी का उपयोग करें। दोस्तों, आज के समय में बाजार से खाद्य पदार्थ खरीदते समय उनकी निर्माण तिथि और समाप्ति तिथि अवश्य देखें। पैकेट फटा हुआ या खराब दिखाई दे तो उसे न खरीदें। विद्यालयों, घरों और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखना भी खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि हम छोटी छोटी सावधानियां अपनाएं तो अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। बच्चों के लिए विशेष रूप से पौष्टिक और स्वच्छ भोजन आवश्यक है। जंक फूड की जगह ताजे फल, सब्जियां, दूध और संतुलित आहार को प्राथमिकता दें। श्रोता दोस्तों, इस विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर हम संकल्प लें कि हम स्वयं भी सुरक्षित भोजन अपनाएंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।

श्रोता दोस्तों, समय अभाव के चलते ये गीत हम आपको पूरा पूरा नहीं सुनवा सके। वक्त मिलने पर इस गीत को हम पूरा पूरा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कृपया हमारे प्रसारण को निरंतर सुनते रहिए। और अब इसी के साथ यो वाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी आकाशवाणी का। ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत।

रीना सिन्हा की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी बरसाती गीत। इसी के साथ लोकगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:05 हुआ चाहते हैं।

हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी बुलेटिन समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, ई आकाशवाणी पटना है। अब रउआ संजय सिंह से भोजपुरी में समाचार सुनी। एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार विधान परिषद के एगो सीट खातिर उम्मीदवार के नाम के घोषणा क देले बिया। पार्टी कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी के उम्मीदवार बनौले बिया। काल भाजपा 4 गो और जदयू 4 गो उम्मीदवारन के नाम के सूची जारी कैले रहे। बतावल जरूरी बा कि बिहार विधान परिषद के 9 गो सीट खातिर द्विवार्षिक चुनाव जबकि 1 गो सीट खातिर उपचुनाव हो रहल बा। दिल्ली के राउज एवेन्यू अदालत मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह के गैर इरादतन हत्या आ आर्म्स एक्ट के मामला में दोषी करार देले बिया। अदालत उम्मीदवारी के रद्द क के ओकरा के हिरासत में लेवे के हुकुम देले बिया। कोर्ट एह मामला में उनकर मेहरारू रेणु सिंह समेत दोसर आरोपी लोगन के बरी क देले बिया। ई मामला 31 दिसंबर साल 2018 के न्यू ईयर पार्टी के घरी भइल फायरिंग से जुड़ल बा। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में एगो फार्म हाउस में हर्ष फायरिंग के दौरान डॉक्टर अर्चना गुप्ता के कपार में गोली लागल रहे। इलाज के घड़ी उनकर मौत हो गई रहे। फायरिंग के आरोप राजू कुमार सिंह पर लागल रहे। बिहार के समस्तीपुर जिला के ताजपुर के रहे वाला वैभव सूर्यवंशी के भारतीय सीनियर T20 क्रिकेट टीम में शामिल कैल गइल बा। वैभव भारतीय टीम में चुनल गइल सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गइल बाड़न। वहां के 15 साल 71 दिन के उम्र में भारतीय टीम में जगह बनौले बाड़े। वैभव के जून जुलाई में आयरलैंड आ इंग्लैंड के खिलाफ होवे वाला T20 सीरीज के साथ साथ एशियन गेम्स खातिर चुनल गइल बा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वैभव सूर्यवंशी के भारतीय टीम में शामिल भइला पर बधाई देले और उनकर उज्ज्वल भविष्य के कामना कैले बाणन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राष्ट्रमंडल यूथ चेस चैंपियनशिप U18 के विजेता रियान मोहम्मद के 22,50,000 रुपया के प्रोत्साहन राशि सौंपले। श्री चौधरी रेहान मोहम्मद के उज्ज्वल भविष्य खातिर बधाई आ शुभकामना दी हले। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राजगीर में बन रहल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के एह साल के अंत तक पूरा करे के निर्देश दिले बाड़न। पटना के खेल विभाग के समीक्षा बैठक के घड़ी वहां के मोनहुल हक स्टेडियम के पुनर्विकास काम में तेजी लावे के कहनी। श्री चौधरी जिला प्रखंड आ पंचायत स्तर पर खेल ढांचा के विकास आ खिलाड़ी लोगन खातिर ट्रेनिंग के सुविधा उपलब्ध करावे के निर्देश दिहलन। कृषि आ किसान कल्याण मंत्रालय कहले बा कि देश भर में अब तक 9,42,000 से ढेर किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुकल बाड़े। मंत्रालय के मुताबिक अभियान के तहत अब तक 17,800 से ढेर जागरूकता कार्यक्रम कैल गइल बा। एकरा से लगभग 7 लाख किसान लोगन के फायदा भइल बा। एकरा अलावा 3,700 से ढेर ट्रेनिंग कार्यक्रम आ 8,850 से बेसी व्यवहारिक प्रदर्शन भी आयोजित कैल गइल। एह अभियान के मकसद माटी के उर्वरक शक्ति बचाए खातिर रासायनिक खाद पर निर्भरता कम गइल आ टिकाऊ खेती के बढ़ावा देहल बा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के 6वां चरण में राज्य के अलग अलग जिलन से चुनल गइल 50 गो छात्र छात्रा लोगन के पंजाब के शैक्षणिक और सांस्कृतिक दौरा खातिर रवाना कैल गइल। ITI पटना में भइल फ्लैग ऑफ समारोह में गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार लैकन लोगन के हरी झंडी देखौलन। ए मौका पर ITI पटना के निदेशक TN सिंह कहनी कि युवा संगम राष्ट्रीय एकता के मजबूत करे के दिशा में एगो बढ़ कदम साबित हो रहल बा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE अंक सत्यापन आ पुनर्मूल्यांकन खातिर आवेदन जमा करे के आखिरी तारीख बढ़ा के 7 जून क देले बिया। CBSE सोशल मीडिया पोस्ट

में जनौलस कि लइका अब इतवार के आधा रात तक अपन आवेदन जमा कर सकी हैं। एकरा से पहले आवेदन जमा करे के आखिरी तारीख 6 जून तक कैल गैल रहे। राज्य के कईगन हिस्सा में देर रात हल्का से मध्यम बारिश भइल बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पटना, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, भागलपुर और कटिहार समेत 18 गो जिलन में पानी बरसल बा। एकरे साथ आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाला सभी श्रोता भाई लोगन के मनु भाई के तरफ से नमस्कार बा और साथे साथे सुगिया बहन रौरो के नमस्कार।
1: जी मनु भाई, सब श्रोता भाई बहन के नमस्कार, सुगिया बहन के तरफ से नमस्कार, रौवा के भी प्रणाम। देखिए मनु भाई
0: जी,
1: आज 6 जून है
0: जी,
1: और आज के दिन विश्व कीट जागरूकता दिवस मनावल जाला। यह दिवस के उद्देश्य फसल खाद्यान्न और मानव स्वास्थ्य के नुकसान पहुँचावे वाला कीट के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा वैज्ञानिक कीट प्रबंधन के बढ़ावा देना बा।
0: बहुत बढ़िया बा। देखी हमनी के अगल बगल चारों ओर कीट बाड़ आ कुछ कीट हमनी के लाभदायक भी बा आ कुछ कीट हानिकारक भी
1: जी, जी।
0: तो हमनी के लाभदायक तो लाभ पहुँचेबे करलन, हानिकारक कीट जो बाड़न वो बड़ा हानि पहुँचलन फसल खातिर। तो पूछी मत, अगर कीट लग जास तो मैंने एकड़ के एकड़ मिनटों में साफ कर
1: दिया।
0: ऐसे हमनी के आज के दिन इस संकल्प लेवे के चाहिए कि अपना फसल के देख रेख कर जाओ आ कौनो कीट आवस तो उनकरा कमर कस के उनकरा से लड़े के मैंने कोशिश कर जाओ।
1: जी जी, देखिए हमनी के फसल के उपज में कमी के एक प्रमुख कारण कीट और रोग होला
0: जी।
1: धान गेहूँ दलहन तेलहन और सब्जी के फसल में विभिन्न प्रकार के कीट नुकसान पहुँचावेला। यदि समय रहते एकर पहचान और नियंत्रण ना कल जाए तो उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता। विशेषज्ञ के अनुसार कीट नियंत्रण खातिर केवल रासायनिक दवा पर निर्भर रहे के बजाय समेकित कीट प्रबंधन पद्धति अपनावे के चाहिए। एकरा से खेत के नियमित निगरानी, संतुलित उर्वरक उपयोग, फसल चक्र अपनाना और जैविक नियंत्रण उपाय शामिल बा।
0: जी जी, देखी कीट के प्रबंधन तो कल बहुत जरूरी बा। काहे से संध्या सुगिया बहिन, हमनी के कोनो भी फसल उपजावल जा और अगर हमनी के कीट के नियंत्रण खाली न कल जा तो ओकरा से हमनी के आर्थिक घाटा तो जीवे करी
1: जी जी।
0: आ ओकर क्षति हमनी के गुणवत्ता पूर्ण जो बीज बा उपज भी ना हो पाई। तो ऐसे देखी एकरा पर हमनी के ऐसा देखी आजकल के मौसम जो बन रहा बा एकरा में हमनी के देखी बदलत मौसम बा, कबो बारिश कबो घाम, कभी बहुत ज़्यादा ठंडा कबो बहुत गर्मी। तो ऐसा में हमनी के सब पर ध्यान देवे के चाहिए, चाहे वो फसल होकस, चाहे बाल बच्चा होकस, चाहे माल मवेशी होकस। विशेष ध्यान जब तक से ना दिहल जाए तो बहुत तरह से समस्या में फंस जाए
1: जी।
0: ताई आज के थोड़ा कार्यक्रम के संक्षिप्त रूपरेखा देखल जाओ, फिर आगे चर्चा के लिए
1: जी,
0: अभी बताएं। अभी देखिए आज की

0: के तहत कुछ कृषि संबंधी खबर जानल जाए, फिर आज की बातें के तहत एगो वार्ता सुनल जाए, विषय रही टमाटर और गेंदा के सब फसली खेती कैसे कइल जा। आज के वार्ताकार अब डॉक्टर सुमित पाल जी, एकरा बाद नई उम्र की नई फसल के तहत लौकी और बैगन के खेती के बारे में जानकारी ली। आज के नसीहत के तहत जानल जाए कि अपना पोषण पर दिहल जाओ ध्यान। कार्यक्रम के अंत में मौसम का पूर्वानुमान भी जानल जाए। तो देखिए हम खबर लेकर हुआ तो तैयार बानी, किसान भाई लोग के आज बताएं कृषि संबंधी खबर कौन कौन से बा, कितना बढ़िया बढ़िया खबर।
1: जी जी, देखिए खबर बा कि देश में खरीफ मौसम के तैयारी तेज हो गई बा। विभिन्न राज्य में किसान के समय समय पर बीज उपलब्ध करावे खातिर सरकार बीज वितरण व्यवस्था के मजबूत करे के निर्देश दिले बा। कृषि विभाग किसान के मानसून के स्थिति देखते हुए फसल चयन तथा उन्नत कृषि तकनीक अपनावे के सलाह भी दे रहल बा। कृषि वैज्ञानिक संभावित एल नीनो प्रभाव के देखते हुए किसान के सतर्क रहे के सलाह देले बा। अध्ययन में बतावल गईल बा कि एल नीनो के स्थिति बनने पर खरीफ फसल के उत्पादकता प्रभावित हो सकता। विशेषज्ञ जल संरक्षण, सूखा सहिष्णु किस्म के उपयोग तथा मौसम आधारित कृषि सलाह के पालन करे पर जोर देले बड़न। भारत के कृषि निर्यातक क्षेत्र के नया सफलता मिलल बा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात प्रभा विकास प्राधिकरण के सहयोग से कर्नाटक से मिलेट आधारित खाद्य उत्पाद के पहला समुद्री खेप न्यूजीलैंड भेजल गईल बा। एकरा से मोटा अनाज के निर्यात के बढ़ावा मिले के साथ किसान के बेहतर बाजार उपलब्ध होके के संभावना बा।
0: देखिए बड़ा बढ़िया बढ़िया खबर है। देखिए आज की गौर खबर बस सुगिया बहन
1: जी बताए
0: कि हमनी के क्षेत्र में हमनी के रोहतास जिला के धान के कटोरा कहल जाला। तो धान के कटोरा कहल जाला, जैसे कि धान के उत्पादन ये बहुत अच्छा
1: अच्छा,
0: अच्छा भी होला। तो किसान भाई लोग खातिर खबर बाकी यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके धान के बिजरा रउआ डाली और धान के बिजरा तैयार करी। ऐसे कि देखिए बारिश भी रह के कुछ ना कुछ हो रहा बा, आप नहर भी पानी दे चुकल बा। ऐसन में किसान भाई चुक मत करस, जितना जल्दी होके बिजरा तैयार करस। तो ये बहुत बढ़िया खबर बा हमनी खातिर कि किसान भाई लोग सब कुछ अनुकूल बा, मौसम अनुकूल बा, किसान भाई के सिंचाई के साधन हो गई बा, ऐसे बिजरा तैयार करी। आई अब हम
1: आगे खेती, आगे आगे पीछे खेती, भागे जोगे तो पहले ही खेती के तैयारी में लग जाए के। देखी मनु भाई, टमाटर के फसल में हमने के कुछ
0: टमाटर और गेंदा के जी टमाटर और गेंदा के सब फसली खेती कैसे कर जाओ, एक एगो वार्ता सुनल जाओ। आज के वार्ताकार मानी हमने के डॉक्टर सुमित पाल जी, तो आई एगो वार्ता यहाँ से सुनो।
1: जी जी,
2: किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक फसली खेती करने वाले किसानों के साथ बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उन समस्याओं के निस्तारण हेतु एक नई तकनीक से खेती करने के प्रयास, जिसे हम सह फसली खेती कहते हैं, सब्जियों में खास तौर पर इस तरह की सह फसली खेती करना अत्यंत लाभदायक है। हम आज चर्चा करेंगे टमाटर और गेंदा की सह फसली खेती के बारे में। इस तरह की सह फसली खेती करने से टमाटर तथा गेंदा दोनों में ही लगने वाले बहुत सारे रोग और कीट पतंगों से निजात पाई जा सकती है। सब्जियों वाली फसलों में टमाटर एक विशिष्ट स्थान रखता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल की हमारी रोज़मर्रा के जीवन में टमाटर एक महत्वपूर्ण सब्जी के रूप में स्थान रखता है, तथा मांग के आधार पर टमाटर का स्थान आलू व प्याज के बाद आता ही है। टमाटर में अनेक प्रकार के विटामिन, पोटेशियम तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिज लवण होने के कारण यह मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। भारतीय व्यंजनों में टमाटर का उपयोग भी बहुतायत में होता है। इसके परिप्रेक्ष्य में टमाटर की खेती कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा समस्त उत्तर भारत में बहुतायत में की जा रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टमाटर का वनस्पतिक नाम लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम है, और इस लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम स्पीसीज को इसकी खेती आजकल हम वर्ष भर कर रहे हैं। वर्ष भर खेती करने के कारण यह खेती किसानों के लिए अत्यंत लाभदायक साबित हो रही है। अधिक आय के लिए किसानों के लिए टमाटर की सह फसली खेती के बारे में जैसा मैंने आपको भी बताया, ऐसी खेती जिसमें दो फसलों को एक साथ एक ही समय पर तथा एक ही खेत में लगाया जाता है। इस तरह की खेती करने के साथ साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों ही फसलों को हम इस तरह से लगाएंगे कि दोनों की फ्लावरिंग यानी कि फूल आने का समय

एक साथ हो, जिससे कि बहुत सारे कीट पतंगों तथा बीमारियों से एक दूसरे के साथ ये साथ में रह के लड़ सकें। हम आपको आगे बताएंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं। टमाटर के साथ सह फसली खेती गेंदा तथा मिंट दोनों की जा सकती है, लेकिन गेंदा की सह फसली खेती करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह निमेटोड से भी हमारे पौधों को बचाता है और टमाटर के साथ साथ गेंदा की भी अच्छी उपज हमारे किसानों को मिलती है। टमाटर में लगने वाले कीड़ों को गेंदा अपनी ओर बहुत आसानी से आकर्षित कर लेता है। इस प्रक्रिया को ट्रैप क्रॉपिंग भी कहते हैं। ट्रैप क्रॉपिंग एक प्रक्रिया है जिसमें फूलों को सब्जियों के चारों तरफ लगाते हैं, खासतौर पर गेंदा के फूलों को लगाते हैं, और गेंदा के पौधों में जब फूल आते हैं तो मिलेडोगाइनी नामक एक निमेटोड है, सब्जी वाली खेती की तरफ अट्रैक्ट ना होकर, उसकी तरफ आकर्षित ना होकर गेंदा की तरफ आकर्षित होता है, जिससे कि निमेटोड का प्रकोप हमारे गेंदा की फसल में नहीं होता। साथ ही साथ टमाटर और गेंदा की अच्छी उपज भी किसान भाइयों को मिल जाती है, इससे अधिक आय भी कमाई जा सकती है। अब हम बात करेंगे दोनों की बीज दर के बारे में। दोनों की बीज दर को हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, किस तरह से हम उस लक्ष्य को पाएंगे। बीज दर के संदर्भ में टमाटर की हाइब्रिड प्रजातियों की बीज दर 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर तथा गेंदा की बीज दर 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जनरली होती है। आमतौर पर इस तरह की बीज दर को हम लोग बलुई दोमट मिट्टी तथा दोमट मिट्टी वाले क्षेत्रों में हम उपयोग करते हैं, परंतु अगर हमारा सिंचित क्षेत्र है जहाँ पे पानी की कोई समस्या नहीं है, वहाँ पे बीज दर को हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं। बीज दर के साथ साथ अब हम पौध की तैयारी की बात करते हैं। टमाटर तथा गेंदा दोनों की फसल उपजाने के लिए हमें पहले पौध की तैयारी करनी पड़ती है। खेत में रोपाई से पहले दोनों की नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी में पानी न ठहरे इसलिए नर्सरी को 90 से 100 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई में बनाना चाहिए। इस तरह की नर्सरी बनाने से बारिश के मौसम में पानी नहीं लगता। बीज की बुवाई नर्सरी में करने से पहले बीज को 2 ग्राम कैप्टान तथा थीरम से प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे कि नर्सरी में लगने वाले रोग जैसे डैम्पिंग ऑफ नहीं लगते। और पौधे की लंबाई जब 6 से 7 सेंटीमीटर की हो जाए, या फिर इसको समझने का एक और तरीका है कि पौधे में जब 2 सच्ची पत्तियां आ जाएं, तब हम पौधे को रोपाई के लिए तैयार मानते हैं तथा इसकी रोपाई हमें खेत में करनी चाहिए। लेकिन रोपाई से पहले हमें इस बात का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है कि हमें किस तरह की भूमि का चुनाव टमाटर और गेंदा की सह फसली खेती करने के लिए करना चाहिए। टमाटर और गेंदा की सह फसली खेती करने के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो मानी जाती है वो बलुई दोमट मिट्टी है, जिसका पीएच मान 6 से 7 आदर्श पीएच मान माना जाता है। यानी कि हम ये बात कह सकते हैं अपने किसान भाइयों को कि अगर हल्की एसिडिक यानी कि थोड़ी सी अम्लीय भूमि भी है, तब भी टमाटर और गेंदा की सह फसली खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो कि हमारे बिहार के क्षेत्र में सामान्यतः पाई जाती है। खेत की तैयारी हम किस तरह से करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है किसान भाइयों का कि हमने खेत का चुनाव तो कर लिया, बीज भी असल सही से हमने अच्छी क्वालिटी का ले लिया, लेकिन अच्छी खेत की तैयारी ना हो पाने के कारण भी हमारी फसल के उत्पादन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमें बस दो बातों का ध्यान रखना है कि गेहूँ की तरह ही टमाटर और गेंदा की खेती करने के लिए मिट्टी को भुरभुरा बनाना है। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए 2 से 3 जुताई की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम मिट्टी को लेवल करते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ की आम भाषा में बात करें तो हेंगा चलाकर मिट्टी को समतल कर देना चाहिए। हेंगा चलाने के बाद मिट्टी में कोई और अन्य भू परिष्करण काम नहीं करने चाहिए। हमारा खेत अब बुवाई के लिए तैयार है। जिस पौध को हमने नर्सरी में तैयार किया है उस पौध को हम खेत में लगा देंगे। खेत में लगाने के लिए पौधे से पौधे की दूरी 30x30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और रो से रो यानी कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पौध लगाने के बाद हमें खाद और उर्वरक की तरफ बढ़ना है कि हम खाद और उर्वरक की तैयारी किस तरह से करेंगे, क्योंकि यह एक सह फसली खेती है और दोनों ही फसलों में खाद और उर्वरक की आवश्यकता बहुत अधिक पड़ती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि खेत की तैयारी करते समय ही 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर अगर हमें केचुए की खाद मिल जाती है तो वह बहुत उत्तम है। उसके लिए हमें 100 से 150 केजी केचुए की खाद की आवश्यकता पड़ेगी। इसको 2 जुताई के बाद हेंगा चलाने से पहले खेत में अच्छे से मिला देना चाहिए तथा खेत को 5 से 7 दिन तक के लिए छोड़ देना चाहिए। खड़ी फसल में हमें खाद रासायनिक खाद देने की अगर बात करें हम लोग तो हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों की ही मात्रा देते हैं।

टमाटर और गेंदा दोनों के ही केस में 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटेशियम पर हेक्टेयर की दर से हम प्रयोग कर सकते हैं टमाटर और गेंदा की सह फसली खेती में। फास्फोरस तथा पोटास इस तरह के रासायनिक उर्वरक देने समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा हम एक साथ फसल बोते समय ही दे देंगे, परंतु नाइट्रोजन को हम 3 मात्रा में देंगे, पहली फसल बोते समय, दूसरी 25 से 30 दिन के बाद और तीसरी फसल लगने के 40 से 45 दिन के बाद हम टॉप ड्रेसिंग के रूप में नाइट्रोजन की पूरी मात्रा देंगे। टॉप ड्रेसिंग मतलब फसल में छिड़क देंगे हम खड़ी फसल में। इस तरह से हम नाइट्रोजन की 3 डोज अपनी फसलों को देंगे इस तरह की सह फसली खेती करते समय। सबसे बड़ा प्रश्न आता है फर्टिलाइजर देने के बाद यानी कि उर्वरक देने के बाद सिंचाई का, हम कितनी सिंचाई करें या किस विधि से सिंचाई करें कि हमारी सह फसली खेती में प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन बहुत अच्छा हो। इस केस में सिंचाई की अगर हम बात करें तो दोनों ही फसलों को अत्यधिक सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। गर्मी के दिनों में 4 से 5 दिनों तथा सर्दी के दिनों में 8 से 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई इन दोनों ही फसलों के लिए अत्यंत लाभकारी होती है। सिंचाई देते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फूल आने से तुरंत पहले हम अपने खेत में सिंचाई न दें तथा फल आने से तुरंत पहले मतलब 1 से 2 दिन पहले ही हम सिंचाई ना करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे उत्पादन के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो हम इस बात की जानकारी ज़रूर रखें कि फूल आने से मतलब 10 से 20% फूल आने से 4-5 दिन पहले ही हम अपने खेत में सिंचाई कर लें, ताकि दोनों ही फसलों में फूल आते समय मेलोडोगाइनी नामक निमेटोड का असर फूल के ऊपर ज़्यादा है। जो मुख्य फसल है वो हमारी टमाटर है, उसके ऊपर मेलोडोगाइनी निमेटोड का फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम शुरुआत में ही मैंने ये बात बोली थी कि हम फसलों का चुनाव, फसलों का लगाने का समय का चुनाव इस तरह से करेंगे कि दोनों ही फसलों में फूल एक साथ आए। अगर गेंदा में फूल पहले आ गया और टमाटर में फूल बाद में आएगा तब इस खेती की सफलता थोड़ी सी कम हो जाती है। कोशिश यही करनी चाहिए कि दोनों ही फसलों में फूल एक साथ आएँ। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से हम अपनी फसलों का खरपतवार नियंत्रण करेंगे। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण एक बड़ी समस्या है आज के समय में, जबकि हमें मैन पावर यानी लोगों की बहुत कमी है अपने आप खेत में बैठकर खरपतवार नियंत्रण करने की। इस कंडीशन में लोग क्या करते हैं कि कई बार बहुत सारे हर्बिसाइड यानी खरपतवार नियंत्रण के लिए दवाइयों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उद्यानिक फसलों में यानी कि टमाटर या आलू इस तरह की फसलें जो हम डायरेक्ट खाते हैं उनमें हम कोशिश हमें यही करनी चाहिए कि हम किसी भी प्रकार का खरपतवार नियंत्रक दवाइयाँ प्रयोग ना करें। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करके 2 से 3 निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है इस सह फसली में, हम उसको कर लें। पहली निराई करनी चाहिए ग्रोथ में, मतलब जब पौधा अपनी पत्तियों की पूरी तरह से पूरी दशा में पौधा बड़ा हो चुका हो पहली गुड़ाई करनी चाहिए, दूसरी गुड़ाई फूल आने से तुरंत पहले करनी चाहिए तथा तीसरी गुड़ाई जब छोटे छोटे फल आने लग जाएँ तब कर देनी चाहिए। परंतु किसी भी दशा में केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, खरपतवार नाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गुड़ाई करने के तुरंत बाद दोनों ही फसलों में मिट्टी चढ़ाने की प्रक्रिया करना चाहिए ताकि पौधा गिरे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हवा चलने से टमाटर के पौधे गिरने की समस्या होती है, तो उस दौरान हमें पतली डंडी लेकर, बाँस की डंडी लेकर स्टैकिंग की प्रक्रिया करनी चाहिए, उसको सहारा देने की प्रक्रिया करनी चाहिए जिससे कि टमाटर के पौधे को हम एक लकड़ी से बांध कर उसको खड़ा कर सकें और हमारे फसल यानी कि जब टमाटर उसमें लगेंगे, जब फल आएंगे तो वो ज़मीन से टच ना हो, जिसके कारण कई सारी बीमारियों से हम अपने पौधे को बचा पाएंगे। अंत में हम इस बात पे इंश्योर हैं कि खरपतवार नियंत्रण हो जाने के बाद हम अच्छी फसल ले पाएंगे। फसल की तुड़ाई एक बहुत ही टेक्निकल काम है, बहुत ही कुशल लोगों का काम है कि हम टमाटर की तुड़ाई किस स्टेज में करते हैं, किस दौरान करते हैं। टमाटर के प्रतिरोपण के 50 से 60 दिन के उपरांत इसकी तुड़ाई शुरू कर देनी चाहिए तथा गेंदे की तुड़ाई प्रतिरोपण के 60 से 80 दिनों के दौरान करनी चाहिए उपरांत करनी चाहिए 60 से 80 दिन के उपरांत करनी चाहिए। दोनों की ही तुड़ाई की अवधि लगभग समान है, एक की 50 से 60 दिन और दूसरे की 60 से 80 दिन। इसमें बहुत ज़्यादा गैप न होने की वजह से दोनों ही फसलों को हम सामान्यतः बहुत अच्छे तरीके से तुड़ाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। फूलों को शाम या सुबह के समय तोड़ना चाहिए तथा तुड़ाई हमेशा बाजार की मांग के अनुसार करनी चाहिए। इसी तरह टमाटर की फसल को भी हमें सुबह के

0: समय ही तुड़ाई करनी चाहिए, जिससे कि बाजार में जो मांग है या बाजार में ले जाने में सुगमता हो। इस तरह से टमाटर और गेंदा की सह फसली खेती करने से हम प्रतिवर्ष किसानों को अनाज वाली फसलों से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा लाभ कमा के दे सकते हैं।
1: देखें सुगिया बहन, कितना नीमन नीमन जानकारी मिलल डॉक्टर सुमित
2: के भी। खूब मन लगा के सुन ली जा, खूब जानकारी लेनी जा।
1: किसान भाई लोग भी मन लगा के सुन लो हैं और जानकारी ले लो हैं। ये जानकारी खातिर यहाँ के हमनी के मोटरी बांध के धन्यवाद दे,
2: एकदम दिल से धन्यवाद दिहल जाई।
1: तो सुगिया बहन, आगे हमनी के कुछ चर्चा करे से पहले कुछ संदेश सुन लिया जाए।

0: देखिए सुगिया बहन, जैसे कि हमने करें या कि आज की नई उम्र की नई फसल के तहत लौकी और बैगन
1: की खेती के बारे में हमने के चर्चा के विषय रहे।
0: जी तो देखिए लौकी के खेती कम लागत में अधिक उत्पादन देवे वाला एगो ऐसा फसल बा जो कि बहुत ही माने बढ़िया फसल बा और बहुत फायदेमंद बा। वर्षा ऋतु के फसल लगावे खातिर लौकी के बुआई जोन बा जून जुलाई में हमनी के करें जा सबसे अच्छा महीना मानल जाला। वैसे तो तीनों बार हमनी के लगा सकते हैं जायद में जनवरी फरवरी में, खरीफ में जून जुलाई में और रबी में सितंबर अक्टूबर में। लेकिन अभी हमनी के बरसात वाला चल रहा बा तो एक में हमनी के जून जुलाई में माने लौका के जोन बाटे बुआई कर सकत बनी जा। एकरा खातिर खेत के 2-3 बार जुताई करके पट्टा मार दही आ 1 से 1.5 फीट चौड़ा गड्ढा 10 से 12 फीट पर दूरी पर कर ली। एकरा में सड़ल गोबर के खाद DAP और पोटास बेसल डोज के रूप में डाल दी। आ बेल के सहारा खातिर लौकी जमीन पर फैले के बजाय बांस और तार के मचान पर बनाई
1: तो ओकरा से बढ़वार अच्छा होला। और लौकी के फसल फल जोन बा टेढ़ा मेढ़ा
0: ना होला, देखिए सीधा चमकदार और वजनदार भी होला।
1: देखिए एक साथे हमनी के मनु भाई बैगन के भी खेती खातिर लगभग सब प्रकार के माटी में बैगन के खेती कईल जा सकता एक, लेकिन अच्छा जल निकासी के हमनी के ध्यान रखे के चाहिए ताकि पानी माटी में मत लग जाए और फसल सड़ मत जाए। एकरा खातिर भी सड़ल गोबर के खाद स्वस्थ पौधा के मतलब माटी में मिला के सड़ल गोबर के खाद और ओकरा बाद स्वस्थ पौधा के रोपाई करे के चाहिए। बैगन में फल और तना छेदक कीट के प्रमुख समस्या बा, एकरा के नियंत्रण खातिर खेत के नियमित निगरानी करे के चाहिए। प्रभावित शाखा और फल के नष्ट कर

0: के चाहिए। फेरोमेन ट्रॉप से एकर उपयोग करी संतुलित उर्वरक प्रबंधन और समय पर सिंचाई अच्छा उपज प्राप्त देला हमनी के।
1: देखिए सुगिया बहन, बीजोपचार जरूर करे के चाहिए। कोनो बीज लगावे से पहले ओकरा के बीजोपचार कर ले तो बहुत से रोग से हमनी के बचाव कर सकत बनी। बीज उपचार करे के कार्बंडाजिम या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करी ताकि कोनो फसल पर खतरा न रहे। बीज के दर जौन बा 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से बीज के हमनी के माने बुआई कर सकत बनी। देखिए लौका के जहाँ तक पैदावार के बा तेरा के 3G कटिंग फायदेमंद होला। मुख्य फसल के बेल के ऊपरी सीधा जौन बा काट देवे से कहला कि थोड़ा सा बढ़वार माने छितराए लगेला,
0: फैले लगेला।
1: हाइब्रिड लौका के खेती सालों भर हमनी के कर सकत बन जा, कम समय कम लागत और बम्पर पैदावार और शानदार मुनाफा हमनी के ले सकत बनी जा। तो सुगिया बहन, लौका और बैगन के खेती हमनी के करके अच्छा मुनाफा कमा सकत।
0: देखी मनु भाई, हमनी के सब कोई जानत नहीं जा कि खेती किसानी के काम मेहनत और लगन के काम हो। किसान दिन रात खेत में मेहनत करेला ताकि देश के अन्न जोन बा वो भंडार भरल रहे। लेकिन अक्सर देखल जाला कि किसान अपना फसल और पशुधन के तो पूरा ध्यान रखे नहीं जा, लेकिन अपना स्वास्थ्य और पोषण की ओर उतना ध्यान न दे पावे नहीं जा। आज हमनी के यही विषय पर बात कही जाए, अपना पोषण पर भी दी ध्यान। स्वस्थ शरीर ही अच्छा खेती किसानी के पहचान है। यदि हमनी के शरीर स्वस्थ रही तबे हमनी के खेती कार्य के पूरा ऊर्जा और उत्साह से कर पाइब जा। एकरा खातिर भोजन में केवल पेट भरना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संतुलित और पौष्टिक आहार लेना भी जरूरी बा। अपना दैनिक भोजन में अनाज के साथ साथ दाल, हरी पत्तेदार सब्जी, मौसमी फल, दूध दही, अंडा या प्रोटीन अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ के शामिल करी। मोटा अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी और मक्का से भी पोषण भरपूर मात्रा में मिलेला। ये शरीर के आवश्यक ऊर्जा और पोषक तत्व तो प्रदान करेला। किसान भाई बहन, घर के आसपास पोषण वाटिका अवश्य विकसित करी। इसमें पालक, मेथी, टमाटर ये सब चीज लगावे के चाहिए।
1: जी देखिए, इतने नहीं सुगिया बहन, हमने के पोषण खातिर सरकार भी कई प्रमुख कदम उठा रहा है। जैसे पोषण ट्रैकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं चलावल जा रहा बा। एक डिजिटल टूल है जोना के माध्यम से 0 से 6 बरस या गर्भवती महिला और स्तनपान करा वाली माता लोग के पोषण के निगरानी कल जाए। पीएम पोषण ई पूर्व मध्याह्न भोजन जो चलावल जा रहा बा एकरा खातिर भी सरकार बहुत काफी आगे कदम बढ़ा रहा बा। आंगनबाड़ी सेवाएं बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के हर जिला में जौन बाटे ई पौष्टिक आहार और आयरन कैल्शियम की गोली निःशुल्क उपलब्ध करावल जा रहा बा। तो इससे हमनी के अपना पोषण पर जरूर ध्यान देवे के चाहिए। आप पोषण पर ध्यान दिली तबे तो जाके हमनी के शरीर स्वस्थ रही, आ स्वस्थ शरीर रही तभी स्वस्थ दिमाग भी रही। तो कहा जाला कि स्वस्थ
0: शरीर में स्वस्थ मन के वास होला।
1: तो ऐसे बहुत जरूरी बा अपना पोषण पर हमनी के ध्यान दिया जाए। घर में सब कुछ बा, देखिए सुगिया बहन, देखें सुगिया बहन, हमनी के अपन पोषण पर बहुत ज़्यादा ध्यान देवे के चाहिए। आ ई निखे जरूरी कि हम किशमिशे खाई तो ज़्यादा हमनी खून बढ़ी। किसान के तो किशमिश चना बा, चना भी बहुत फायदेमंद चीज बा। अगर अंकुरित करके चना मूंग खाई सुबह सुबह तो ये तो बढ़िया कोनो है ही नहीं पोष। तो सब कुछ लेवे के बाद तो कुछ अंकुरित चना, कच्चा फल, कच्चा माने जो
0: मौसमी फल भी हमनी के खा सकता नहीं,
1: ऐसे बहुत फायदेमंद बा। तो आई आज के अब हमनी के मौसम के कुछ मिजाज जानल जा। मौसम के मिजाज का बा, मौसम के मिजाज देखी हमनी के जो मौसम बा अब तो आज तो खैर बीत गई, लेकिन काल के देखल जाओ तो काल हमनी के वर्षा 0 दिखा रहा, 0 mm बा। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के उम्मीद बा। अधिकतम सापेक्षिक आद्रता जौन बा हमनी के 60% और न्यूनतम सापेक्षिक आद्रता 15% रहे के उम्मीद बा। हवा के गति बा 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल सकत बा। देखी अभी मौसम कब करवट बदल दी कहल ना जा सके, ये हमनी के पूर्वानुमान बा। हमनी के एक तरह का अनुमान लगाओ जा, हो सकता बारिश 0 बा, बारिश हो जाए। तो इससे किसान भाई लोग हमनी के सतर्क
0: सचेत रहे
1: के चाहिए।

0: आ हमनी के बिजरा जौन बा जरूर तैयार कर लियो जल्द से जल्द। तो अब देखी आप तो समय भी हमनी के ओर आ गए, चलत चलत के बेरा से सारे किसान भाई लोगन के, सभी श्रोता भाई लोगन के, मनु भाई के तरफ से नमस्कार,
1: सूर्या बहन के तरफ से भी सब कोई के नमस्कार, मनु भाई रवा के भी राम राम
0: राम राम।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

ससुरा बड़ा पैसा वाला फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मनोज तिवारी और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

साजन चले ससुराल फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे। इंदु सोनाली और अनामिका सिंह की आवाज़ें थी। प्यारेलाल यादव के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी अशोक कुमार। और अब आइए सांझ गीत कार्यक्रम में सुना जाए गंगा यमुना सरस्वती फिल्म का एक गीत। मोहन राठौर और उदित नारायण की आवाज़ें हैं। पायल यादव के लिखे इस गीत की धुन बनाई है राजेश रजनीश ने।

0: उपभोक्तन तक पहुँचे के सस्ता असुलभ माध्यम बा आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी का केंद्रन से करें विज्ञापन का माध्यम से अपन उत्पादित माल आ सेवा का प्रचार,
0: स्थानीय आ देश स्तर पर कहीं करी अपन बिजनेस के प्रसार।
1: काहे कि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग भइल आसान,
0: घर दफ्तर या दुकान पर बैठल अब करी विज्ञापनन के बुकिंग।
1: डायल करें 8700014242।
0: नंबर फिर लिखी 8700014242।
2: इसी के साथ भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सांझ गीत यहीं संपन्न हुआ।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय मिला ये शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

श्रोता दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में जानते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। तो बात सबसे पहले सासाराम की करते हैं। सासाराम के परिसदन सभागार में जदयू रोहतास के की बैठक हुई। इसमें कई सामाजिक कार्यकर्ता भाग लिए। जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैमूर जिले के सभी कार्यालयों में जन संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायतों तक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आम नागरिकों से सीधा संवाद किया गया। जिला पदाधिकारी महोदय के जनता दरबार में विभिन्न विभाग से संबंधित 23 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका नियमानुसार त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। ऑनलाइन पोर्टल पर किए गए प्रविष्टि के अनुसार आज अब तक जिला मुख्यालय स्तर पर कुल 15 अधिकारियों ने 18 नागरिकों के साथ संवाद स्थापित किया। जिले के कुल 11 प्रखंडों में 26 अधिकारियों की उपस्थिति रही, जहां 61 नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। थानों में आयोजित संवाद कार्यक्रमों में 8 अधिकारियों ने 33 नागरिकों के साथ संवाद किया। सबसे व्यापक प्रभाव पंचायत स्तर पर देखा गया, जहां 54 अधिकारियों ने कुल 343 नागरिकों से सीधा संपर्क किया। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक ले जाना है। जिला नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इन मुलाकातों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और विकास योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सकेगा। समाहरणालय स्थित मां मुंडेश्वरी सभागार में माननीय प्रभारी मंत्री श्री संजय सिंह टाइगर महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रशासन द्वारा आगामी मानसून के दौरान संभावित बाढ़, सुखाड़, भीषण गर्मी और लू से निपटने के लिए विभागवार की गई तैयारियों और कार्य योजना की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों को अपनी समन्वय के साथ मुस्तैदी से कार्य करने और आम जनमानस को हर संभव राहत पहुंचाने के निर्देश दिए।

आम नागरिकों को सुरक्षित, सुलभ एवं आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कैमूर जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। जिला पदाधिकारी महोदय श्री नितिन कुमार सिंह के विशेष प्रयासों से बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम BSRTC द्वारा कैमूर जिले में पहली बार सिटी बस सेवा की शुरुआत की गई। शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में दो नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इनमें

एक विशेष पिंक बस महिलाओं के लिए समर्पित है जो जिले में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में एक अभिनव पहल मानी जा रही है। जिले में पहली बार प्रारंभ की गई यह पिंक बस छात्राओं, कामकाजी महिलाओं एवं अन्य महिला यात्रियों को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सुविधाजनक यात्रा का विकल्प प्रदान करेगी। इससे महिलाओं की शिक्षा, रोजगार एवं सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा तथा वे आत्मविश्वास के साथ अपने दैनिक कार्यों का निर्वहन कर सकेंगी। नई बस सेवा के प्रारंभ होने से भभुआ एवं मोहनिया शहरों के बीच आवागमन और अधिक सुगम एवं किफ़ायती होगा। इससे आम लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्राप्त होगी तथा निजी वाहनों पर निर्भरता में भी कमी आएगी। जिला प्रशासन का मानना है कि यह पहल केवल परिवहन सेवा का विस्तार नहीं बल्कि समावेशी विकास, महिला सशक्तिकरण एवं नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अब आइए हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनवा रहे हैं मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गीत।

मेरा गांव मेरा देश फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। और अब इसी के साथ गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सहसारम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार

0: origen del meme.
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर। और इस गीत के बाद
5: छाया गीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की। एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास ने विधान परिषद चुनाव के लिए कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को बनाया उम्मीदवार। दिल्ली की एक अदालत ने साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी भारतीय सीनियर टी20 क्रिकेट टीम में शामिल, टीम इंडिया के सबसे युवा क्रिकेटर बने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: एनडीए के घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। कल भाजपा ने 4 और जदयू ने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की थी। इधर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाए जाने को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नामांकन में अभी समय बाकी है, इसलिए लोगों को इंतजार करना चाहिए।
2: अभी क्यों परेशानी और हड़बड़ी में आप इंतजार कीजिए, परसों नॉमिनेशन होना है ना, नामांकन तो परसों है ना, अंतिम दिन, आज नामांकन समाप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपके सवाल के जवाब के लिए इंतजार।
0: गौरतलब है कि बिहार विधान परिषद की 9 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव जबकि एक सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। नामांकन की अंतिम तिथि 8 जून तक निर्धारित है। उम्मीदवार 11 जून तक नामांकन वापस ले सकते हैं। इन सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा और इसी दिन शाम को मतों की गिनती होगी। दिल्ली की राउज रेवेन्यू अदालत ने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस मामले में उनकी पत्नी रेणु सिंह समेत अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला 31 दिसंबर 2018 को न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई फायरिंग से जुड़ा है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्म हाउस में पार्टी में हर्ष फायरिंग के दौरान डॉक्टर अर्चना गुप्ता के सिर में गोली लगी थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। फायरिंग का आरोप राजू कुमार सिंह पर लगा था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। मंत्रालय के अनुसार अभियान के तहत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और 8,850 से अधिक व्यवहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। बिहार के वैभव सूर्यवंशी को भारतीय सीनियर टी20 क्रिकेट टीम में शामिल

0: शामिल किया गया है। वैभव भारतीय टीम में चुने गए सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 15 साल 71 दिन की उम्र में भारतीय टीम में जगह बनाई है। वैभव को जून जुलाई में आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज के साथ साथ एशियन गेम्स के लिए चुना गया है। आइए जानते हैं वैभव सूर्यवंशी के क्रिकेट कैरियर के बारे में।
1: समस्तीपुर के ताजपुर से निकलकर भारतीय क्रिकेट के फलक पर सबसे चमकीले सितारे के रूप में उभरने वाले वैभव सूर्यवंशी ने केवल 12 वर्ष की उम्र में रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया था। यूथ टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 58 गेंद में शतक जड़कर उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। आईपीएल 2026 वैभव के क्रिकेट करियर का गोल्डन टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। इस सीजन में उन्होंने सबसे अधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप का अवार्ड जीता। साथ ही वैभव ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, सुपर स्ट्राइकर और सबसे ज्यादा छक्के लगाने का अवार्ड भी अपने नाम किया। आईपीएल से ठीक पहले आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 में वैभव खिताबी जीत के नायक रहे। वैभव सूर्यवंशी का कैरियर इस समय भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे रोमांचक दौर में है। उन्होंने T20 क्रिकेट में आक्रामक बल्लेबाजी का ऐसा उदाहरण पेश किया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। अब पूरी दुनिया की नजरें सीनियर इंटरक्रिकेट में उनके डेब्यू पर टिकी है। समाचार कक्ष से संजय सिंह।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैभव सूर्यवंशी को भारतीय टीम में शामिल होने पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रमंडल यूथ चेस चैंपियनशिप अंडर 18 के विजेता रेयान मोहम्मद को 22,50,000 रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। श्री चौधरी ने रेयान अहमद को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजगीर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया है। पटना में खेल विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने मोइनुल्लक स्टेडियम के पुनर्विकास काम में तेजी लाने को कहा। श्री चौधरी ने जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर खेल अवसंरचना के विकास और खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
5: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
5: लाभ वाणी,
4: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत युवा संगम के छठे चरण में राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित 50 छात्र छात्राओं को पंजाब के शैक्षणिक और सांस्कृतिक दौरे के लिए रवाना किया गया। आईआईटी पटना में आयोजित फ्लैग ऑफ समारोह में गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने छात्रों को रवाना किया। श्री कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम विविधता में एकता का संदेश देता है।
6: हमारे बिहार के 50 छात्र छात्राएं चयनित होकर पंजाब में जा रहे हैं। हमारे बिहार की संस्कृति और पंजाब की संस्कृति को एकजुट करने की भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मिशन है। एक राज्य से दूसरे राज्य के छात्र आपस में अन्य राज्यों में जाकर वहां अपने राज्यों का साझा करें।
0: इस अवसर पर आया

0: आईआईटी पटना के निदेशक टीएन सिंह ने कहा कि युवा संगम राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।
1: एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर बिहार के 50 के करीब विद्यार्थी छात्र और छात्राएं यहां से पंजाब की यात्रा पे निकल रहे हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत सारे विद्यार्थी पहली बार पंजाब जा रहे हैं, तो उनको ये अवसर मिलेगा कि वो देख पाएं, समझ पाएं और जो किताबों में पढ़े हैं उससे अंतर पाएं कि क्या अंतर है। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि लोग कहते हैं कि या तो भ्रमण करिए तब ज्ञान होता है या बहुत ज्यादा पढ़िए तब ज्ञान।
0: सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्य रात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात मूसलाधार बारिश हुई है। पूर्वी चंपारण के पताही में सबसे अधिक 74.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं पूर्णिया के रुपौली में 71.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, भागलपुर और कटिहार समेत कई जिलों में भी बारिश हुई है। बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के लड़ैयाटांड थाना क्षेत्र के जतकुटिया गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों के कुछ स्थानों पर, दक्षिण बिहार एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है, जबकि शेष भागों का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों के एक या दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: सुपौल जिले के भीमपुर थाना क्षेत्र में चलाए गए वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने एक चार पहिया वाहन से 240 लीटर शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं शेखपुरा जिले के सिराड़ी थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक तस्कर को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया। दूसरी तरफ अररिया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब और प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रभु शंकर के खिलाफ स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन पर नामांकन पत्र में जानकारी छुपाने का आरोप है। बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर स्नान के दौरान डूबने से एक ही परिवार के दो महिलाओं की मौत हो गई। दोनों दरभंगा जिले की रहने वाली थीं। पश्चिम चंपारण जिले के श्रीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुजटा पटजिरवा पंचायत में गंडक नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड के 5 गांवों मंदना, कृपा बिखा, अमानतपुर, सोहदी और विमान का चयन मुकदमा मुक्त गांव के तहत किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने इस संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को प्रस्ताव भेजा है। मधुबनी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मेगा कृषि ऋण आउटरीच कैंप में 200 से अधिक लाभुकों के बीच 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का ऋण वितरित किया गया। परिवहन विभाग द्वारा कैमूर में पिंक सिटी बस सेवा की शुरुआत की गई। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने 2 पिंक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान के तहत मुंगेर जिले के विभिन्न गांवों में किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक की। एनडीए के घटक दल लोजपा रामविलास ने विधान परिषद चुनाव के लिए कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी को बनाया उम्मीदवार। दिल्ली की एक अदालत ने साहिबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया। और बिहार के वैभव सूर्यवंशी भारतीय सीनियर T20 क्रिकेट टीम में शामिल टीम इंडिया के सबसे युवा क्रिकेटर बने। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक

0: समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: और इस गीत के बाद
2: छाया गीत।

is All India Radio, the news read by Anuja Kumar.

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है वैशाली जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।
2: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच वैशाली जिले में घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को नियमित एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। जिला प्रशासन स्टॉक और वितरण की लगातार निगरानी कर रहा है तथा कालाबाजारी रोकने के लिए नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं। जिले में कुल 800,000 से अधिक घरेलू गैस उपभोक्ता है, जिन्हें 118 गैस एजेंसियों के माध्यम से होम डिलीवरी के जरिए आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। इधर जिले में सप्ताह के शनिवार को नो फ्यूल डे अभियान का आयोजन किया जा रहा है। बीते शनिवार को आयोजन के तहत ऊर्जा संरक्षण, ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। इस अभियान के तहत विभिन्न सरकारी कार्यालयों के पदाधिकारियों और कर्मियों ने पेट्रोल डीजल वाहनों के बजाय साइकिल, पैदल, सार्वजनिक परिवहन तथा अन्य वैकल्पिक साधनों का उपयोग किया। जिला प्रशासन ने इसे एक जन जागरूकता की महत्वपूर्ण पहल बताते हुए लोगों से प्रत्येक शनिवार को नियमित रूप से इस अभियान को अपनाने की अपील की है। जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। जिले के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। जिला प्रशासन की ओर से लोगों को अनावश्यक रूप से दोपहर के समय बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। लू और डिहाइड्रेशन जैसी गंभीर समस्याओं से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए प्रशासन की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा है। जिला प्रभारी मंत्री निशांत की अध्यक्षता में बीते दिनों समाहरणालय स्थित पुष्करणी सभागार में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति 20 सूत्री और जिला नागरिक सुरक्षा परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा, खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण, राजस्व, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। साथ ही हाजीपुर वैशाली सड़क चौड़ीकरण, हर घर नल जल योजना तथा महुआ मेडिकल कॉलेज में ओपीडी सेवा शुरू करने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। श्री निशांत ने सभी लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए। इधर जिले में चमकी बुखार की रोकथाम और प्रभावी नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसे देखते हुए प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग सहित सभी संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित करते हुए व्यापक स्तर पर सतर्कता और जन जागरूकता अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। एग्री स्ट्राइक योजना के तहत संचालित फार्मर रजिस्ट्री अभियान में वैशाली जिले ने 120.1% उपलब्धि हासिल करते हुए पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 2,577,333 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री की जा चुकी है, जिससे कृषि योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक पारदर्शी और प्रभावी ढंग से पहुंचने में सहायता मिल रही है। जिला प्रशासन ने शेष किसानों से 30 जून 2026 तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री सुनिश्चित करने की अपील की है। जिलाधिकारी द्वारा बालिका सशक्तिकरण, लैंगिक समानता पर आधारित शुरू की गई पहल जियो नन्ही परी को राष्ट्रीय स्तर पर

0: निश्चित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस पहल की संकल्पना और नामकरण जिलाधिकारी वर्षा सिंह द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में स्थापित करना तथा बालिका सम्मान को जन आंदोलन का स्वरूप देना है। वैशाली जिले में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण और नदी संरक्षण को लेकर विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में जिले के सभी 7 नगर निकायों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण, साफ सफाई अभियान, नुक्कड़ नाटक, शपथ ग्रहण, चित्रकला और क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण और नदी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान एक पेड़ माँ के नाम अभियान की भी विशेष चर्चा रही, जिसके अंतर्गत लोगों ने अपनी माताओं के नाम पौधा लगाने का संकल्प लिया। वहीं हाजीपुर के पार्क परिसर तथा नमामि गंगे घाट कोनहारा में भी वृक्षारोपण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।
1: अभी आप सुन रहे थे वैशाली जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे
3: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम हेलो मनपसंद।

0: श्रोताओं नमस्कार। हेलो मनपसंद कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त रागिनी। तो प्यार भरा नमस्कार आप सभी को, और चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं हमारे श्रोताओं से और लेते हैं कार्यक्रम का ये पहला कॉल। हेलो मनपसंद, कहाँ पड़ता है ये खाखड़ा?
1: ये रोहतास में पड़ता है।
0: अच्छा, रोहतास में। रोहतास के किस प्रखंड में?
1: ये है ओकोड़ी।
0: तो आपका तो आज कॉल लग गया है, तो क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
1: हम किसी से कम नहीं आएंगे, बैंड बाजा पीछे बराती।
0: शादी विवाह से जुड़ा हुआ ये गीत आप सुनना चाह रहे हैं। आपके घर में शादी है क्या?
1: जी
0: अच्छा, इसीलिए आपने ये गीत चुना है। और सुनाइए, क्या करते हैं आप?
1: जी हम किराना दुकान चलाते हैं।
0: अच्छा, किराना दुकान चलाते हैं और रेडियो के कार्यक्रम सुनते हैं आप।
1: जी पहला बार लगा था तो कट हो गया बीच में, तो नहीं हुआ।
0: इससे पहले भी हेलो मनपसंद कार्यक्रम में आपका फोन कॉल शामिल हो चुका है?
1: जी जी 3-4 बार हुआ है, हो गया 1 महीना।
0: अच्छा, तो जब आपका कॉल शामिल हो जाता है तो क्या आप कुछ दिन इंतजार करते हैं फिर अगला कॉल लगाने से पहले?
1: जी आप लोग बोलते हैं ना कि 2 हफ्ता के बाद करिए, इसलिए हम रुक जाते हैं।
0: नहीं नहीं तब तो आप बहुत ही अच्छे श्रोता हैं जो
1: जी
0: कि हमारी बातों को फॉलो कर रहे हैं। और आज आपने ये जो गीत चुना है, इसे चुनने की कोई खास वजह? आपका बहुत पसंदीदा गीत है ये।
1: जी
0: आपके घर शादी भी है, तो शादी की भी ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं हम आपको देते हैं और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का शादी से रिलेटेड ये गीत।
2: पीछे बाराती

0: हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद, मैं धनेश गांव से बोल रहा हूँ, सर रोहतास जिले में पड़ता है। मेरा नाम नूरे नजर है।
0: नूरे नजर जी, आज आपका कॉल लग गया, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया महसूस करते हैं हम लोग तो, जब कॉल लगाने लगते हैं तो बड़ा लेट हो जाता है। जब लेट हो जाती है तो हम लोग बड़ा मनहूस हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि किसी ना किसी साथी से बात होता होगा, ये भी याद रहता है सर।
0: बड़ा ही अच्छा लगता है जब आप जैसे श्रोता इस तरह की खूबसूरत बातें करते हैं हमसे। हमारा तो दिल ही चाहता है कि बस हम भी बातें करते रहें, लेकिन क्या करें, समय की पाबंदी है और हमें और श्रोताओं के कॉल भी लेने हैं। तो आज हम जानना चाहेंगे कि आपकी फरमाइश क्या है, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप, किस फिल्म से?
1: हम आज सुनना चाहेंगे, ये गोरा और काला एक फिल्म है।
0: जी, गोरा और काला फिल्म का कौन सा गीत?
1: ना एक दिन ये कहानी बनेगी, तू मेरी सपनों की रानी बने, मैं तेरा दीवाना बनूंगा, रानी तू मेरी दीवानी बन।
0: बहुत ही अच्छा गीत आपने चुना है, आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सुनिए गोरा और काला फिल्म का ये गीत।
1: एक ना

0: हेलो मनपसंद,
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बसुड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी। उज्जैन से प्रेम जी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। आपसे पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है।
1: जी बिल्कुल हो चुकी है, और मैं आकाशवाणी का सारा मोबाइल ऐप से सुनता हूँ।
0: तो आज प्रेम जी आपकी क्या फरमाइश है?
1: मैं आपसे बात कर लूँ, उससे पहले आपको बताऊँ गाने की फरमाइश। उससे पहले हमारे यहाँ पे मतलब 2-3 दिन से थोड़ी मौसम में सुधार हुआ है, पाए भी चल रही है और बादल छाए हुए हैं।
0: हाँ, तो अभी तो आंधी तूफान बारिश मौसम पूर्वानुमान भी बोल रहा है और कई दिनों से जारी है पूरे भारत वर्ष में। तो
1: जी हाँ,
0: हर जगह बारिश भी हो रही है, आंधी भी आ रहा है।
1: उसमें बहुत सारे कच्चे आम मतलब हवा की वजह से गिर चुके हैं, तो मतलब थोड़ा नुकसान भी हुआ है किसानों को।
0: हाँ, आंधी आने से तो कई बार पेड़ जो हैं वो गिर जाते हैं, कभी कभी तो सड़क जो होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है। मौसम
1: ये
0: का
1: तो मैं
0: मिजाज ही
1: बिल्कुल कह रहे
0: कुछ
1: हैं,
0: अलग सा हो
1: सावधानी
0: जाता
1: ढंग से
0: है।
1: जब हवाएं चले उस समय ना निकले, और जरूरी काम हो तो पहले से निपटा लिया जाए और घर पे रहकर सुरक्षित रहे।
0: जी हाँ, और समय समय पर मौसम पूर्वानुमान से संबंधित जो भी समाचार होते हैं उसको सुनना चाहिए। आज प्रेम जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का नाम रहेगा उमराव जान, और गाने के बोले इन आंखों की मस्ती के मस्ताने।
0: चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, बोलिए।
1: जी, नमस्कार। आज तो मेरी पूरी वर्जिश होगी जी, 11 बजे से लगा हुआ हूँ कॉल लगाने।
0: लेकिन कहा गया है मेहनत का फल मीठा होता है, तो आपका फल तो
1: जी बिल्कुल,
0: मीठा आया।
1: आप माने या ना माने, मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरा फोन लग गया, चाहे आखिर में लगा।
0: जी, और हमें भी खुशी हो रही है कि आप सभी श्रोता इतनी मेहनत करते हैं कॉल लगाने के लिए। तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: जी मैं सुरेश गगनेजा, जलालाबाद वेस्ट पंजाब से बात कर रहा हूँ जी।
0: आप तो हमें नियमित रूप से गाने मैसेज के बहाने में ईमेल भी भेजते हैं।
1: जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी।
0: आकाशवाणी
1: और
0: सासाराम को अच्छा
1: जी
0: खासा समय देते हैं आप?
1: ज्यादा नहीं दे पाता जी, क्योंकि एक तो मोबाइल पे सभी चैनल आने की वजह से बहुत भरमार हो गई है चैनलों की, तो सभी तरफ ध्यान देना पड़ता है। बस मैं आपके यही एक दो प्रोग्राम सुनता हूँ जी।
0: अच्छा, गाने मैसेज के बहाने और कौन सा प्रोग्राम
1: और
0: सुनते
1: ये
0: हैं?
1: फोन का प्रोग्राम
0: अच्छा, हेलो मनपसंद,
1: जी, जीने
0: तो आपका कॉल लग गया है, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: की राह और गीता जी एक वनजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए।
0: पसंद आपकी काफी अच्छी है और पूरी कर रहे हैं हम आपकी फरमाइश।
2: पर

0: हेलो मनपसंद।
1: हेलो मनपसंद, मैं हूँ अजय सिंह है, ग्राम नहोना सासाराम से बोल रहे हैं।
0: अच्छा, ग्राम नहोना से अजय सिंह जी बात कर रहे हैं। अजय जी, आज पहली बार कॉल लगाया है आपने क्या?
1: इधर तो मैंने पहली बार लगाया है।
0: चलिए, बहुत ही अच्छी बात है आपने नहोना से ये कॉल लगाया है। नहोना तो बिहार के रोहतास जिला में ही पड़ता है। और अजय जी, क्या करते हैं आप?
1: पहले हम सिविल इंजीनियर थे, इस समय भी कोई काम नहीं कर रहे हैं।
0: अच्छा, सिविल इंजीनियर का काम आप पहले करते थे, अभी फिलहाल आपने काम छोड़ दिया है, तो आपका समय कटता है आकाशवाणी सासाराम के कार्यक्रम सुन के। तो चलिए, बहुत ही अच्छी बात है, आप हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं और आपने फ़ोन लगाया है। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है दीवाना मुझसा नहीं,
0: दीवाना मुझसा नहीं का कौन सा गीत?
1: मैं चेहरा बांध कर आऊंगा।
0: अच्छा,
1: उदित
0: मैं
1: नारायण की आवाज में है, आनंद मिलिंद संगीतकार है।
0: जी, आमिर खान पर फिल्माया गया ये गीत है,
1: जी,
0: और बहुत ही अच्छा गीत आपने चुना है। सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार।
1: मैं दिलनवाज अंसारी बोल रहा हूँ, हल्ला
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: लोहार नीम सासाराम से। हाँ
0: तो ये तो सासाराम से आपने कॉल लगाया है। तो आपने पहले भी इस कार्यक्रम में कॉल लगाया है क्या?
1: हाँ इससे पहले भी लगाया था, एक बार 1 महीना पहले।
0: अच्छा, तो क्या करते हैं आप?
1: मैं रिपेयरिंग करता हूँ, पंखा में बनाता हूँ।
0: अच्छा, तो सासाराम में तो बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, शेरशाह का मकबरा भी
1: हाँ
0: है,
1: बहुत है। हाँ शेरशाह का मकबरा है।
0: और अभी तो शेरशाह महोत्सव भी
1: नहीं
0: मनाया गया था। तो आप सासाराम के हैं, तो सासाराम के इस महोत्सव में शामिल हुए थे आप?
1: तो हमको तो पता भी था, हम तो यहाँ का है भी नहीं, हम
0: अच्छा, उस दरमियान आप सासाराम में
1: कैसे
0: नहीं थे। अच्छा
1: हैं, हम बाहर कैसे
0: अच्छा आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: हैं। मैं को दो रास्ते फिल्म का गाना सुना दीजिए। तूने
0: दो रास्ते फिल्म का कौन सा गीत?
1: काजल लगाया दिन रात हो गई।
0: आज आपने जो गीत ये सुनना चाहा है, बड़ा ही अच्छा गीत आपने पसंद किया है, उम्दा गीत है ये दो रास्ते फिल्म का। चलिए, पूरी करते हैं आपकी ये पसंद।

0: हेलो मनपसंद
1: हेलो
0: जी, नमस्कार, बोलिए।
1: जी, नमस्कार। आज तो मेरी पूरी वर्जिश होगी जी। 11 बजे से लगा हुआ हूँ कॉल लगाने।
0: लेकिन कहा गया है मेहनत का फल मीठा होता है, तो आपका फल तो
1: जी बिल्कुल,
0: मीठा आया।
1: आप माने या ना माने, मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरा फोन लग गया, चाहे आखिर में लगा।
0: जी, और हमें भी खुशी हो रही है कि आप सभी श्रोता इतनी मेहनत करते हैं कॉल लगाने के लिए। तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: जी मैं सुरेश गगनेजा जलालाबाद वेस्ट पंजाब से बात कर रहा हूँ जी।
0: आप तो हमें नियमित रूप से गाने मैसेज के बहाने में ईमेल भी भेजते हैं।
1: जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी।
0: आकाशवाणी
1: और
0: सासाराम को अच्छा
1: जी
0: खासा समय देते हैं आप?
1: ज्यादा नहीं दे पाता जी, क्योंकि एक तो मोबाइल पे सभी चैनल आने की वजह से बहुत भरमार हो गई है चैनलों की, तो सभी तरफ ध्यान देना पड़ता है। बस मैं आपके यही एक दो प्रोग्राम सुनता हूँ जी।
0: अच्छा, गाने मैसेज के बहाने और कौन सा प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: कौन सा प्रोग्राम
0: अच्छा, हेलो मनपसंद, तो
1: जी? जीने
0: आपका कॉल लग गया है, तो कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: की राह और गीता जी एक वनजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए।
0: पसंद आपकी काफी अच्छी है और पूरी कर रहे हैं हम आपकी फरमाइश।

0: हेलो मनपसंद,
1: हेलो, नमस्ते समांगणी।
0: नमस्कार। कहाँ से बात हो रही है हमारी? राजस्थान
1: हाँ, जिला बालोतरा, राजस्थान से, मोहनलाल
0: से आप कौन बोल रहे हैं?
1: प्रजापत।
0: अच्छा, मोहन लाल प्रजापति जी। आज आपका कॉल लग गया, तो क्या सुनना चाहते हैं आज आप?
1: हाँ, बहुत ये मोहम्मद रफी साहब की आवाज में कोई भी गीत दे दीजिए। कोई
0: मोहम्मद रफी की आवाज में कौन सा गीत?
1: भी गीत चलेगा, सभी बेस्ट है सर।
0: मोहम्मद रफी की आवाज में कोई सा भी गीत चलेगा।
1: हाँ जी,
0: तो चलिए मोहन जी, हम सुनवाते हैं राजस्थान में आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो मनपसंद,
1: हेलो मनपसंद।
0: हेलो मनपसंद में किनसे बात हो रही है हमारी?
1: हाँ, विजय कुमार बैठा गांव बिलारी से।
0: विजय कुमार बैठा जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: गांव बिलारी थाना करागर जिला रोहतास सासाराम। जी
0: आपने रोहतास जिला से फोन किया है हमें।
1: मैडम, सुनवा
0: तो आज क्या सुनना चाहेंगे विजय जी?
1: दीजिए। फिल्म है मैं तुलसी तेरे आंगन का। जी,
0: मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म का कौन सा?
1: गाना है छाप तिलक छीनी रे उसे नैना मिला के। जी
0: अच्छा, शास्त्रीय संगीत पर आधारित ये गीत है और बड़ी ही खूबसूरत आवाज है इसमें लता मंगेशकर जी की। तो बड़ा ही अच्छा गीत चुना है आपने। तो चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश।

तो इसी गीत के साथ ही हमारा आज का यह हेलो मनपसंद कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक। तो आप सभी श्रोताओं से हम गुजारिश करते हैं कि जिन श्रोताओं के कॉल आज शामिल हो चुके हैं वो हमें कुछ दिनों तक कॉल ना करें। अगले बुधवार को हमारे नए श्रोता इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, हेलो मनपसंद कार्यक्रम में अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमारा रिकॉर्डिंग समय है पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक, और हमारा नंबर है 0618422110। तो इस नंबर पर आप पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक प्रत्येक बुधवार को रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं और अपनी पसंद का गीत प्रत्येक बुधवार को रात 7:50 से रात 8:45 तक सुन सकते हैं। और अब इसी के साथ रागिनी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं

0: से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security, our long and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: Realize the full potential of our ties.
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सहायता स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम 500 ग्राम 1 से 5 किलो 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन, नई जनरेशन की ट्रेन अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन आने से कोलकाता के निवासी

0: को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारको दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चौथे लैवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लैवेंडर गोल्स ग्लोबल। दो दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लैवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लैवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लैवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के दो दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक

परीक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार

0: मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले दो दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा।

लोकधारा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रीना सिन्हा को, और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं जहिया से पिया मोरा गईले एल्बम का एक भोजपुरी लोकगीत। आवाज इस बार विंध्यवासिनी देवी की है।

अभी आप सुन रहे थे जहिया से पिया मोरा एल्बम का ये गीत विंध्यवासिनी देवी की आवाज में। श्रोता दोस्तों, आप सब ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आइए अब सुनते हैं प्रेम रंजन सिंह की आवाज में ये भोजपुरी बरसाती गीत।

प्रेम रंजन सिंह के गाए इस भोजपुरी बरसाती लोकगीत के साथ ही भोजपुरी लोकगीतों का ये कार्यक्रम लोकधारा यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है गजल का प्रोग्राम महफिल।

खुशबू एल्बम का ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज़ में। अब आइए करार एल्बम का एक गज़ल हम आपको सुनवाएं। आवाज़ हरिहरन की है, कलमकार हैं अकबर हैदराबादी और मौसिकी हरिहरन की है।

खरी हिरण की गाई इसी गजल के साथ महफिल कार्यक्रम अब यहीं मुकम्मल हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।

0: बजती
1: भूल यादें,

राजेंद्र कृष्ण साहब का शुमार फिल्म जगत के बेहतरीन गीतकारों में होता है। उनकी कविता में नजाकत है, जज्बात की गहराई है और दिल को छू लेने वाला फन है।

वो चाहे अलसाई सी दोपहर हो, कोई हसीन शाम हो, या फिर कोई उदास अकेली रात। राजेंद्र कृष्ण के बोल उन पलों में कभी प्यार, कभी इकरार, कभी रुसवाई और कभी जिंदगी का कोई और दर्द इस तरह भर देते हैं कि उस दर्द से भी मोहब्बत हो जाए।

6 जून 1919 को शिमला में जन्म हुआ था अपने कलम से दिलकश नगमों को जन्म देने वाले इस गीतकार का। बहुत कम उम्र में ही राजेंद्र कृष्ण मोहित हो गए थे कविता पर। रोजी रोटी की जद्दोजहद में 1940 तक म्यूनिसिपल ऑफिस में क्लर्क की नौकरी की। उनकी इस नीरस नौकरी को रसीला बनाती रहीं फिराक गोरखपुरी, एहसान दानिश, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी की रचनाएं। 1940 के मध्य में राजेंद्र कृष्ण मुंबई आ गए। फिल्मों की दुनिया में बतौर लेखक और गीतकार अपनी प्रतिभा को आजमाने। संघर्ष की जंजीरें टूटी 1947 में जब फिल्म जंजीर के लिए उन्होंने लिखा अपना पहला गीत। 1947 में राजेंद्र कृष्ण ने लिखी फिल्म जनता की स्क्रिप्ट, लेकिन कामयाबी मिली 1948 में बने फिल्म आज की रात से। निराशा भरी रातें ढल चुकी थीं और राजेंद्र कृष्ण लगातार काम पाने लगे। 1949 में श्याम सुंदर के संगीत से सजी फिल्म लाहौर में उनके गीतों को बहुत लोकप्रियता मिली। उन्हीं में से एक था ये गीत।

लगभग तभी एक और फिल्म आई, बड़ी बहन, जिसके संगीतकार थे हुस्नलाल भगतराम। राजेंद्र कृष्ण के गीत एक बार फिर संगीत रसिकों के होठों पर थे।

तमिल के जानकार राजेंद्र कृष्ण उन दिनों के मद्रास के मशहूर बैनर एवीएम की पहली पसंद बन गए। वहां के अन्य निर्माताओं ने भी राजेंद्र कृष्ण की रचनात्मक प्रतिभा की कद्र की। एवीएम की लगभग सभी हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अलावा उनके गीत लिखे राजेंद्र कृष्ण ने।

राजेंद्र कृष्ण ने अपने समकालीन लगभग सभी नामचीन संगीतकारों के लिए गीतों की रचना की। राजेंद्र कृष्ण ने करीब 100 फिल्मों की पटकथाएं लिखी और कोई 300 फिल्मों के लिए लिखे अपने अनूठे अलबेले गीत। सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड बहुत देर बाद मिला 1965 में फिल्म खानदान के इस गीत के लिए।

1988 में शब्दों का ये चितेरा हमारे होठों पर अपने गीतों की गुनगुनाहट छोड़कर शब्द ब्रह्म में ही विलीन हो गया।

0: अब अपने दोस्त कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार

हमारे श्रोता भी सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई का प्रसारण विविध भारती के कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग।

देश पर जान लुटाएंगे। एल्बम का ये टाइटल सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे कैलाश खेर की आवाज़ में। अब आइए रसरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएं ए दिल एल्बम का टाइटल सॉन्ग। अमृता भारती और साथियों की आवाज़ें हैं, अरुण कुमार हैं गीतकार और संगीतकार हैं गौरव कुमार।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग। आइए अब इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं गुरु रांधवा को। एल्बम का नाम है ऐसे ना छोड़ो। रश्मि बैराग के लिखे इस गीत की धुन बनाई है मनन भारद्वाज ने।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो सेट को ट्विन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसरंग।

अब आइए सुना जाए हजारों ख्वाहिशें एल्बम का एक गजल। निहारिका सिन्हा की आवाज है, कलमकार हैं मिर्जा गालिब और मौसिकी खुद निहारिका सिन्हा की है।

हजारों ख्वाहिशें एल्बम का ये गज़ल अभी आप सुन रहे थे निहारिका सिन्हा की आवाज़ में। मिर्ज़ा गालिब के लिखे इस गज़ल की धुन बनाई थी खुद निहारिका सिन्हा ने।

कारों को आज आप सुने, उनके नाम थे अमृता भारती, गुरु रांधवा, कैलाश खेर और निहारिका सिन्हा। एल्बम्स के नाम थे ऐ दिल, ऐसे ना छोड़ो, देश पे जान लुटा देंगे और हजारों ख्वाहिशें।

कलमकार थे अरुण कुमार, रश्मि बैराग, यमुना प्रसाद और मिर्ज़ा गालिब।

मौशकी किसकी थी? तो मौशकी थी गौरव कुमार, मनन भारद्वाज, प्रशांत और निहारिका सिन्हा की।

और अब इसी के साथ गैर फिल्मी हिंदी गानों का ये कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने।

तो दोस्तों आइए हम और आप मिलकर मस्ती और खुशी से झूमते हुए सफर को शुरू करते हैं, जिसे आप भी कहते हैं, हम भी कहते हैं, चित्रपट तराने। मस्ती का आलम कुछ ऐसा है यारों, हर गम को हंसकर भुला देते हैं यारों। जिंदगी मिली है मुस्कुराने के लिए हम पर, हम हर पल को जश्न बना लेते हैं यारों। दोस्तों जब तक आप मस्ती में ना आए या फिर हम आपको मस्ती में ना ला दें, तब तक फिल्म संगीत की शुरुआत तो नहीं होगी। बस हम बस यही कहते रहेंगे कि मस्ती में जीना ही हमारी पहचान है, हमारी यानी हम और आप। मस्ती में जीना ही हमारी पहचान है, चेहरे पर मुस्कान और दिल में अरमान है। कल की फिक्र छोड़ो, आज को जी लो, यही तो जिंदगी का सबसे सबसे सबसे बड़ा ज्ञान है।

दोस्ती हो, हंसी हो और हो मस्ती का साथ, खुशियां से भर जाए जीवन की हर बात, गम चाहे लाख आए राहों में मगर मुस्कुराते रहेंगे हम दिन और रात।

वैसे तो दोस्तों, ईश्वर की बनाई हुई ये पूरी दुनिया खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत है। हम भी खूबसूरत हैं, आप भी खूबसूरत हैं, लेकिन ये खूबसूरती तब और बढ़ जाती है जब आप खुश हो जाते हैं, मुस्कुराते भी हैं। कहने का मतलब कि चेहरा तुम्हारा चांद से भी प्यारा लगता है, चेहरा तुम्हारा चांद से भी प्यारा लगता है, हर एक नज़र को ये बेहद न्यारा लगता है, जब मुस्कुरा देते हो तुम एक पल के लिए, सारा जहां जैसे और भी और भी और भी सुंदर लगता है। बात चेहरे की हो रही है तो कहना यही है कि तेरे चेहरे की चमक का क्या जवाब दें, तेरे चेहरे की चमक का क्या जवाब दें, खुदा की बनाई इस किताब का क्या जवाब दें, जिसे देखकर ठहर जाए हर किसी की नजर, उस हसीन हुस्न के शबाब की क्या जवाब दें। और दरअसल बात तो ये है श्रोता दोस्तों कि खूबसूरत चेहरा तो एक बहाना है, खूबसूरत चेहरा तो एक बहाना है, असली खूबसूरती दिल का खजाना है, जो दिल के साफ हो, मुस्कान में प्यार हो, वही इंसान दुनिया में सबसे सबसे सुहाना है। और क्या कहें, बस आपकी शान में यही कह देते हैं,

0: बैराग फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। और दोस्तों आइए अब कुछ कह रहे हैं, इस कहने में इस बात में आप बस इतना ही शामिल हैं कि आप सुनेंगे। इस बार मैं सिर्फ आपको सुनाऊंगा और बात सिर्फ मेरी होगी, है ना? सुनेंगे ना, तो सुनिए। गम के फसाने दिल में छुपाए बैठे हैं, गम के फसाने दिल में छुपाए बैठे हैं, अपनी आँखों में कई दरिया बसाए बैठे हैं। दुनिया समझती है हमें मुस्कुराने वाला, हम दर्द की महफिल को सजाए बैठे हैं। हर गम का फसाना जुबां पर नहीं आता, हर जख्म का निशान नजर नहीं आता। लोग कहते हैं भूल जाओ बीती बातें, मगर क्या करें दोस्तों, मगर दिल का दर्द यूं ही नहीं जाता। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि गम के साये में कोई आकर हाल चाल पूछ दे तो बात कुछ और होती है। बात बस यही होती है जो हम अब आप तक पहुंचाने वाले हैं।
1: गम का फसाना बन गया अच्छा,
2: अच्छा जी
1: एक बहाना बन गया अच्छा
2: अच्छा।

मनचली फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और दोस्तों आइए कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते हम और आप दोनों शामिल हो जाते हैं, कुछ बातचीत करते हैं, है ना। बात दोनों के लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तेरे खत को जब भी सीने से लगाता हूँ, हर एक लफ्ज में तेरा चेहरा नजर आता हूँ। स्याही से लिखे हुए वो प्यार के अफसाने पढ़कर आज भी मैं मुस्कुराता हूँ। हो सकता है ये एहसास आपका भी हो। कागज पर उतरे जज्बातों की बात ही कुछ और है, प्यार भरे खतों की सौगात ही कुछ और है। चाहे दुनिया बदल जाए वक्त के साथ, मोहब्बत की लिखी हर बात ही कुछ और है।

जिगर फिल्म के इस गाने के साथ ही हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट तराने यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 हुए हैं। प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

कल सुबह आपकी सेवा में हम फिर से हाजिर होंगे प्रातः 5:53 पर। प्रातः 7:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। देशभक्ति संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 8:15 पर। 8:20 पर सुबह आप सुनेंगे अपने पत्रों पर आधारित फिल्मी नगमों का कार्यक्रम पसंद आपकी। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से हम रिले करेंगे। समय होगा सुबह 8:45 पर। हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर। कल सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम जिसे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे हिंदी समाचार कल पूर्वाहन 10:00। पूर्वाहन 10:05 पर कल आप सुनेंगे नन्हे दोस्तों का हमारा कार्यक्रम अंकुर। 10:30 पर सुनिए भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। 10:45 पर भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसधार की प्रस्तुति होगी। ग्यारह बजे हम और आप शामिल होंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की सभा में और तब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। वापिस से स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से शाम 5:10 पर हम प्रस्तुत करेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन विज्ञान एवं पर्यावरण। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी शाम 5:30 पर। कल सुबह 6:00 सुनिए माफ कीजिएगा कल शाम 6:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। शाम 6:05 पर हम रिले करेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार बुलेटिन। कार्यक्रम गांव घर की प्रस्तुति होगी शाम 6:10 पर। शाम 6:40 पर आप सुनेंगे भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत। शाम 7:00 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। रोज की तरह कल भी शाम 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हम रिले करेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। समय होगा शाम 7:00।

7:25 पर। ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ई मनपसंद की प्रस्तुति होगी कल शाम 7:50 पर। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। भोजपुरी लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप सुनेंगे रात्रि 9:00। रात्रि 9:15 पर सजेगी गजलों की महफिल। 9:30 पर रात्रि में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की सभा में और तब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से कल रात्रि 10:00 हम प्रस्तुत करेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग। हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने आप सुनेंगे कल रात्रि 10:30 पर।

से भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा आप सुनेंगे रात्रि 9 बजकर 15 मिनट पर सजेगी गजलों की महफिल। 9 बजकर 30 मिनट पर रात्रि में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की सभा में और तब आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से कल रात्रि 10 बजे हम प्रस्तुत करेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग। हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने आप सुनेंगे कल रात्रि 10 बजकर 30 मिनट पर। ये थी संक्षिप्त जानकारी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल-पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
2: Realize the full potential of our ties.
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल
1: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:53 पर हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।